आओ राजगुण तमगुण सतगुण कहिया एह तेरी सब माया। चौथे पद कहो जो नर चीने तिन ही परम पद पाया। तीर्थ वर्त नेम सो संयम सदा रह निकामा। तृष्णा अर माया परम चूका चितवत आत्म रामा। जेह मंदिर दीपक परगासिया अंधकार तह नासा। निरपव पूर रहे परंपागा कह कबीर जनदासा। किन्ही बनजिया कांसी तांबा किन्ही लौंग सुपारी। संतो बनजिया नाम गोबिंद का ऐसी खेप हमारी। हर के नाम के व्यापारी हीरा हाथ चढ़िया निर्मोलक छूट गई संसारी। रहाओ साचे लाए तो सच लागे साचे के ब्योहारी। साची बस्त के पार चलाए पहुंचे जाए पंडारी। आपै रतन जवाहर मानक आपै है पासारी। आपै दह दस आप चलावै निचल है व्यापारी। मन कर बैल सुरत कर पेंडा ज्ञान गुण पर डारी। कहत कबीर सुनो रे संत हो निभि खेप हमारी। री कलवार गवार मूड मत उल्टो पवन फेरावो। मन मत वार मेर सर पाठी अमृत तार चुआवो। बोलो पहिया राम की दुहाई पीवो संतो सदा मत दुर्लभ सहजे प्यास बुझाई। रहाओ पै बिच पाओ पाए को बुझै हर रस पावै पाई। जेते कट अमृत सब ही मैं पावै सह पियाई। नगरी एक नौ दरवाजे तावत बरज रहाई। त्रिकुटी छूटै दसवां दर खुलै तमन खीवा पाई। अपै पद पूर ताप तह नासे कह कबीर बिचारी। उबड़ चलनते एह मद पाया जैसे खोंद खुमारी। काम क्रोध

राग पहराओ महला पहला कर पहला चौपदे एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सह भंगुर प्रसाद। तुझ ते बाहर किशु ना होए तू कर कर देखे जाने सोए क्या कही है किश कही ना जाए जो किश है सब तेरी रिजाए। रहाओ जो किश करना सो तेरे पास किस आगे कीचे अरदास। आखण सुनना तेरी बाणी तू आपे जाने सर्वडाणी करे कराए जाने आप नानक देखे थापो थाप। एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग पहराओ महला पहला कर दूजा गुर कै शब्द तरे मुन केते इंद्रादक ब्रह्मा तरे सनक सनंदन तपसी जन केते गुर प्रसादी पार परे। भव जल बिन शब्द क्यों तरिया नाम बिना जग रोग ब्यापिया दुबदा डुब डुब मरिया। रहाओ गुरदेवा गुर अलख पेवा त्रिपवन सोजी गुर की सेवा आपे दात करी गुरदात है पाया अलख पेवा। मन राजा मन मनते मान्या मन सामने समाई मन जोगी मन बिनस बयोगी मन समझे गुण गाई। गुरते मन मारिया शब्द विचारिया ते विरले संसारा नानक साहेब पर पुरलीना साच शब्द निस्तारा। पहरो महला पहला नैनी दृष्ट नहीं तन ही ना जर जीते आ सिर।

साच शब्द बिन कबो न छूट सो बिरथा जन्म भयो रहाओ। तन मह काम क्रोध हो ममता कठिन पीर अत भारी। गुरमुख राम जपो रस रसना इन बिद तर तू तारी। बहरे करन अगल पई होची शब्द सहज नहीं बूझिया। जन पदार्थ मन मुख हारिया बिन गुरे अंद न सूझिया। रह उदास आस निराशा सहज ध्यान बैरागी। प्रणमत नानक गुरमुख छूटस राम नाम लिव लागी। पहरो महला पहला पूंडी चाल चरण कर खिसरे तुचा देह कुमलानी। नेत्री तुहंद करन पै बहरे मनमुख नाम ना जानी। अंदले क्या पाया जग आए राम हृदय नहीं गुर की सेवा। चाले मूल गवाए रहाओ जेहवा रंग नहीं हर राती। जब बोले तब फीके संत जना की निंदा व्यापस। पशु पहे कदे होहे नानी के अमृत का रस विरली पाया। सतगुर मेल मिलाए जब लग शब्द भेद नहीं आया। तब लग काल संताए अनको दर कर कबहू ना जानस। एको दर सचियारा गुर प्रसाद परम पद पाया। नानक कह विचारा पहरो महला पहला सगली रैन सोबत गलफाही। दिन से जंजाल गवाया खिन पल कड़ी नहीं प्रभ जानिया। जिन एहो जगत उपाया मन रे क्यों छूटस दुख भारी। क्या ले आवस क्या ले जावस राम जपो गुणकारी रहाओ। ऊंदो कवल मन मुख मत होची। मन अंधा सिर तंदा काल बिकाल सदा सिर तेरे बिन्ना मैं गलफंदा। डगरी चाल नेत्र फुन अंधले शब्द सुरत नहीं पाई। शास्त्र वेद त्रै गुण है माया अंधलो तंद कमाई। खोयो मूल लाभ कह पावस दुर्मत ज्ञान में होने। शब्द विचार राम रस चाखिया नानक साच पतीने। पहरो महला पहला गुर कै संग रह दिन राती। राम रसन रंग राता अवर न जानस शब्द पछाणस। अंतर जान पछाता सोजन ऐसा मैं मन भावे। आप मारे परंपर राता गुर की कार कमावे रहाओ। अंतर बाहर पुरख निरंजन आदि पुरखिया देसो। घट घट अंतर सर्ब निरंतर रव रहया सच वेसो। साच रते सच अमृत जिहवा मिथ्या मैल नाराई। निर्मल नाम अमृत रस चाखिया शब्द रते पत पाई। गुणी गुणी मिल लाह पावस गुरमुख नाम वडाई। सगले दुख मिटै गुरसेवा नानक नाम सखाई। पैरो महला पहला हिरदय नाम सर्ब तन धारण। गुर प्रसादी पाई है अमर पदार्थ ते कृतार्थ सह ध्यान लिवलाई है। मन रे राम भगत चित लाई है। गुरमुख राम नाम जप हिरदय सह सेती कर जाई है रहाओ। परम भेद पौ कबो ना छूटस आवत जात ना जानी। बिन हर नाम को मुक्त ना पावस डूब मोए बिन पानी। धंधा कर तो सगली पत खोबस भरम ना मिटस गवारा। बिन गुर शब्द मुक्त नहीं कभी अंधले तंत पसारा। अकुल निरंजन स्यों मन मानिया मन ही ते मन मुआ। अंतर बाहर एको जानिया नानक अवर ना दुआ। पहरो महला पहला जगन होम पुनता पूजा देह दुखी ने दुख सह। राम नाम बिन मुक्त ना पावस मुक्त नाम गुरमुख।

पुस्तक पाठ व्याकरण वखाण संध्या कर्मत काल कर बिन गुर शब्द मुक्त कहा प्राणी राम नाम बिन उर जमर डांड कमंडल शिखा सूत धोती तीर्थ गवन अत भ्रमण कर राम नाम बिन सांत न आवे जप हर हर नाम सो पार पर जटा मुकट तन पसम लगाई वस्त्र छोड़ तन नग्न पया राम नाम बिन तृप्त न आवे किरत कै बंद पेख पया जेते जी जंत जल थल महियल जतर कतर तू सर्ब जिया गुर प्रसाद राख ले जन को हर रस नानक झोल पिया। राग पहरो महला तीजा चौप दे कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद जात का गर्व ना करियो कोई ब्रह्म बिंदे सो ब्राह्मण होई जात का गर्व ना कर मूर्ख गावारा इस गर्व ते चले बहुत विकारा रहाओ चारे वर्ण आख्या सब कोई ब्रह्म बिंद ते सब उपत होई माटी एक सगल संसारा बहुविध भांड कड़े कुमारा पंच तत् मिल देही काया कारा घट वध को करे बिचारा कहत नानक एहो जियो कर्म बंद होई बिन सतगुर पेटे मुक्त ना होई। पैरो महला तीजा जोगी गृही पंडित भेख तारी ए सूते अपने अहंकारी माया मद माता रहया सोए जागत रह ना मुसे कोए रहाओ सो जागे जे सतगुर मिले पंच दूत ओ वसकत करे सो जागे जो तत् विचारे आप मरे अवरा ने मारे सो जागे जो एको जाने पर किरत छोड़े तत् पछाणे चहो वरना विच जागे कोए जमै काले ते छूटे सोए कहत नानक जन जागे सोए ज्ञान अंजन जाकी नेत्री होए। पैरो महला तीजा जा कौ राखे अपनी सरनाई साचा लागे साचा फल पाई रे जन कैस्यो करो पुकारा हुक्मे होवा हुक्मे वर्तारा रहाओ एहो आकार तेरा है तारा खिर मैं बिनसै करत ना लागे बारा कर प्रसाद एक खेल दिखाया गुर कृपा ते परम पद पाया कहत नानक मार जी वाले सोए ऐसा पूजो परम ना पूलो कोए। पैरो महला तीजा मैं कामण मेरा कंत करतार जिहा कराए तिहा करी सिंगार जात सपावे ता करे भोग तन मन साचे साहिब जोग रहाओ उसत निंदा करे क्या कोई जाया पे वरते एको सोई गुर प्रसादी प्रेम कसाई मिलोगी दयाल पंच शब्द बजाई पंत नान

नदर करे सतगुरु मिलाए, नानक हिरदय नाम वसाए, पैरव महला तीजा। नामे उदरे सब जितने लो, गुरमुख जिन्ना प्राप्त होए। हर जियो अपनी कृपा करे, गुरमुख नाम वड्याई दे रहाओ। राम नाम जिन प्रीत प्यार, आप उदरे सब को लो धारण हार। बिन नावे मनमुख

प्रसाद परम पद पाया सब इच पूजा मनहार रहाओ सब मैं एको रव रहया गुरबिन बूझना पाए गुरमुख प्रगट हुआ मेरा हर प्रभ अंदन हर गुण गाए सुखदाता हर एक है होर थे सुख ना पाहे सतगुरु जिनी ना सेवया दाता से अंत गए पछताहे सतगुर सेव सदा सुख पाया फिर दुख ना लागे ताए नानक हर भगत प्राप्त होई ज्योति जो समाए पहरो महला तीजा बाज गुरु जगत बौराना पूला चोटा खाई मर मर जमै सदा दुख पाए दर की खबर ना पाई मेरे मन सदा रहो सतगुर की सरना हिरदय हर नाम मीठा सद लागा गुर शब्दे पवजल तरना रहाओ पेख करै बहुत चित डोलै अंतर काम क्रोध अहंकार अंतर तिसा भूखयत बहुती भौकत फिरै दरबार गुर कै शब्द मरै फिर जीवै तिनको मुख द्वार अंतर सांत सदा सुख होवै हर राख्या और तार ज्यो तिस पावै तिवै चलावै करना किशु ना जाई नानक गुरमुख शब्द समाल।

नाम बिना सब दुनिया शार, अचरज तेरी कुदरत तेरे कदम सलाह, गनीम तेरी सिफत सच्चे पातशाह, नी तरिया तरपन खुदाए, गरीब निवाज दिन रहन ते आए, नानक कहो खुद खसम मेहरवान, अलो न विसरै दिल जी प्राण, पहरो महला पंजवा, साच पदार्थ गुरमुख लहो, प्रभ का पाणा सतकर सहो, जीवत जीवत जीवत रहो, राम रसायन ने तुठ पीवो, हर हर हर हर रसना कहो रहाओ, कलयुग मैं कनाम उदार, नानक बोले ब्रह्म विचार, पहरो महला पंजवा, सतगुर सेव सर्व फल पाए, जन्म जन्म की मैल मिटाए, पदत पावन प्रभ तेरो नाओ, पूर्व कर्म लिखे गुण गाओ, रहाओ साधु संग होवे उदार, सोभा पावे प्रभ कै द्वार, सर्व कल्याण चरण प्रभ सेवा, तूर बंश है सब सुर नर देवा, नानक पाया नाम निधान, हर जप जप उदरिया सगल जहान, पहरो महला पंजवा, अपने दास कौ कंठ लगावे, निंदक कौ अगन में पावे, पापी ते राखे नारायण, पापी पापी की गत कथु नाही, पापी पचिया आप कमायण, रहाओ दास राम जीओ लागी प्रीत, निंद की होई विपरीत, पार ब्रह्म अपना बिरद प्रगटाया, दुखी अपना कीता पाया, आए न जाई रहया समाई, नानक दास हर की सरनाई, राग पहराओ महला पंजवा, चौपदे कर दूजा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद श्री तर मोहन सगलियो पावन, निरंकार सुखदाता, ऐसा प्रभ छोड़ करे अन सेवा, कौन बिख्या रस माता, अरे मन मेरे तू गोविंद पाज, अवर्यो पाव सगल मैं देखे, जो चितवी है तित बिगरस काज, रहाओ ठाकर छोड़ दासी को सिमरै, मनमुख अंध ज्ञाना, हर की भगत करै तिन निंदै, निगुरे पशु समाना, जियो पिंड तन तन सब प्रभ का, स्वागत कहते मेरा, अहम बुद्ध दुर्मत है मैली, बिन गुर भव जल फेरा, होम जग जप तप सब संयम, तट तीर्थ नहीं पाया, मिटाया पै सरनाई, गुरमुख नानक जग तराया, पहरो महला पंजवा, बन मैं पेख्यो तरण मैं पेख्यो, गृह पेख्यो उदासाए, दंड तार जट तारै पेख्यो, वर्त नेम तीर्थाए, संत संग पेख्यो मन माए, ऊब पयाल सर मैं पूर्ण, रस मंगल गुण गाए, रहाओ जोग पेख सन्यासै पेख्यो, जत जंगम कपड़ाए, तपि तपि सरमन मैं पेख्यो, नट नाटक निरताए, चहो मैं पेख्यो खट मैं पेख्यो, दस अष्टी सिमरताए, सब मिले को एक बखाने, तव किस्ते कहो दुराए, अगह अगह बेअंत स्वामी, न कीम कीम कीम आए, जन नानक तन कै बल बल जाइए, जेह कट प्रगटी आए, पहरो महला पंजवा, निकट बुझै सो बुरा क्यों करै, बिख संचै नित डरता फिरै, है निकट यार भेद न पाया, बिन सतगुर सा मोही माया, नेड़े नेड़े सब को कहै, गुरमुख भेद बिरला कोल है, रहाओ निकट ना देखै पर ग्रह जाए, दर भिरै मिथ्या कर खाए, पैठ गौरी हर संग ना जानिया, बाज गुरु है परम पुलानिया, निकट ना जाने बोले कूड़, माया मोहे मूठा है मूड़, अंतर वास्तव दिसंतर जाए, बाज गुरु है परम पुलाए, जिस मस्त कर्म लिखिया लिलाट, सदगुर सेवे खुले कपाट,
ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਟੇ ਸੋਏ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਆਵੈ ਨਾ ਜਾਵੈ ਕੋਏ, ਪੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਜਿਸ ਤੂੰ ਰਾਖੈ ਤਿਸ ਕੌਣ ਮਾਰੈ, ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਅੰਤਰ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਕੋਟੋ ਪਾਵ ਚਿਤਵਤ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਸੋ ਹੋਵੈ ਜੇ ਕਰੈ ਚੋਜ ਵਿਡਾਣੀ, ਰਾਖੋ ਰਾਖੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ, ਰਹਾਓ ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਨਿਰਭਉ ਸੁਖਦਾਤਾ, ਤਿਨ ਪਉ ਦੂਰ ਕੀਆ ਏਕ ਪ੍ਰਾਤਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਰੈ ਸੋਈ ਪਨ ਹੋਏ, ਮਾਰੈ ਨਾ ਰਾਖੈ ਦੂਜਾ ਕੋਏ, ਕਿਆ ਤੂੰ ਸੋਚੈ।

जैसी ऊपर नजर करे करतार, ते जन के सब का इसवार, तिसका राखा एको सोए, जन नानक पढ़ना साके कोए। पैरो महला पंजवा, तौकड़िया जे होवे बाहर, तौकड़िया जे विसरै नरहर, तौकड़िया जे दूजा पाए, क्या कड़िया जा रहा समाए। माया मोहे कड़े कड़ पचिया, बिन नामे प्रम प्रम प्रम खपिया रहाओ। तौकड़िया जे दूजा करता, तौकड़िया जे अन्याय को मरता, तौकड़िया जे कह जाने नाही, क्या कड़िया जा भरपूर समाही। तौकड़िया जे किश होए तिंगाण, तौकड़िया जे भूल रजाण, गुर कहया जो होए सब प्रभ ते, तब काड़ा छोड़ अचिंत हम सोते। प्रभ तू है ठाकर सब को तेरा, जो पावे त्यों करे निबेरा। दुतिया नास्त एक रया समाए, राखो पैज नानक सरनाए। पैरो महला पंजवा, बिन बाजे कैसो निर्तकारी, बिन कंठ कैसे गवनहारी, जील बिना कैसे बजर बाप। नाम बिना बिरथे सब काज, नाम बिना कहो को तरिया, बिन सतगुर कैसे पार परिया रहाओ। बिन जेहवा कहाँ को बगता, बिन श्रवना कहाँ को सुनता, बिन नेत्रा कहाँ को पेखै, नाम बिना नर कहीं न लिखै। बिन विद्या कहाँ कोई पंडित, बिन अमरै कैसे राज मंडित, बिन बुझे कहाँ मन ठहराना, नाम बिना सब जग बौराना। बिन बैराग कहाँ बैरागी, बिन हो त्याग कहाँ को त्यागी, बिन बस पंच कहाँ मन चूरे, नाम बिना ससद ही चूरे। बिन गुर दीख्या कैसे ज्ञान, बिन पेखे कहो कैसो ध्यान, बिन पै कखनी सर्व बेकार, कहो नानक दर का विचार। पैरो महला पंजवा, हों मैं रोग मानख कौ दीना, काम रोग मैंगल बस लीना, दृष्ट रोग पचमोए पतंगा, नाद रोग खप गए कोरंगा। जो जो दिसे सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुर जोगी रहाओ। जेहवा रोग मीन ग्रस यानो, बासन रोग पवर बिनसानो। हेत रोग का सगल संसारा, त्रिविध रोग में बदे बिकारा। रोगे मरता रोगे जन्मे, रोगे फिर जोनी परमे। रोग बंद रहन रति ना पावे, बिन सतगुर रोग कते ना जावे। पार ब्रह्म जिसकीनी दया, बहां पकड़ रोगों कढ़ लया। टूटे बंधन साध संग पाया, कहो नानक गुर रोग मिटाया। पैरो महला पंजवा, चीत आवे ता महा आनंद, चीत आवे ता सब दुख पंज, चीत आवे ता सरदा पूरी, चीत आवे ता कबे ना चूरी। अंतर राम राय प्रगटे आए, गुरपुरे दियो रंग लाए रहाओ। चीत आवे ता सर्ब को राजा, चीत आवे ता पूरे काजा, चीत आवे ता रंग गुलाल, चीत आवे ता स्था निहाल। चीत आवे ता सद धनवंता, चीत आवे ता सद निपरंता, चीत आवे ता सब रंग माणे, चीत आवे ता चुकी काणे। चीत आवे ता सहज कर पाया, चीत आवे ता सुन समाया, चीत आवे सद कीर्तन करता, मन मान्या नानक भगवंता। पैरो महला पंजवा, बाप हमारा सद चिरंजीवी, पाई हमारे सद ही जीवी, मीत हमारे सदा बनासी, कुटुंब हमारा नी करवासी। हम सुख पाया ता सवे सुहेले, गुरपुरे पिता संग मेले रहाओ। मंदिर मेरे सब ते ऊंचे, देश मेरे बेअंता पूछे, राज हमारा सदी निचल, माल हमारा खूटा बेचल। सोभा मेरी सब जुगे अंतर, बाज हमारी थान थनंतर,
कीर्त हमरी कर कर होई, भगत हमारी सबनी लोई, पिता हमारे प्रगटे मांझ, पिता पुत्रल किन्नी सांझ। कहो नानक जो पिता पतीने, पिता पूते कै रंग लीने, पहरो महला पंजवा। निर्वैर पुरख सतगुर प्रभ दाते, हम अपराधी तुम बख्साते। जिस पापी को मिले ना टोई, शरण आवे ता निर्मल होई। सुख पाया सतगुरु मनाए, सब फल पाए गुरु ते आए रहाओ। पार ब्रह्म सतगुर आदेश, मन तन तेरा सब तेरा देश। चूका पड़दा ता नदरी आया, खसम तू है सबना के राया। तिस पाणा सूके काष्ट हरिया, तिस पाणा ता थल सिर सरिया। तिस पाणा ता सब फल पाए, चिंत गई लग सतगुर पाए। हराम खोर निर्गुण कौ तूठा, मन तन शीतल मन अमृत बूठा। पार ब्रह्म गुर पए दयाला, नानक दास देख पए निहाला। पैरो महला पंजवां, सतगुर मेरा बेमोहताज, सतगुर मेरे सच्चा साज, सतगुर मेरा सब सका दाता, सतगुर मेरा पुरख बिदाता। गुर जैसा नाही को देव, जिस मस्तक भाग सो लागा सेव रहाओ। सतगुर मेरा सर्ब प्रतपाल है, सतगुर मेरा मार जीवाल है, सतगुर मेरे की वड़ियाई, प्रगट पई है सबनी थाई। सतगुर मेरा तान नितान, सतगुर मेरा कर दीबाण, सतगुर कहो सदबल जाया, प्रगट मार्ग जिन कर दिखलाया। जिन गुर सेव्या तिस पौ ना ब्यापै, जिन गुर सेव्या तिस दुख ना संतापै। नानक सो दे सिमरत बेद, पार ब्रह्म गुर नाही भेद। पैरो महला पंजवा, नाम लैत मन प्रगट पया, नाम लैत पाप तंते गया। नाम लैत सगल पुरबाया, नाम लैत अठ सठ मजनाया। तीर्थ हमरा हर को नाम, गुरु उपदेसया तत् ज्ञान रहाओ। नाम लैत दुख दूर पराना, नाम लैत अतमूढ़ सुगयाना। नाम लैत प्रगट उजियारा, नाम लैत छुट्टे जंजारा। नाम लैत जम नेड़ना आवै, नाम लैत दरगह सुख पावै। नाम लैत प्रभ कह सबास, नाम हमारी साची रास। गुर उपदेश कयो एहो सार, हर कीर्त मन नाम आधार। नानक उधरे नाम पुनै चार, अवर कर्म लोकै पतियार। पैरो महला पंजवा, नमस्कार ता कौ लख बार, एहो मन दीजै ता कौ वार। सिमरन ता कै मिटै संताप, होए आनंद ना व्यापै ताप। ऐसो हीरा निर्मल नाम, जास जपत पूर्ण सब काम रहाओ। जां की दृष्ट दुख डेरा टह, अमृत नाम शीतल मन गह। अनक भगत जाके चरण पुजारी, सगल मनोरथ पूर्ण हारी। खिन मैं ऊणे सुबर भरिया, खिन मैं सूके कीने हरिया। खिन मैं निथावे कौ दीनो थान, खिन मैं निमाणे कौ दीनो मान। सब मैं एक रहा पर पूरा, सो जापै जे सतगुर पूरा। हर कीर्तन ताको आधार, कहो नानक जिस आप दयार। पैरो महला पंजवा, मोहे दुहागन आप सिंगारी, रूप रंग दे नाम सवारी। मिट्यो दुखर सगल संताप, गुर होए मेरी माई बाप। सखी सहेरी मेरा ग्रस्त आनंद, कर कृपा भेटे मोहे कंत रहाओ। तपत बुझी पूर्ण सब आसा, मिटिया देर भय प्रगासा। अनहद शब्द अचरज बिस्माद, गुरपूरा पूरा प्रसाद। जां कौ प्रगट भय गोपाल, ता कै दर्शन उसदा निहाल। सर्ब गुणा ता कै बहुत निदान, जा को सतगुर दियो नाम।
ਜਾਂ ਕਉ ਭੇਟਿਓ ਠਾਕੁਰ ਅਪਨਾ ਮਨ ਤਨ

चितवत पाप ना आल के आवै, बेसवा भजत किशनै शरमावै। सारो दिन समझूरी करै, हर सिमरन की वेला बज्जर सिर परै। माया लग पुलो संसार, वा पुलाया पुलावन हारै। राच रहया बिरथा व्यवहार, रहाओ पेखत माया रंग बिहाए। गड़बड़ करै कौडी रंग लाए, अंध व्यवहार बंद मंत आवै। करने हारना जी मैं आवै, करत करत इव ही दुख पाया। पूर्ण होत ना कार्ज माया, काम क्रोध लोभ मन लीना। तड़फ मुआ ज्यो जल बिन मीना, जिसके राखे होए हरे आप। हर हर नाम सदा जप जाप, साध संग हर के गुण गाया। नानक सतगुर पूरा पाया, पैरों महला पंजवा। अपनी दया करे सो पाए, हर का नाम मन वसाए। साध शब्द हृदय मन माहे, जन्म जन्म के किल विख जाहे। राम नाम जी को आधार, गुर प्रसाद जपो नित पाई। तार लय सागर संसार, रहाओ जिन को लिखिया हर एहो निदान। से जंतर गै पावै मान, सुख सहज आनंद गुण गाओ। अगै मिले निथावे थाओ, जुगै जुगंतर एहो तत सार। हर सिमरन साचा विचार, जिस लड़ लाए लय सो लागै। जन्म जन्म का सोया जागै, तेरे भगत भगतन का आप। अपनी महिमा आपे जाप, जी जंत सब तेरे हाथ। नानक के प्रभ सदी साथ, पैरो महला पंजवा। नाम हमारा अंतरजामी, नाम हमारा आवै कामी। रोम रोम रव्या हर नाम, सतगुर पूरे कीनो दान। नाम रत्न मेरे भंडार, अगम्या मोला।

नाम हमारा है पूरा साहो, नाम हमारा है बेपरवाहो, नाम हमारा है भोजन पाओ, नाम हमारा है मन का स्वाओ, नाम

हम तेरे जंत तू बजावन हारा, हम तेरे भिखारी दान दे दातारा। तौ प्रसाद रंग रस माणे, घट घट अंतर तुम्हें समाणे। तुमरी कृपा ते जपिए नाओ, साध संग तुमरे गुण गाओ। तुमरी दया ते होए दर्द विनाश, तुमरी माया ते कमल विगास। हम बलिहार जाओ गुरुदेव, सफल दर्शन जाकी निर्मल सेव। दया करो ठाकुर प्रभ मेरे, गुण गावे नानक नित तेरे। पैरो महला पंजवा, सब ते ऊंच जाका दरबार। सदा सदा ताको जोहार, ऊंचे ते ऊंचा जाका थान। कोट अग्गा मिटे हर नाम, ते सरनाई सदा सुख होए। कर कृपा जाको मिले सोए रहाओ। जाके करतब लखे ना जाहे, जाका प्रवासा सब घट माहे। प्रगट भया साधु कै संग, भगता राधे अंदन रंग। दें दे तोट नहीं पंडार, खिन मैं थापो थापनहार। जाका हुक्म ना मिटे कोए, सिर पातशाह साचा सोए। जिसकी ओट तिसे की आसा, दुख सुख हमरा तिसी पासा। राख लीनो सब जन का पड़दा, नानक तिसकी उस्तत करदा। पैरो महला पंजवा, रोवन हारी रोज बनाया। बलन बर्तन कौ संबंध चेते आया। बूझ बैराग करे जे कोए, जन मरण फिर सोग ना होए। बिखिया का सब तंद पसार, विरले की नौना म्याधार रहाओ। त्रिबद माया रही ब्याप, जो लपटानो ते दुख संताप। सुख नाही बिन नाम ते आए, नाम निदान वट पागी पाए। स्वांगी स्यों जो मन दी जावै, स्वांग उतारे फिर पछतावै। मेघ की छाया जैसे बर्तन हार, तैसो परपंच मोह बेकार। एक वस्त जे पावै कोए, पूर्ण काज ताही का होए। गुर प्रसाद जिन पाया नाम, नानक आया सो प्रवान। पैरो महला पंजवा, संत की निंदा जो नी भवना। संत की निंदा रोगी करना, संत की निंदा दुख सहाम। दान दैत निंद कौ जाम, संत संग करै जो बाद। तिन निंदै नाही के साध रहाओ।

निंदक की गत कत हूं नाहे, आ बीजा पे ही खाहे। चोर जार जुआर दे बुरा, अनहोंदा पार निंदक सिर तहरा। पार ब्रह्म के भगत निर्वैर, सो निस्तरै जो पूजे पैर। आद पुरख निंदक पोलाया, नानक कीर्तना जाए मिटाया। पहरो महला पंजवा, नाम हमारा बेदर नाद। नाम हमारा पूरे काज, नाम हमारा पूजा देव। नाम हमारा गुरु की सेव, गुरपुरे दृढ़ो हर नाम। सब ते उत्तम हर हर काम रहाओ। नाम हमारा मज्जन इशनान, नाम हमारा पूर्ण दान। नाम लैते सगल पवीत, नाम जपत मेरे पाई मीत। नाम हमारा सौन संजोग, नाम हमारा तृप्त सो भोग। नाम हमारा सगल आचार, नाम हमारा निर्मल व्यवहार। जाके मन वस्या प्रभ एक, सगल जना की हर हर टेक। मन तन नानक हर गुण गाओ, साध संग जिस देवे नाओ। पैरो महला पंजवा।

गुर सो प्रसन्न होए पौ गए नाम निरंजन मन मै लय दीन दयाल सदा कृपाल बिरस गए सगले जंजाल सुख सहज आनंद कने सा संग मिटे पै परमा अमृत हर हर रसन भने रहाओ चरण कमल स्यो लागो हेत खिर मैं बिरस्यो महाप्रेत आठ पहरो हर हर जप जाप रख नहार गोविंद गुरे आप अपने सेवक औसदा प्रतपार है पगजना के सास निहार है मानस की कहो केतक बात जमते राखै दे कर हाथ निर्मल शोभा निर्मल रीत पार ब्रह्म आया मन चीत कर कृपा गुरदीनो दान नानक पाया नाम निदान पैरव महला पंजवा करण कारण समर्थ गुर मेरा जी प्राण सुखदाता नेरा पै पंजन अबनासी राय दर्शन देखे सब दुख जाए जत कत पेखो तेरी सरना बल बल जाई सतगुर चरना रहाओ पूर्ण काम मिले गुरदेव सफल दाता निर्मल सेव कर गहलीने अपने दास राम नाम रिद्धियो निवास सदा आनंद नाही के सोग दुख दर्द न व्यापै रोग सब किश तेरा तू करने हार पार ब्रह्म गुर अगम अपार निर्मल सोभा अचरज बाणी पार ब्रह्म पूर्ण मन पाणी जल थल महियल रव्या सोए नानक सब किश

सर्व मनोरथ पूर्ण करने, आठ पहर गावत भगवंत, सतगुर दीनो पूरा मंत। सो वड भागी जिस नाम प्यार, तिसके संग तरह संसार रहाओ। सोई ज्ञानी जे सिमरै एक, सो तनवंता जिस बुद्ध बबेक। सो कुलवंता जे सिमरै स्वामी, सो पतवंता जे आप पिछानी। गुर प्रसाद परम पद पाया, गुण गोपाल दिन रहन ते आया। टूटे बंधन पूर्ण आसा, हर के चरण रिदमाहे निवासा। कहो नानक जाके पूर्ण कर्मा, सो जना आया प्रभु की सरना। आप पवित पावन सब कीने, राम रसायन रसना चीने। पैरो महला पंजवा, नाम लै तो किश बिग ना लागे, नाम सुन तो जम दूरों भागे। नाम लै तो सब दुख है नास, नाम जप तो हर चरण निवास। निर्विघ्न भगत पज हर हर नाओ, रसक रसक हर के गुण गाओ रहाओ। हर सिमरत किस चाख ना जो है, हर सिमरत दैत देव ना पुहै। हर सिमरत मोह मान ना बदै, हर सिमरत गर्भ जो ना रुदै। हर सिमरन की सगली बेला, हर सिमरन बहु माया केला। जात अजात जपै जन कोए, जो जापै तिसकी गत होए। हर का नाम जपिए साध संग, हर के नाम का पूर्ण रंग। नानक कहो प्रभु कृपा तार, सा सा सर देहो चितार। पैरो महला पंजवा, आपे सास्ते आपे बेद, आपे कटकट जाने भेद। ज्योत स्वरूप जाकी सब वथ, करण कारण पूर्ण समरथ। प्रभ की ओट गहो मन मेरे, चरण कमल गुरमुखिया राधाओ। दुश्मन दुख न आवे नेरे रहाओ। आपे वन त्रिण त्र पवन सार, जाकै सूत परोया संसार। आपे शिव शक्ति संजोगी, आप निर्वाणी आपे भोगी। जत कत पेखो तत तत सोए, तिस बिन दूजा नाही कोए। सागर तरिए नाम कै रंग, गुण गावे नानक साध संग। मुकत भुगत जुगत वस जाकै, ऊणा नाही किस जनता कै। कर कृपा जिस होए सो प्रसन्न, नानक दास सही जन तन। पहरो महला पंजवा, भगता मन आनंद गोबिंद। अस्थित पय बिनसी सब चिंद, पै ब्रह्म बिनस गए खिन माहे। पार ब्रह्म वसिया मन आए, राम राम संत सदा सहाए। कर बाहर नाले परमेश्वर, रव रहा पूर्ण सब ठाए रहाओ। तन माल जोबन जुगत गोपाल, जी प्राण नित सुख प्रतपाल। अपने दास कौ दे राखे हाथ, निमख ना छोड़ सद ही साथ। हर सा प्रीतम अवर ना कोए, सार संभाले साचा सोए। मात पिता सुतबंद नारायण, आद जुगाद भगत गुण गायण। तिसकी तार प्रभ का मन जोर, एक बिना दूजा नहीं होर। नानक कै मन एहो प्रखार्थ, प्रभु हमारा सारे स्वार्थ। पहरो महला पंजवा, पह कौ पौ पड़िया सिमरत हर नाम। सगल ब्याद मिटी त्रिह गुण की, दास के होए पूर्ण काम रहाओ। हर के लोक सदा गुण गावे, तिनको मिलिया पूर्ण ताम। जन का दर्श बांछे दिन राती, होए पुनीत धर्म राय जाम। काम क्रोध लोभ मद निंदा, साध संग मिटिया अभमान। ऐसे संत भेटे वडभागी, नानक तिनकै सत कुरबान।

नाव मेरे बंद पो नाव मेरे भाई, नाव मेरे संग अंत होए सखाई। माया मैं जिस रखे उदास, कह कबीर हों ता को दास। नंगे आवन नंगे जाना, कोई न रह है राजा राना। राम राजा नौनद मेरा, संपै हेत कला तो तन तेरा रहाओ। आवत संग न जा संगाती, कहा पयो दर बांधे हाथी। लंका गढ़ सोने का पया, मूर्ख रावण क्या ले गया। कहे कबीर किश गुण बिचार, चले दुवारी चले जुआरी दो हथ चार। मैला ब्रह्मा मैला इंद, रव मैला मैला है चंद। मैला मलता है हो संसार, एक हर निर्मल जा कांत ना पार। रहाओ मैले ब्रह्मंडा एक ईस, मैले निस्बा सिर जंतीस। मैला मोती मैला हीर, मैला पौन पाव क्यार नीर। मैले शिव शंकरा महेश, मैले सिद्ध साध क्यार पेख। मैले जोगी जंगम जटा सहेत, मैली काया हंस समेत। कहे कबीर ते जन परवान, निर्मल ते जोरा मैं जान। मन कर मक्का किबला कर देही, बोलनहार परम गुर यही। कहरे मुल्ला बाग निवाज, एक मसीत दसै दरवाज। रहाओ मिसमिल तामस परम कदूरी, पाखले पंचै हुए सबूरी। हिंदू तुर्क का साहिब एक, कह करे मुल्ला कह करे शेख। कह कबीर हाँ पया दीवाना, मुस मुस मनुमा सही समाना। गंगा कै संग सलता बिगरी, सो सलता गंगा हुए निबरी। बिगरियो कबीरा राम दुहाई, साच पायो अन कतै ना जाई। रहाओ चंदन कै संग तरवर बिगरियो, सो तरवर चंदन हुए निबरियो। पारस कै संग तांबा बिगरियो, सो तांबा कंचन हुए निबरियो। संतन संग कबीरा बिगरियो, सो कबीर रामै हुए निबरियो। माथे तिलक हथ माला बाना, लोगन राम खिलौना जाना। जौ हौ बौरा तौ राम तोरा, लोग मरम कह जाने मोरा। रहाओ तोरौ ना पाती पूजौ ना देवा, राम भगत बिन्ने फल सेवा। सदगुर पूजौ सदा सदा मनावौ, ऐसी सेव दरगह सुख पावौ। लोग कहे कबीर बौराना, कबीर का मर्म राम पहचाना। उल्ट जात कुल दो बिसारी, सुन सहज मैं बुंत हमारी। हमरा झगड़ा रहा ना को, पंडित मुल्ला छाडे दो। रहाओ बुन बुन आप पैरावो, जै नहीं आप तहां होएगा वो। पंडित मुल्ला जो लिख दिया, छाड़ चले हम किशु ना लिया। हृदय इखलास निरखले मीरा, आप खोज खोज मिले कबीरा। निरतन आदर कोई ना दे, लाख जतन करे ओ चेतना तरे। रहाओ जो निरतन सरतन कह जाए, आगे बैठा पीठ फिराए। जो सरदन निर्धन कह जाए, दिया आदर लिया बुलाए। निर्धन सरदन दोनों भाई, प्रभु की कला ना मिटी जाई। कह कबीर निर्धन है सोई, जाके हृदय नाम ना होई। गुर सेवा ते भगत कमाई, ताबे मानस देही पाई। इस देही को सिमरै देव, सो देही पज हर की सेव। पजो गोबिंद भूल मत जाहो, मानस जन्म का यही लाहो। रहाओ जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं काया। जब लग बिकल पई नहीं बानी, भजले रेह मन सारिंग पानी। आब ना भजस भजस का उपाई, आवे अंत ना पजया जाई। जो किश करे सोई अवसार, फिर पछताओ ना पावो पार। सो सेवक जो लाया सेव, तिन ही पाए निरंजन देव। गुरमिल ताके खुले कपाट, बहुर ना आवे जो नी बाट। इही तेरा अवसर एह तेरी बार, कट पीतर तू देख विचार। कहत कबीर जीत कह हार, बहुविद कहो पुकार पुकार। शिव की पुरी बसै बुधसार, तह तुम मिलकै करो विचार। ईतूत की सोजी पर कौन कर्म मेरा कर कर मरै। निज पद ऊपर

सो सुरतान जो दोए सर तन बाहर जाता पीतर जाने गगन मंडल में लश्कर करे सो सुरतान छत्र सर तरे जोगी गोरख गोरख करे हिंदू राम नाम उचरे मुसलमान का एक खुदाए कबीर का स्वामी रया सुमाए महल्ला पंजवा जो पाथर को कहते देव ताकि बिरथा हो वैसे व जो पाथर की पाई पाए तिसकी काला जाई जाए ठाकर हमरा सदवो लंता सर्व जिया को प्रभ दान देता रहा अंतर देव न जाने अंध भ्रम का मोहया पावे फंद ना पाथर बोले ना किश दे फोकट कर्म ने फल है सेव जे मृतक कहो चंदन चढ़ावे उसते कहो कवन फल पावे जे मृतक कहो बिष्टा माहे रुलाई ता मृतक का क्या कट जाई कहत कबीर हाँ कहो पुकार समय देख सकत गावार दूजे पाए बहुत कर गाले राम भगत है सदा सुखाले जल में मीन माया के बेदे दीपक पतंग।

डेकाई रहाओ पंखी मृग माया मैराते साकरमाखी अधिक संतापे तुरे उष्ट माया मैं पेला सिद्ध चौरासी माया मैं खेला छे जति माया के बंदा नवे नाथ सूरजर चंदा तपे रखीसर माया मैं सूता माया मैं काल यार पंच दूता स्वान स्याल माया मैं राता बंतर जीते अर सिंघाता मांजार गाडर अर लुबरा बिरख मूल माया मैं परा माया अंतर पीने देव सागर इंद्रा यार तार तेव कहे कबीर जैसे उधर तिस माया तब छूटे जब साधु पाया जब लग मेरी मेरी करे तब लग काज एक नहीं सरे जब मेरी मेरी मिट जाए तब प्रभु काज सवार आए ऐसा ज्ञान विचार मना हर कीना सिमरो दुख भंजना रहाओ जब लग सिंह रह बन माहे तब लग बन फूल ही नाहे जब ही स्यार सिंह को खाए फूल रही सगली बन राय जीतो बूढ़े हार उतरे गुर प्रसादी पार उतरे दास कबीर कह समझाए केवल राम रहो लिवलाए सत्र सह सलाह रह जाके सवा लाख पै काम्बरता के सेख जो कही है कोट अठासी छप्पन कोट जाके खेल खासी मो गरीब की को गुजरावे मजरस दूर मैल को पावे रहाओ तेतीस करोड़ी है खेल खाना चौरासी लख फिर दीवाना बाबा आदम कहो किशन दर दिखाई उन पी पिस्त कनेरी पाई दिल खल हल जाके जर्द रूबानी छोड़क तेब करे सैतानी दुनिया दोस रोस है लोई अपना किया पावे सोई तुम दाते हमसरा पिखारी देव जवाब होए बजगारी दास कबीर तेरी पने समाना पेस्तन जीक राख रह माना सब कोई चलन कहत है उहां ना जानो बैकुंठ है कहां रहाओ आप आपका मर्म ना जाना बात नहीं बैकुंठ बखाना जब लग मान बैकुंठ की आस तब लग नाही चरण निवास खाई कोट ना परलप गारा ना जानो बैकुंठ द्वारा कहे कमीर अब कहिए काहे साध संगत बैकुंठ आहे क्यों लीजे गढ़बंका पाई दोवर कोटियार तेवर खाई रहाओ पांच पचीस मोह मद मत्सर आडी प्रबल माया जन गरीब को जोर ना पहुंचे कहां करो रगराया काम केवारी दुख सुख दरवानी पापुन दरवाजा क्रोध प्रधान महाबड़ दुंदर तै मनमावासी राजा स्वाद सनाहा टोप ममता को कबुद कमान चढ़ाई तसना तीर रहे गढ़ पीतर इं गढ़ लियो न जाई प्रेम पलीता सुरत हवाई गोला ज्ञान चलाया ब्रह्म यगन सहजे परजाली एक चुट सजाया सत संतोख लै लरने लागा तोरे दो दरवाजा साध संगत गुर की कृपा ते पकड़े ओ गढ़ को राजा भगवत पीर सकत स्मरण की कटी काल पै फासी दास कमीर चढ़ियो गढ़ी उपर राज लियो अवनासी गंग गुसायन गहर गंभीर जंजीर बांध कर करे कबीर मन ना डिगे तन काहे कौ डराए चरण कमल चित रहे हो समाए रहाओ गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर मृगशाला पर बैठे कबीर कहे कबीर को संग ना साथ जल थल रखन है रघुनाथ पहराओ कबीर जी अष्टपति कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद आगम दुर्गम गढ़ रचियो बास जामै जोत करे प्रगास बिजली चमके होया आनंद जे पौड़े प्रभ बाल गोबिंद एहो जियो राम नाम लिव लागे जरा मरण छूटे परम भागे रहाओ अबरन बरन स्यो मन ही प्रीत हम मैं गावन गावे गीत अनहद शब्द होत चुनकार जे पौड़े प्रभ श्री गोपाल खंडल मंडल मंडल मंडा त्रया शांति त्रे खंडा आगम्या गोचर रहया अभ्यंत पार ना पावे को तरनी तर मंत
कदली पोहप तू प्रगास, राज्य पंकज मैं लियो निवास। द्वादश दल अब अंतर मंत, जय पौड़े श्री कमलाकंत। अर्ध उर्ध मुख लागो कास, सुन मंडल मैं कर प्रगास। उहां सूरज नाही चंद, आद निरंजन करे आनंद। सो ब्रह्मांड पिंड सो जान, मान सरोवर कर स्नान। सो हंसो जा को है जाप, जा को लिप्त न होए पुण्य अर पाप। अबर्ण बर्ण काम नहीं शाम, अवर न पाइय गुर की साम। तारी न टरे आवे न जाए, सुन सज मेरे उसमाए। मन मध्य जाने जे कोए, जो बोले सो आपै होए। जोत मंत्र मन असर करे, कह कबीर सो प्राणी तरे। कोट सूर जा कै प्रगास, कोट महादेव अर कबलास। दुर्गा कोट जा कै मर्दन करे, ब्रह्मा कोट वेद उचरे। जो जाचाओ तो केवल राम, आन देव स्यो नाही काम। राहो कोट चंद्र में करे चराक, सुरत तीसो जे वै पाक। नाम ग्रह कोट ठांडे दरबार, धर्म कोट जा कै प्रतहार। कवन पवन कोट चौ बारे फिरे, बास कोट सेज बिस्थर। समुद कोट जा कै पानी हार, रुमावल कोटा ठारे पार। कोट कमेर पर पंडार, कोट क लक्ष्मी करे सिंगार। कोट कपापन बहरे, इंद्र कोट जा के सेवा करे। छप्पन कोट जा कै प्रतहार, नगरी नगरी ख्यात्या पार। लट छुट्टी वरते बिकराल।

नाम। असंख कोटियन पूजा करी, एक ना पूजस नामै हरी। प्रणवै नाम दे हो करना, अनंत रूप तेरे नारायणा। पर तन पर दारा पर हरी, ताके निकट बसै नर हरी। जो ना भजंते नारायणा, तिनका मैं ना करो दर्शना। रहाओ जिनके पितर है अंतरा, जैसे पस तैसे हुए नरा। प्रणवत नाम देव ना कह बिना, ना सोहै बत्तीस लखना। दूध कटोरै गड़वै पानी, कपल गाए नामै दुहयानी। दूध पियो गोबिंदे राए, दूध पियो मेरो मन पति आए। नाही ता कर को बाप रसाए, रहाओ सोयन कटोरी अमृत भरी। लैना मैं हरिया गै तरी, एक भगत मेरा हृदय बसै। ना मैं देख नारायण हसै, दूध पी आए भगत गर गया। ना मैं हर का दर्शन भया, मैं बौरी मेरा राम पतार। रच रच ता कहो करो सिंगार। भले निंदो भले निंदो भले निंदो लोग, तन मन राम प्यारे जोग। रहाओ बाद विवाद कहूं स्यो ना कीजै, रसना राम रसायन पीजै। आप जी जान ऐसी बन आई, मिलो गोपाल निशान बजाई। उस्त निंदा करै नर कोई, नामे श्री रंग पेट लसोई। कबहू खीर खांड घीओ ना पावै, कबहू घर घर टूक मंगावै। कबहू पूर्ण चने बनावै, ज्यो राम राखै त्यों रहियै रे भाई। हर की महिमा किश कथन ना जाई, रहाओ। कबहू तुरे तरंग नचावै, कबहू पाए पनियो ना पावै। कबहू खाट सुपेदी सुवावै, कबहू भूम पै आर ना पावै। भणत नाम देव एक नाम निस्तार है, जे गुर मिलै ते पार उतारै। हस्त खेलत तेरे देहुरे आया, भगत करत नामा पकड़ उठाया। हिन्नड़ी जात मेरी जात मराया, शिपे के जन्म काहे कवाया। रहाओ लै कमली चलियो पलटाए, देहुरे पाछै बैठा जाए। ज्यों ज्यों नामा हर गुण उचरै, भगत जना का देहुरा फिरै। पैरो नाम देओ जियो, कर दूजा एको अंकार सतगुर प्रसाद। जैसी भूखे प्रीत्या नाज, त्रिखावंत जल सेती काज। जैसी मूड़ कुटम परायण, ऐसी नामे प्रीत नारायण। नामे प्रीत नारायण लागी, सहि सुभाए पयो बैरागी। रहाओ जैसी पर पुरखा रत नारी, लोभी नर तन का हितकारी। कामी पुरख कामनी प्यारी, ऐसी नामे प्रीत मुरारी। साई प्रीत जे आपे लाए, गुर प्रसादी दुबदा जाए। कबहु ना टूट सो रया समाए, नामे चित लाया सच नाए। जैसी प्रीत बार क्यार माता, ऐसा हरसेती मन राता। प्रणवै नाम देव लागी प्रीत, गोबिंद बसै हमारे चीत। कर की नार त्या गए अंदा, पर नारी सो कालै तंदा। जैसे सिंबल देख सुआ बिकसाना, अंत की बार मुआ लपटाना। पापी का कार्य अग्नि माहे, जलत रह मिटवे कब नाहे। रहाओ हर की भगतना देखै जाए, मार्ग छोड़या मार्ग पाए। मूलों पूला आवै जाए, अमृत डार लाद बिख खाए। ज्यों बेसवा के परया खारा, कापर पहर करै सिंगारा। पूरे ताल निहाले सास, वाके गले जमका है फास। जाके मस्तक लिखियो कर्मा, सो पज पर है गुर की सरना। कहत नाम देव एह बिचार, इनबित संतो उतरो पार। संडा मरका जाए पुकारे, पड़े नहीं हम ही पछारे। राम कहे कर ताल बजावै, चटिया सब बिगारे। राम नामा जप बो करै, हृदय हर जी को सिमरन धरै। रहाओ बसदा बस कीनी, सब राजे बिनती करै पटरानी। पूत प्रहलाद कया नहीं मानै, तिन तौ औरै ठानी।
दुष्ट सभा मिल मंत्र उपाया कर सह औद कनेरी गिरताल जल ज्वाला पह राखे ओ राजा राम माया फेरी काढ़ खड़ग काल पह कोप्यो मोहे बताओ जो तुहे राख पीत पितांबर त्रि पवन तनी थंब माहे हर पाख हर नाकसो जिन नख बिदारियो सुर नर किए सनाथा कह नाम देव हम नर हर त्यावै राम अप है पद दाता सुल्तान पूछे सुन बेनामा देखो राम तुम्हारे कमा नामा सुल्तान ने बांधला देखो तेरा हर बीठला रहाओ बिस्म

सोलह सहसे जारा, पार अठारह मुदगर तेरा, सहनक सब संसारा, देही महजद मन मौलाना, सहजन नवाज गुजार, बीबी कौला सौ कायन तेरा, निरंकार आकार है। भगत करत मेरे ताल शनाए, केह पै करो पुकारा, नामे का स्वामी अंतर जामी, फिरे सगल बेदे सवा। राग बसंत महला पहला, कर पहला चौपदे दो तुके, एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निर्भाव निर्वैर अकाल मूर्त, अजूनी सह भंगुर प्रसाद। महा महा मुमारखी चढ़िया सदा बसंत, पर फड़ चित समाल सोए सदा सदा गोबिंद। पोलिया हों मैं सुरत विसार, हों मैं मार विचार, मन गुण विच गुण लै सार, रहाओ कर्म पेड़ साखा हरी, धर्म फुल फल ज्ञान, पथ प्राप्त शब।

अंतर्यामी प्रभ दयाल अपने दास को नजर निहाल कर कृपा मोह देहो दान जप जीवे नानक तेरो नाम। बसंत महला पंजवा आराम रंग सब गए पाप राम जप तो कछ नहीं संताप। गोविंद जप तो समट अंधेर हर सिमर तो कछ नाए फेर। बसंत हमारा राम रंग संत जना स्यों सदा संग रहाओ। संत जनी किया उपदेश जह गोविंद भगत सो धन देस। हर भगतहीन उदयान थान गुर प्रसाद घट घट पछान। हर कीर्तन रस भोग रंग मन पाप करत तू सदा संग। निगट पेख प्रभ करण हार ईतूत प्रभ कार्य सार। चरण कमल सो लगो ध्यान कर कृपा प्रभ कीनो दान। तेरिया संत जना की पांछो धूर जप नानक स्वामी सद हजूर। बसंत महला पंजवा सच परमेश्वर नित नवा गुर कृपा ते नित चवा। प्रभ रखवाले माई बाप जाकै सिमरण नहीं संताप। खसम ते आई एक मन एक पाए गुरपुरे की सदा सरनाई। साचे साहिब रखिया कंठ लाए रहाओ। अपने जन प्रभ आप रखे दुष्ट दूत सब भ्रम थके। बिन गुर साचे नहीं जाए दुख देस दसंतर रहे ताए। किरत ओना का मिटस नाहे ओए अपना बीजा आप खाहे। जन का रखवाला आप सोए जन को पहुंच ना सकस कोए। प्रभदास रखे कर जतने आप अखंड पूर्ण जाको प्रताप। गुण गोबिंद नित रसन गाए नानक जीवे हर चरण ते आए। बसंत महला पंजवा गुर चरण सरेवत दुख गया पार ब्रह्म प्रभ करी मया। सर्व मनोरथ पूर्ण काम जप जीवे नानक राम नाम। सार उत सुहावी जित हर चित आवै फिर सतगुर दी सह बिललांती सागत फिर आवै जावै रहाओ। से तनवंत जिन हर प्रभ रास काम क्रोध गुर शब्द नास। पह बिन से निरपै पद पाया गुरमिल नानक खसम ते आया। साध संगत प्रभ कियो निवास हर जप जप होई पूर्ण आस। जल थल महियल रव रहया गुरमिल नानक हर हर कहया। अहिट सिद्ध नव निद एह कर्म प्राप्त जिस नाम देह। प्रभ जप जप जीवै तेरे दास गुरमिल नानक कमल प्रगास। बसंत महला पंजवा कर पहला एक तुके एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सगल इच्छा जपनिया प्रभ मिले चिरी विशुनिया। तुम रवो गोविंद रमण योग जित रवै सुख सहज भोग रहाओ। कर कृपा नगर निहालिया अपना दास आप संभालिया। से सुहावी रस बनी आए मिले प्रभ सुख धनी। मेरा गुणे अवगुण ना बिचारिया प्रभ नानक चरण पूजा रिया। बसंत महला पंजवा किल बिख बिनसे गाए गुना आन दिन उपजी सहित होना। मन मौल्यो हर चरण संग कर कृपा साधु जन भेटे। नित राताओ हर नाम रंग रहाओ। कर कृपा प्रगटे गोपाल लड़ लाए उधारे दीन दयाल। एहो मन होवा साध तूर नित देखे स्वामी हजूर। काम क्रोध तृष्णा गई नानक प्रभ कृपा पई। बसंत महला पंजवा रोग मिटाए प्रभु आप बालक राखे अपने कर थाप। सांत सहज गृह सद बसंत गुरपुरे की सरनी आए। कल्याण रूप जप हर हर मंत रहाओ। सोग संताप कटे प्रभ आप गुरे अपने को नित नित जाप। जो जन तेरा जपे नाम
ਸਫਲ ਪਾਏ ਨਿਸ਼ਚਲ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਭਲੀ ਰੀਤ, ਸੁਖਦਾਤਾ ਜਪਦੇ ਨੀਤ ਨੀਤ। ਬਸੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਹੁਕਮ ਕਰ ਕੀਨੇ ਨਿਹਾਲ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕੋ ਭਇਆ ਦਿਆਲ, ਗੁਰਪੁਰੈ ਸਭ ਪੂਰਾ ਕੀਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਿੰਦੀਆ। ਰਹਾਓ ਕਰਮ ਧਰਮ ਮੇਰਾ ਕਛ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਬਾਹਾਂ ਪਕੜ ਭਵਜਲ ਨਿਸਤਾਰਿਓ, ਪ੍ਰਭ ਕਾਟ ਮਹਿਲ ਨਿਰਮਲ ਕਰੇ, ਗੁਰਪੁਰੇ ਕੀ ਸਰਣੀ ਪਰੇ, ਆਪ ਕਰੈ ਆਪ ਕਰਨੈ ਹਾਰੇ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਨਕੋ ਧਾਰੇ। ਬਸੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਦੇਖ ਫੂਲ ਫੂਲ ਫੂਲੇ, ਅਹੰ ਤਿਆਗ ਤਿਆਗੇ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਾਗੇ, ਤੁਮ ਮਿਲੋ ਪ੍ਰਭ ਸੁਭਾਗੇ, ਹਰ ਚੇਤ ਮਨ ਮੇਰੇ ਰਹਾਓ, ਸਗਨ ਬਾਸ ਕੂਲੇ, ਇੱਕ ਰਹੇ ਸੂਖ ਕਠੂਲੇ, ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਆਈ ਪਰ ਫੂਲਤਾ ਰਹੇ, ਅਬ ਕਲੂ ਆਇਓ ਰੇ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਬੋਵੋ ਬੋਵੋ, ਅਨਰੂਤ ਨਾਹੀ ਨਾਹੀ, ਮਤ ਭਰਮ ਭੂਲੋ ਭੂਲੋ, ਗੁਰ ਮਿਲੇ ਹਰ ਪਾਏ, ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਹੈ ਲੇਖਾ, ਮਨ ਰੁੱਤ ਨਾਮ ਰੇ, ਗੁਣ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰੇ ਹਰ ਹਰੇ। ਬਸੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਕਰ ਦੂਜਾ ਹਿੰਡੋਲ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਦਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਹਰ ਨਾਮੈ ਕੇ ਹੋਵੋ ਜੋੜੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਸੋ ਸਫਾ ਵਿਛਾਏ, ਇਨ ਬਿਦ ਪਾਸਾ ਢਾਲੋ ਬੀਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੋ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਅੰਤਕਾਲ ਨਹਿ ਲਾਗੈ ਪੀਰ। ਰਹਾਓ ਕਰਮ ਧਰਮ ਤੁਮ ਚੌਪੜ ਸਾਜੋ, ਸਤ ਕਰੋ ਤੁਮ ਸਾਰੀ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਜੀਤੋ, ਐਸੀ ਖੇਲ ਹਰ ਪਿਆਰੀ, ਉਠ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭਾਤੇ, ਸੋਏ ਹਰ ਆਰਾਧੇ ਬਿਖੜੇ ਦਾਓ, ਲੰਘਾਵੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਖ ਸਹਿ ਸੇਤੀ ਘਰ ਜਾਤੇ, ਹਰ ਆਪੇ ਖੇਲੈ ਆਪੇ ਦੇਖੈ, ਹਰ ਆਪੇ ਰਚਨ ਰਚਾਇਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜੋ ਨਰ ਖੇਲੈ, ਸੋ ਜਿਣ ਬਾਜੀ ਘਰ ਆਇਆ। ਬਸੰਤ ਮਹੱਲਾ।

काम क्रोध बिख बज्र पार ना बिना कैसे गुणचार रहाओ। कार बालू का कुमन केर बरखस बाणी बुध बुदा हेर मात्र बूंद ते तार चक फेर सर्ब जोत नामे की चेर सर्ब उपाय गुरु सिर मोर भगत करो पगला गौ तोर। नाम रता चाहो तुझे और नाम दुराए चले सो चोर पत खोई बिखियंचल पाए साच नाम रतो पास्यों कर जाए जो किशकीनस प्रभर जाए। पै माने निरपो मेरी माए कामन चाहे सुंदर भोग पान फूल मीठे रस रोग खिले बिकसै ते तो सोग प्रभ शरणागत कीनस होग। कापड़ पहरस अधिक सिंगार माटी फूली रूप बेकार आसा मनसा बांधो बार नाम बिना सुना कर बार। गाछो पुत्री राजकुमार नाम भणो सच दोत सवार प्रयो सेवो प्रभ प्रेम आधार गुर शब्दी बिखत्या सनिवास। गुर शब्दी बिखत्या सनिवार मोहन मोहे लिया मन मोहे गुर कै शब्द पछाना तोहे। नानक ठांडे चाहे प्रभु दयार तेरे नाम संतोखे कृपा धार। बसंत महला पहला मन भूलो परमस आए जाए अत लुब्ध लुबानो बिख माए। नए असर दी सहक पाए जो मीन कुंडलिया कंठ पाए। मन भूलो समझ सो साच नाए गुर शब्द बिचारे।

काम क्रोध मन वस किया, सुपने नाम ना हर लिया। कभी राजा कब मंगनहार, दुख सुख बंधो संसार। मन उदरण का साजना है, पाप बंधन नित पौत जाहे। ईठ मीत को सखा ना है, आप बीज आपे ही खाहे। जा कह कीने होत बेकार, से छोड़ चलिया खिन मैं गावार। माया मोहे बहु परमया, किरत रेख कर करमया। करण हारा लिपत आप, नहीं लेप प्रपुन पाप। राख लेहो गोबिंद दयाल, तेरी शरण पूर्ण कृपाल। तुझ बिन दूजा नहीं ठाओ, कर कृपा प्रभ देहो नाओ। तू करता तू करनहार, तू ऊंचा तू बहु अपार। कर कृपा लड़ ले हो लाए, नानक दास प्रभ की शरणाए। बसंत की वार महल पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर का नाम ते आए कै, हो हरिया पाई। कर्म लिखन तै पाई है, एहरुत सुहाई। वन त्रैण त्र पौन मौलिया, अमृत फल पाई। मिल साधु सुखी उपजै, लथी सब शाई। नानक सिमरै एक नाम, फिर बहुना ताई। पंजे बद्दे महाबली, कर सच्चा टोवा। अपने चरण जपायन, विच दै खड़ोवा। रोग सोग सा मिट गए, नित नवा निरोवा। दिन रैण नाम त्याईंदा, फिर पाए ना मोवा। जिस ते उपजिया नानका, सोई फिर होवा। किथों उपजै कह रहै, कै माए समावै। जी जंत सब खसम के, कौन कीमत पावै। कह न त्याय न सुन नित, से भगत सुहावै। अगमा गोचर साहेबो, दूसर लवै ना लावै। सच पूरै गुरु उपदेसिया, नानक सुनावै। बसंत बाणी भगतां की, कबीर जी कर पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मौली धरती मौलिया आकाश, कटकट मौलिया आत्म प्रगास। राजा राम मौलिया अंत पाए, जै देखा तै रहा समाए। रहाओ द्वितीया मौले चार वेद, सिमरत मौली स्यो कतेब। शंकर मौल्यो योग त्यान, कबीर को स्वामी सब समान। पंडित जन माते पढ़ पुराण, जोगी माते जोग त्यान। सन्यासी माते हमेव, तपसी माते तब कह पेव। सब मत माते को न जाग, संग ही चोर कर मुसन लाग। रहाओ जागै सुख देओ आर्यकूर, हनुमंत जागै तर लंकूर। शंकर जागै चरण सेव, कल जागे नामा जय देव। जागत सुबत बहु प्रकार, गुरमुख जागै सोई सार। इस देही के अधिक काम, कह कबीर भज राम नाम। जोय खसम है जाया, पूत बाप खेलाया। बिन श्रवणा खीर पिलाया, देखो लोगा कल को पाओ। सुत मुकलाई अपनी माओ। रहाओ पग्गा बिन हुरिया मारता, बदने बिन खिर खिर हासता। निंद्रा बिन नर पैसोवै, बिन बासन खीर बलोवै। बिन असन गऊ लवेरी, पेंडे बिन बाट कनेरी। बिन सतगुर बाट ना पाई, कहो कबीर समझाई। प्रहलाद पठाए पंडसाल, संग सखा बहुलिए बाल। मोको कहां पढ़ाव सियाल जाल, मेरी पटिया लिख देहो श्री गोपाल। नहीं छोड़ो रे बाबा राम नाम, मेरो और पढ़न से नहीं काम। रहाओ संडै मर कह कहो जाए, प्रहलाद बुलाए बेगताए। तू राम कहन की छोड़ बान, तुझ तुरत छिड़ाऊ मेरो कहो मान। मोको कहां सतावो बार बार, प्रभ जल थल गिर किए पहार। एक राम ना छोड़ो गुरहगार, मोको काल जार पावे मार डार। काड़ खड़ग को प्यो रसाए, तुझ रख नहारो मोहे बताए। प्रभ थम ते निकसे कै विस्तार, हर नक्ष छेदियो नख बिदार। ओए परम पुरख देवाद देव, भगत हेत नरसिंह पेव। कह कबीर को लखे ना पार, प्रहलाद उधारे अनकबार।
ਇਸ ਤਨ ਮਨ ਮੱਧੇ ਮਦਨ ਚੋਰ, ਜਿਨ ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਹਿਰਲੀਨ ਮੋਰ। ਮੈਂ ਅਨਾਥ ਪ੍ਰਭ ਕਹੋ ਕਾਹੇ, ਕੋ ਨਾ ਬਿਗੂ ਤੋ ਮੈਂ ਕੋ ਆਹੇ। ਮਾਦਾ ਦਾਰਨ ਦੁਖ ਸਯੋ ਨਾ ਜਾਏ, ਮੇਰੋ ਚਪਲ ਬੁੱਧ ਸਿਓ ਕਹਾਂ ਬਸਾਏ। ਰਹਾਓ ਸਨਕ ਸਨੰਦਨ ਸਿਵ ਸੁਕਾਦ, ਨਾਭ ਕਮਲ ਜਾਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾਦ। ਕਬ ਜਨ ਜੋਗੀ ਜਟਾ ਤਾਰ, ਸਭ ਆਪਣੇ ਅਵਸਰ ਚੱਲੇ ਸਾਰ। ਤੂੰ ਅਥਾਹ ਹੋ ਮੋਹੇ ਥਾਹ ਨਾਹੇ, ਪ੍ਰਭ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਦੁਖ ਕਹੋ ਕਾਹੇ। ਮੋਰੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖਿਆਥ ਤੀਰ, ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਗੁਣ ਰਹੁ ਕਬੀਰ। ਨਾਇਕ ਏਕ ਬਨਜਾਰੇ ਪਾਚ, ਬਰਦ ਪਚੀਸਕ ਸੰਗ ਕਾਚ। ਨਹੋ ਬਹੀਆਂ ਦਸ ਗੁਣ ਆਹੇ, ਕਸਨ ਬਹੱਤਰ ਲਾਗੀ ਤਾਹੇ। ਮੋਹੇ ਐਸੇ ਬਣਜ ਸਿਓ ਨਹੀਂ ਨਕਾਜ, ਜਿਹੇ ਘਟੈ ਮੂਲ ਨਿਤ ਬੜੈ ਬਿਆਜ। ਰਹਾਓ ਸਾਤ ਸੂਤ ਮਿਲ ਬਨ ਯਕੀਨ, ਕਰਮ ਭਾਵਨੀ ਸੰਗ ਲੀਨ। ਤੀਨ ਜਗਾਤੀ ਕਰਤਰਾਰ, ਚਲੋ ਬਨਜਾਰਾ ਹੱਥ ਚਾਰ। ਪੂੰਜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਬਨਜ ਟੂਟ, ਦਹਿ ਦਿਸ ਟਾਂਡੋ ਗਯੋ ਫੂਟ। ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਮਨ ਸਰਸੀ ਕਾਜ, ਸਹਿਜ ਸਮਾਨੋ ਤਾਂ ਭਰਮ ਪਾਜ। ਬਸੰਤ ਹਿੰਡੋਲ ਕਰ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ।

नारायण सो प्रसन्न होए ता सेवक नामा लोभ लहर अत निजर बाजे काया डूबे केसवा संसार समुंदे तार गोबिंदे तार लै बाप बीठला रहाओ अनल बेड़ा हों खेव ना सकाऊं तेरा पार ना पाया बीठला हो दयाल सतगुर मेल तू मोको पार उतारे केसवा नामा कह हों तार पी ना जाना मोको बहां दे बीठला सहज अवल धूड़ मणि गाड़ी चालती पीछे तिनका लेकर हागती जैसे पनकत थ्रू टिट हाँकती सर तोवन चाली लाडली रहाओ तो भी तो वह बिरा बिराता हर चरण मेरा मन राता पंत नाम देव रम रहे अपने भगत पर कर दया। बसंत बाणी रविदास जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद तुझे सुजनता कशु नाहे पहरावा देखे उपजाहे गर्भवती का नाही ठाओ तेरी गर्दन ऊपर लवे काओ तू काए गर्भ बावली जैसे पांदव खूंब राज तू तिस्ते खरी उतावली रहाओ जैसे कुरंक नहीं पायो पेद तन सुगंध ढूंढे परदेस आप तन का जो करे विचार तिस नहीं जम कंकर करे खुवार पुत्र कलत्र का करे हंकार उठाकर लेखा मंगनहार फेड़े का दुख सह जियो पाछे किसे पुकारे पियो पियो साधु की जौ लेहे ओट तेरे मिटे पाप सब कोट कोट कह रविदास जो जपे नाम तिस जात ना जन्म ना जोन काम। बसंत कबीर जियो एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुरह की जैसी तेरी चाल तेरी पुष्ट ऊपर चमकबाल इस घर में है सो तू ढूंढ खाहे और किसी के तू मत ही जाहे रहाओ चाकी चाटे चून खाहे चाकी का चीथरा कहाँ ले जाहे शीके पर तेरी बहुत डीठ मत लकड़ी सोटा तेरी परे पीठ कह कबीर भोग पले कीन मत को मारे ईट टेम राग सारंग चौब दे महला पहला कर पहला एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सह भंगुर प्रसाद अपने ठाकर की हों चेरी चरण गहे जग जीवन प्रभ के हों मैं मारन बेरी रहाओ पूरन परम ज्योत परमेश्वर प्रीतम प्राण हमारे मोहन मोहे लिया मन मेरा समझ सो शब्द विचारे मन मुख हीन होची मत झूठी मन तन पीर शरीरे जबकि राम रंगी लहराती राम जपत मन तीरे हाँ मैं छोड़ पई बैरागन तब साची सुरत समानी अकोल निरंजन स्यो मन मानिया बिसरी लाज लुकानी पूर भविख नाही तुम जैसे मेरे प्रीतम प्राण आधारा हर कै नाम रति सुहागन नानक राम पतारा सारंग महला पहला हर बिन क्यों रही है दुख व्यापै जेहवा साधना फिकी रस बिन बिन प्रभ काल संताप रहाओ जब लग दर्शना परसे प्रीतम तब लग भूख प्यासी दर्शन देखते ही मन मानिया जल रस कमल बेगासी ऊनव कनहर गरजै बरसै कोकल मोर बैरागै तरवर बिरख बहंग भयंगम कर पिर तन सोहागै कुचर करूप कुनार कुलखनी पिरका सहज ना जानिया हर रस रंग रसन नहीं तृप्ति दुर्मत दुख समानिया आए न जावे ना दुख पावे ना दुख दर्द शरीरे नानक प्रभ ते सह सुहेली प्रभ देखत ही मन तीरे सारंग महला पहला दूर नाही मेरो प्रभ प्यारा सतगुर बचन मेरो मन मानिया हर पाए प्राण आधारा रहाओ
ਇਨ ਬਿਦ ਹਰ ਮਿਲੀਐ ਵਰ ਕਾਮਨ ਤਨ ਸੁਹਾਗ ਪਿਆਰੀ ਜਾਤ ਵਰਨ ਕੁਲ ਸਹਿ ਸਾਚੂ ਕਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੀ ਜਿਸ ਮਨ ਮਾਨੈ ਅਭਮਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਕਉ ਹਿੰਸਾ ਲੋਭ ਵਿਸਾਰੇ ਸਹਿਜ ਰਵੈ ਵਰ ਕਾਮਨ ਪਿਰ ਕੀ ਗੁਰਮੁਖ ਰੰਗ ਸੁਵਾਰੇ ਜਾਰੋ ਵੈਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕੁਟੰਬ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਸਾਰੀ ਜਿਸ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰੀਤ ਰਾਮ ਰਸ ਨਾਹੀ ਦੁਬਦਾ ਕਰਮ ਬਿਕਾਰੀ ਅੰਤਰ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਹਿਤ ਕਉ ਦੁਰੈ ਨਾ ਲਾਲ ਪਿਆਰੀ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਅਮੋਲਕ ਜੁਗ ਜੁਗ ਅੰਤਰ ਧਾਰੀ ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਕਰ ਪਹਿਲਾ ਏਕੋ ਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਹਮ ਧੂਰ ਮਿਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਆਤਮ ਰਾਮ ਰਿਆ ਭਰਪੂਰ ਰਹਾਉ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਤ ਮਿਲੈ ਸ਼ਾਂਤ ਪਾਈਐ ਕਿਲ ਵਿਖ ਦੁਖ ਕਾਟੇ ਸਭ ਦੂਰ ਆਤਮ ਜੋਤ ਭਈ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਖਿਆ ਹਜੂਰ ਵੱਡੈ ਭਾਗ ਸਤਸੰਗਤ ਪਾਈ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਰਹਾ ਭਰਪੂਰ ਅੱਠ ਸੱਠ ਤੀਰਥ ਮੱਜਨ ਕੀਆ ਸਤਸੰਗਤ ਪਗ ਨਾਏ ਧੂਰ ਦੁਰਮਤ ਬਿਕਾਰ ਮਲੀਨ ਮਤ ਹੋਛੀ ਹਿਰਦਾ ਕਸੁੱਧ ਲਾਗਾ ਮੋਹਪੂਰ ਬਿਨ ਕਰਮਾ ਕਿਉਂ ਸੰਗਤ ਪਾਈਐ ਹਮੈ ਵਿਆਪ ਰਹਿਆ ਮਨ ਚੂਰ ਹੋ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਹਰ ਜੀ ਮੰਗੋ ਸਤਸੰਗਤ ਪਗ ਧੂਰ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਮਿਲੈ ਹਰ ਪਾਈਐ ਜਨ ਹਰ ਭੇਟਿਆ ਰਾਮ ਹਜੂਰ ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਗੋਬਿੰਦ ਚਰਨਨ ਕਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਭਵ ਜਲ ਜਗਤ ਨਾ ਜਾਈ ਤਰਨਾ ਜਪ ਹਰ ਹਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰੀ ਰਹਾਉ ਹਿਰਦੈ ਪ੍ਰਤੀਤ ਬਨੀ ਪ੍ਰਭ ਕੇਰੀ ਸੇਵਾ ਸੁਰਤ ਵਿਚਾਰੀ ਅਣਦਿਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਹਿਰਦੈ ਸਰਬ ਕਲਾ ਗੁਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭ ਅਗਮਿਆ ਗੋਚਰ ਰਵਿਆ ਸਰਬ ਠਾਈ ਮਨ ਤਨ ਅਲਖਿਆ ਪਾਰੀ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾਲ ਪਏ ਤਬ ਪਾਇਆ ਹਿਰਦੈ ਲਖ ਲਖਾਰੀ ਅੰਤਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਰਬ ਧਰਣੀ ਧਾਰ ਸਾਕਤ ਕਉ ਦੂਰ ਪਇਆ ਹੰਕਾਰੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਲਤ ਨਾ ਕਬ ਹੂੰ ਬੂਝੈ ਜੂਐ ਬਾਜੀ ਹਾਰੀ ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਗੁਰ ਕਿੰਚਿਤ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਉ ਨਦਰ ਪਈ ਹੈ ਤਿਨ ਕੀ ਪੈ ਸਵਾਰੀ ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦੇਹੋ ਪਿਆਰੇ ਜਿਨੀ ਉੱਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ਰਹਾਉ ਜੋ ਜਨ ਦੀਨ ਭਏ ਗੁਰ ਆਗੈ ਤਿਨ ਕੇ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤ ਕਰੈ ਗੁਰ ਆਗੈ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰੇ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਰਸਨਾ ਰਸ ਗਾਵੈ ਰਸ ਵਿਚਾਰੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਚੀਨਿਆ ਓਏ ਪਾਵੈ ਮੁਖ ਦੁਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਅਚਲ ਅਚੱਲਾ ਮਤ ਜਿਸ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਮ ਆਧਾਰੇ ਤਿਸ ਆਗੈ ਜੀਓ ਦੇਵੋ ਆਪਣਾ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਬਲਿਹਾਰੇ ਮਨਮੁਖ ਭ੍ਰਮ ਦੂਜੈ ਪਾਏ ਲਾਗੇ ਅੰਤਰ ਅਗਿਆਨ ਗੁਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵੈ ਨਾ ਉਰਵਾਰ ਨਾ ਪਾਰੇ ਸਰਬੇ ਘਟ ਘਟ ਰਵਿਆ ਸੁਆਮੀ ਸਰਬ ਕਲਾ ਕਲ ਧਾਰੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹਿਤ ਹੈ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਲਿਹੋ ਬਾਰੇ ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਐਸੀ ਕਾਰ ਕਮਾਏ ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੇ ਸੋ ਸਤਿਕਾਰ ਮਾਨੋ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਰਹੋ ਲਿਵਲਾਏ ਰਹਾਉ ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰੀਤ ਲੱਗੀ ਅਤ ਮਿੱਠੀ ਅਵਰ ਵਿਸਰ ਸਭ ਜਾਏ ਅਣ ਦਿਨ ਰਹਿਸ ਭਇਆ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਏ ਜਬ ਗੁਣ ਗਾਏ ਤਬ ਹੀ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤੈ ਸਾਂਤ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾਲ ਭਏ ਤਾ ਪਾਇਆ ਹਰ ਚਰਨੀ ਚਿਤ ਲਾਏ ਮਤ ਪ੍ਰਗਾਸ ਭਈ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਗਿਆਨ ਤਤ ਲਿਵ ਲਾਏ ਅੰਤਰ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟੀ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਹਰ ਸਹਿ ਸਮਾਧ ਲਗਾਏ ਹਿਰਦੈ ਕਪਟ ਨਿਤ ਕਪਟ ਕਮਾਵੈ ਮੁਖੋਂ ਹਰ ਹਰ ਸੁਣਾਏ ਅੰਤਰ ਲੋਭ ਮਹਾਂ ਗੁਬਾਰਾ ਤੁਹ ਕੂਟੈ ਦੁਖ ਖਾਏ ਜਬ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਭਏ ਭਰਮ ਮੇਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਚਾ ਲਾਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਪਾਇਆ ਨਾਮ ਜਪਤ ਸੁਖ ਪਾਏ ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਮਨ ਮਾਨੀ ਮੇਰਾ ਹੀ ਅਰੈ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ ਮਨ ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਸੁਖਾਨੀ ਰਹਾਓ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਹੋ ਜਨ ਉੱਪਰ ਜਨ ਦੇਵੋ ਕਥ ਕਹਾਨੀ
संत जना मिल हर रस पाया हर मंत्र मीठ लगानी हर कै रंग रते बैरागी जिन गुरमत नाम पछानी पुरख है पुरख मिलिया सुख पाया सब चूकी आवन जानी नैनी बिरह देखा प्रभ स्वामी रसना नाम वखानी श्रवणी कीर्तन सुनो दिन राती हृदय हर हर पानी पंच जना गुर वसगत आने तो उन मन नाम लगानी जन नानक हर कृपा तहारी हर रामै नाम समानी सारंग महला चौथा जप मन राम नाम पढ़ सार राम नाम बिन थिर नहीं कोई होर ने फल सब विस्थार रहाओ क्या लीजै क्या तजिए बौरे जो दिसै सो शार जिस बिखिया कहो तुम अपनी कर जानो सा छाड़ जाहो सिर पहार तिल तिल पल पल औध फुन घटै बूझ ना सकै गवार सो किश करै जे साथ ना चालै एहो संगत का आचार संत जना कै संग मिल बौरे तो पावे मुख द्वार बिन सत संग सुख किने ना पाया जाए पूछो बेद विचार राणा राव सवै को लागे झूठ छोड़ जाए पासार नानक संत सदा थिर निहचल जिन राम नाम आधार सारंग महला चौथा कर तीजा दो पदा एक ओंकार सतगुर प्रसाद काहे पूत चगरत हो संग बाप जिनके जने बडीरे तुम हो तिन स्यो चगरत पाप रहाओ जिस धन का तुम गर्व करत हो सो तन किसै ना आप खिन में छोड़ जाए बिखिया रस तो लागै पछताप जो तुमरे प्रभोते स्वामी हर तिन के जापो जाप उपदेश करत नानक जन तुम कहो जो सुनहो तो जाए संताप सारंग महला चौथा कर पंजवा दो पदे पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद जप मन जगन्नाथ जगदीशरो जग जीवनो मन मोहन स्यो प्रीत लागी मैं हर हर हर टेक सब दिन सो सब रात रहाओ हर की उपमा अनक अनक अनक गुण गावत सुख नारद ब्रह्मादक तब गुण स्वामी गणन ना जात तू हर बेअंत तू हर बेअंत तू हर स्वामी तू आपे ही जन है अपनी पांत हर कै निकट निकट हर निकट ही बसते ते हर के जन साधु हर पगात ते हर के जन हर स्यो रल मिले जैसे जन नानक सलल सलल मिलात सारंग महला चौथा जप मानो नर हरे नर हर स्वामी हर सगल देव देवा श्री राम राम नामा हर प्रीतम मोरा रहाओ जित ग्रह गुण गावते हर के गुण गावते राम गुण गावते तित ग्रह वाजे पंच शब्द वडभाग मथोरा तिन जन के सब पाप गए सब दोह गए सब रोग गए काम क्रोध लोभ मोह अवमान गए तिन जन के हर मार कड़े पंच चोरा हर राम बोलो हर साधु हर के जन साधु जगदीश जपो मन बचन कर्म हर हर आराधु हर के जन साधु हर राम बोल सब पाप गवादु नित नित जागरण करो सदा सदा आनंद जप जगदीशोरा मन इच्छे फल पावो सबै फल पावो धर्म अर्थ काम मोख जन नानक हर स्यो मिले हर भगत तोरा सारंग महला चौथा जप मन माधो मधुसूदनो हर श्री रंगो परमेश्वरो सत परमेश्वरो प्रभ अंतर जामी सब दुखन को हंता सब सुखन को दाता हर प्रीतम गुण गाओ रहाओ हर कटकटे कट बसता हर जल थले हर बसता हाथान थनंतर बसता मैं हर देखन को चाओ कोई आवे संतो हर का जन संतो मेरा प्रीतम जन संतो मोहे मार्ग दिखलावे ते जन के हम मल मल तोवा पाओ हर जन को हर मिलिया हर सरदाते मिलिया गुरमुख हर मिलिया
ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਆਨੰਦ ਭਏ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹਰ ਰਾਉ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਹੋ ਕਿਰਪਾ ਪਈ, ਹਰ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਪਈ, ਜਗਦੀਸ਼ਰ ਕਿਰਪਾ ਪਈ, ਮੈਂ ਅਨਦਿਨੋ ਸਦ ਸਦਾ ਮੈਂ ਅਨਦਿਨੋ ਸਦ ਸਦਾ ਹਰ ਜਪਿਆ ਹਰ ਨਾਉ। ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਜਪ ਮਨ ਨਿਰਭਉ, ਸਤ ਸਤ ਸਦਾ ਸਤ, ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਆਯੂਨੀ ਸੰਭਉ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਅਨਦਿਨੋ ਧਿਆਏ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਾਹਾਰੀ ਰਹਾਉ। ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਹੋ, ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਹੋ, ਕੋਟ ਕੋਟ ਤਤੀ ਸਿਧ ਜਤੀ ਜੋਗੀ, ਤੜ ਤੀਰਥ ਪਰ ਭਵਨ ਕਰਤ ਰਹਿਤ ਨਿਰਾਹਾਰੀ। ਤਿੰਨ ਜਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਥਾਏ ਪਈ, ਜਿਨ ਕਉ ਕਿਰਪਾਲ ਹੋਵਤ ਬਨਵਾਰੀ, ਹਰ ਕੇ ਹੋ ਸੰਤ ਭਲੇ ਤੇ ਉਤਮ ਭਗਤ ਭਲੇ, ਜੋ ਭਾਵਤ ਹਰ ਰਾਮ ਮੁਰਾਰੀ, ਜਿਨ ਕਾ ਅੰਗ ਕਰੈ ਮੇਰਾ ਸਵਾਮੀ, ਤਿਨ ਕੀ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪੈ ਸਵਾਰੀ। ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਪੜਤਾਲ। ਜਪ ਮਨ ਗੋਵਿੰਦ, ਹਰ ਗੋਵਿੰਦ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ, ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਪ੍ਰਭੋ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰ ਬੋਲ, ਹਰ ਪੁਰਖ ਅਬਨਾਸੀ ਰਹਾਉ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਹਰ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਹਰ, ਹਰੇ ਸੋ ਪੀਵੈ ਜਿਸ ਰਾਮ ਪਿਆਸੀ। ਹਰ ਆਪ ਦਇਆਲ, ਦਇਆ ਕਰ ਮਿਲੈ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸੋ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਚਖਾਸੀ। ਜੋ ਜਨ ਸੇਵੈ ਸਦ ਸਦਾ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰੇ, ਤਿਨਕਾ ਸਭ ਦੁਖ ਭਰਮ ਪਉ ਜਾਸੀ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲਏ ਤਾਂ ਜੀਵੈ, ਜਿਉ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਜਲ ਪੀਐ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸੀ। ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਜਪ ਮਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ, ਰਾਮ ਰਮਤ ਰਾਮ, ਸਤ ਸਤ ਰਾਮ, ਬੋਲੋ ਪਈਆ ਸਦ ਰਾਮ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਵ ਰਹਿਆ ਸਰਬੱਗੇ ਰਹਾਉ। ਰਾਮ ਆਪੇ ਆਪ, ਆਪੇ ਸਭ ਕਰਤਾ, ਰਾਮ ਆਪੇ ਆਪ, ਆਪ ਸਪਤ ਜੱਗੇ, ਜਿਸ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਏ, ਸੋ ਜਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਗੇ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਕੀ ਉਪਮਾ ਦੇਖੋ ਹਰ ਸੰਤੋ, ਜੋ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੀ ਪਤ ਰਾਖੈ ਵਿੱਚ ਕਲ ਯੁਗ ਅੱਗੇ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਾ ਅੰਗ ਕੀਆ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਏ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੁਖ ਗਏ ਸਭ ਭਗੇ। ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਚੌਪਦੇ ਕਰ ਪਹਿਲਾ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੂਰਤ ਕਹੋ ਬਲ ਜਾਓ, ਅੰਤਰ ਪਿਆਸ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਜਿਉਂ ਜਲ ਕੀ, ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਦ ਪਾਉ ਰਹਾਉ। ਅਨਾਥਾ ਕੋ ਨਾਥ, ਸਰਬ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ, ਭਗਤ ਵਛਲ ਹਰ ਨਾਉ। ਜਾਂ ਕਹੋ ਕੋਈ ਨਾ ਰੱਖੈ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਤਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹ ਅਸਰਾਉ। ਨਿਧਰਿਆ ਧਰ, ਨਿਗਤਿਆ ਗਤ, ਨਿਥਾਵਿਆ ਤੂੰ ਥਾਉ। ਦਹਿ ਦਿਸ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੰਗੇ, ਤੇਰੀ ਕੀਰਤ ਕਰਮ ਕਮਾਓ। ਏਕ ਸਤੇ ਲਾਖ ਲਾਖ ਤੇ ਕਾ, ਤੇਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਾਓ। ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ, ਤੇਰੀ ਮਿਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈਐ, ਸਭ ਤੇਰੋ ਖੇਲ ਦਿਖਾਓ। ਸਾਧਨ ਕਾ ਸੰਗ, ਸਾਧ ਸਿਉਂ ਗੋਸ਼ਟ, ਹਰ ਸਾਧਨ ਸਿਉਂ ਲਿਵਲਾਓ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰਮਤ, ਹਰ ਦੇਹੋ ਦਰਸ ਮਨ ਚਾਓ। ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਹਰ ਜੀਉ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਜਾਨ, ਕਰਤ ਬੁਰਾਈ ਮਾਨਖ ਤੇ ਛਪਾਈ, ਸਾਖੀ ਭੂਤ ਭਵਾਨ ਰਹਾਓ। ਬੈਸਨੋ ਨਾਮ ਕਰਤ ਖਟਕਰਮਾ, ਅੰਤਰ ਲੋਭ ਜੂਠਾਨ, ਸੰਤ ਸਭਾ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਤੇ ਡੂਬੇ ਸਭ ਅਗਿਆਨ। ਕਰਹਿ ਸੋਮ ਪਾਕ ਹਿਰੈ ਪਰ ਦਰਬਾ, ਅੰਤਰ ਝੂਠ ਗੁਮਾਨ, ਸਾਸਤ੍ਰ ਵੇਦ ਕੀ ਬਿਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣੈ, ਵਿਆਪੇ ਮਨ ਕੈ ਮਾਨ। ਸੰਧਿਆ ਕਾਲ ਕਰੈ ਸਭ ਵਰਤਾ, ਜਿਉਂ ਸਫਰੀ ਦਮਫਾਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਭੁਲਾਏ ਉੱਜੜ ਪਾਏ, ਨਿਹਫਲ ਸਭ ਕਰਮਾਨ। ਸੋ ਗਿਆਨੀ ਸੋ ਬੈਸਨੋ ਪੜਿਆ, ਜਿਸ ਕਰੀ ਕਿਰਪਾ ਭਗਵਾਨ, ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਪਰਮ ਪਤ ਪਾਇਆ, ਉਧਰਿਆ ਸਗਲ ਵਿਸਵਾਨ। ਕਿਆ ਹਮ ਕਥੈ ਕਿਛ ਕਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣੈ, ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਵੈ ਬੁਲਾਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੀ ਧੂਰ ਇਕ ਮੰਗੋ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਪਇਓ ਸਰਾਨ। ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਅਬ ਮੋਰੋ ਨੱਚਨੋ ਰਹੋ, ਲਾਲ ਰੰਗੀਲਾ ਸਹਿਜੇ ਪਾਇਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਲਹੋ ਰਹਾਉ। ਕੁਵਾਰ ਕੰਨਿਆ ਜੈਸੇ ਸੰਗ ਸਹੇਰੀ, ਪ੍ਰਿਆ ਬਚਨ ਉਪਹਾਸ ਕਹੋ। ਜੋ ਸੁਰਜਨ ਗ੍ਰਹਿ ਭੀਤਰ ਆਇਓ, ਤਬ ਮੁਖ ਕਾਜ ਲੱਜੋ। ਜਿਉਂ ਕੰਨ ਕੋ ਕੋਠਾਰੀ ਚੜਿਓ, ਕਬਰੋ ਹੋਤ ਫਿਰੋ,
जब ते सुध भय है बारह तब ते थान थिरो। जो दिन रहन तऊ लो बजियो मूर्त करी पलो बजामन हारो ऊट सुधारियो तब फिर बाज ना पयो। जैसे कुंभ उदक पूर आन्यो तब ओ भिन्न दृष्टो कहो नानक कुंभ जलै मैं डारियो अंबे अंब मिलो सारंग महला पंजवा। अब पूछे क्या कहा लैनो नाम अमृत रस नीको बावर बिकस्यों गए रहा रहाओ। दुलभ जन्म चिरंकाल पायो जा तो कौडी बदलहा बदलहा काथूरी को गाह के आयो लाद्यो कालर बिरख जिवहा। आयो लाभ लाभन कै ताई मोहन ठा गौरी से उलझ पहा। काज बादर लाल खोई है फिर ओह अवसर कद लहा। सगर प्राद एक गुण नाही ठाकर छोड़े दास भजहा। आई मस्त जड़वत की न्याई ज्यो तस्कर दर्शान हा। आन्यो पावना को सूजै हर दासा सरनी पर रहा। कहो नानक तब ही मन छुटी है जो सगले अवगन मेट तारहा। सारंग महला पंजवा। माई तीर रही प्रे बहुत बैराग्यो अनक पहात अनूप रंग रे तिन स्यो रुचे ना लाग्यो रहाओ। निसबासर प्रे प्रे मुखटे रहो नींद पलक नहीं जाग्यो। हार कजर बस्तर अनक सिंगार रे बिन पिर सब बिख लाग्यो। पूछो पूछो दीन पांत करो को कह प्रे दे सांगयो। हियो देओ सब मन तन अर्पो शीस चरण पर राख्यो। चरण बंदना मोल दासरो देओ सा संगत अरदाग्यो। करहो कृपा मोहे प्रभु मिलावो निमख दर्श पे खाग्यो। दृष्ट भई तब पीतर आयो मेरा मन अंदर सीत लाग्यो। कहो नानक रस मंगल गाए शब्दा नाहद बाज्यो। सारंग महला पंजवा। माई सत सत सत हर सत सत सत साधा बचन गुरु जो पूरा कहो मैं शीख गांठरी बांधा रहाओ। निसबासर नखियत्र बिनासी रव ससियर बेनादा गिर बसदा जल पवन जाएगो एक साध बचन अटलादा। अंड बिनासी जेर बिनासी उत पोज सेत बिनादा चार बिनासी खटै बिनासी एक साध बचन नहीं चलादा। राज बिनासी ताम बिनासी साधक पीबे नादा दृष्टमान है सगल बिनासी एक साध बचन आगादा। आपे आप आप ही आपे सब आपन खेल दिखादा पायो ना जाई कहीं पांत रे प्रभ नानक गुरमिल लादा। सारंग महला पंजवा। मेरा मन बासबो गुर गोबिंद जहां सिमरन पायो है ठाकर तहां नगर सुख आनंद रहाओ। जहां बिसरे ठाकर प्यारो तहां दुख सब आपद जह गुण गाए आनंद मंगल रूप तहां सदा सुख संपद। जहां श्रवण हर कथा ना सुनिए तै महाभयान उद्यानद। जहां कीर्तन साध संगत रस तह सगन बास फलानद। बिन सिमरन कोट बरख जीवै सगली औद बिरथानद। एक निमख गोबिंद भजन कर तौ सदा सदा जीवानद। सरन सरन सरन प्रभ पावो दीजै साध संगत कृपानद। नानक पूर रहो है सर्व मैं सगल गुणा बिद जानद। सारंग महला पंजवा। अब मोहे राम परोसो पाए जो जो सरन परयो करना ने दो ते ते पवैतर आए रहाओ। सुख सोयो और सह समायो सहसा गुरै गवाए जो चाहत सोई हर कियो मन बांशत फल पाए। हृदय जपो नेत्र ध्यान लावाओ श्रवणी कथा सुनाए चरणी चलो मार्ग ठाकर कै रसना हर गुण गाए। देखियो दृष्ट सर्व मंगल रूप उल्टी संत कराए पायो लाल अमोल नाम हर छोड़ न कथू जाए। कवन उपमा कौन वडाई क्या गुण कहो री जाए। होत कृपाल दीन दया प्रभ जन नानक दास दसाए। सारंग महला पंजवा।
ओए सुख कास्यों वर्ण सुनावत अंध बिनोद पेख प्रभ दर्शन मन मंगल गुण गावत रहाओ विषम पई पेख विषमादी पूर रहे कृपावत पियो अमृत नाम अमोलक ज्यो चाख गुंगा मुस्कावत जैसे पवन बंद कर राखियो बूझ ना आवत जावत जाको हृदय प्रगास पयो हर उवां की कही ना जाए कहावत आन्यो पाव जेते किश कहिए तेते सीखे पावत अचिंत लाल ग्रह पीतर प्रगटयो अगम जैसे परखावत निर्गुण निरंकार अवनाशी तुल्लो तुल्यो ना जावत कहो नानक अजर जिन जरिया तिस ही कहो बनयावत सारंग महला पंजवा बिखई दिन रहन इवही गुदारै गोविंद ना भजै अहं बुद्ध माता जन्म जुवै ज्यो हारै रहाओ नाम अमोला प्रीत ना तिस्यो पर निंदा हितकारै छापर बांध सवारै तरण को द्वारै पावक जारै कालर पोट उठावै मुंडै अमृत मंते डारै ओडै बस्त्र काजर मैं परया बहुर बहुर फिर चारै काटै पेड़ डाल पर ठंडो खाए खाए मुस्कारै गिरो जायर सातल परयो छिटी छिटी सिर पारै निर्वैरै संग वैर रचाए पहुंच न सकै गवारै कहो नानक संतन का राखा पार ब्रह्म निरंकार है सारंग महला पंजवा अवर सब भूले भ्रमत ना जानिया एक सुधाखर जाकै हृदय वसिया तिन बेदै तत् पछानिया रहाओ परविरत मार्ग जेता किश होई है तेता लोग पिचारा जौ लो हृदय नहीं प्रगासा तौ लो वंद अंधारा जैसे धरती साध है बहु बिद बिन बीजै नहीं जामै राम नाम बिन मुक्त ना हुई है तुटै नाही अभिमानै नीर बिलोवै अत श्रम पावै नैनू कैसे रीसै बिन गुर भेटे मुक्त ना काहू मिलत नहीं जगदीसै खोजत खोजत है बिचार्यो सर्व सुखा हर नामा कहो नानक तिस भयो प्राप्त जाकै लेख मथामा सारंग महला पंजवा अन दिन राम के गुण कहिए सगल पदार्थ सर्व सुख सिद्ध मन बांशत फल लहिए रहाओ आवो संत प्राण सुखदाते सिमरै प्रभु अविनाशी अनाथ नाथ दीन दुख पंजन पूर रहो कटवासी गावत सुनत सुनावत सरदा हर रस पी वड भागे कल कलेस मिटे सब तंते राम नाम लिव जागे काम क्रोध झूठ तज निंदा हर सिमरन बंधन टूटे मोह मगन अहं अंध ममता गुर कृपा ते छूटे तू समरथ पार ब्रह्म स्वामी कर कृपा जन तेरा पूर रहो सर्व मैं ठाकर नानक सो प्रभ नेरा सारंग महला पंजवा बलिहारी गुरदेव चरण जाकै संग पार ब्रह्म तिहाई है उपदेश हमारी गत करन रहाओ दुख रोग पै सगल बिनासे जो आवै हर संत सरण आप जपै अवरै नाम जपावै वड समरथ तारण तरण जां को मंत्र उतारै सहसा ऊने को सुभर भरन हर दासन की आग्या मानत ते नाही फुन गर्भ परन भगतन की टहल कमावत गावत दुख काटे ताके जन्म वरन जां को पयो कृपाल बीठला तिन हर हर अजर जरन हर सह गाने सह समाने मुक्ते नाही जात बरन गुर प्रसाद नानक संतोखे नाम प्रभु जप जप उदरन सारंग महला पंजवा गायो री मैं गुणित मंगल गायो भले संजोग भले दिन अवसर जौ गोपाल रिजायो रहाओ संते चरण मोर लो माथा हमरे मस्तक संत तरे हाथा साधे मंत्र मोर लो मनुआ तांते गत होए त्रै गुनिया भगतै दर्श देख नैन रंगा लोभ मोह टूटे भ्रम संगा कहो नानक सुख सहज आनंदा खोल पीत मिले परमानंदा सारंग महला पंजवा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कैसे कहो मोहे जी बेदनाई दर्शन प्यास प्रे प्रीत मनोहर मन ना रह बहुबिद उमकाई रहाओ
चितवन चितवो प्रेपीत बैरागी कद पावो हर दरसाई जतन करो एह मन नहीं तीरे को हैरे संत मिलाई जप तप संजम पुन सब अ होमो ते सरपो सब सुख जाई एक निमख प्रे दर्श दिखावै ते संतन कै बल जाई करो निहोरा बहुत बेनती से बोधन रहनाई मान अवमान हो सगल त्यागो जो प्रे बात सुनाई देख चरित्र पई हो बिस्मन गुर सदगुर पुरख मिलाई प्रभ रंग दयाल मोहे ग्रह मैं पाया जन नानक तप्त बुझाई सारंग महला पंजवा रे मूड़े तू क्यों सिमरत अब नाही नरक कोर मैं उर्द तप करता निमख निमख गुण गाही रहाओ अनक जन्म प्रम तो ही आयो मानस जन्म दुलबाही गर्भ जोन छोड़ जो निकस्यो तो लागो अंठाही करे बुराई ठगाई दिन रहन नेफल कर्म कमाही कण नाही तो गाहन लागे ताए ताए दुख पाही मिथ्या संग कूड़ लपटायो उर्ज प्रयो कुछ माही धर्म राय जब पगरस बवरे तो काल मुखा उठ जाही सो मिलिया जो प्रभु मिलाया जिस मस्तक लेख लिखाही कहो नानक तिस कहो नानक तिन जन बलिहारी जो अलिप रहे मन माही सारंग महला पंजवा क्यों जीवन प्रीतम बिन माई जाके बिशरत होत मृतकता अग्रे मैं रहन न पाई रहाओ जी ही प्राण को दाता जाके संग सुहाई करो कृपा संतो मोहे अपनी प्रभ मंगल गुण गाई चरण संतन के माथे मेरे ऊपर नैनो धूर बशाई जेह प्रसाद मिली है प्रभ नानक बल बलता कह हो जाई सारंग महला पंजवा वाह उसर कह हो बल जाई आठ पहर अपना प्रभ सिमरन वडभागी हर पाई रहाओ भलो कबीर दास दासन को ऊतम सैन जन नाई ऊच ते ऊच नाम देव समदर्शी रविदास ठाकर बने आई जियो पिंड तन तन साधन का एहो मन संत रे नाई संत प्रताप परम सब नासे नानक मिले गुसाई सारंग महला पंजवा मनोरथ पूरे सतगुरे आप सगल पदार्थ सिमरन जाकै आठ पहर मेरे मन जाप रहाओ अमृत नाम स्वामी तेरा जो पीवै तिस ही तृप्तास जन्म जन्म के किल बिख नासै आगै दरगै होए खलास शरण तुम्हारी आयो करते पार ब्रह्म पूर्ण अविनास कर कृपा तेरे चरण ते आवो नानक मन तन दर्श प्यास सारंग महला पंजवा करती जाए को ओंकार सतगुर प्रसाद मन कहां लुभाई है आन कहो ईत यूत प्रभ सादा सहाई जी संग तेरे काम कहो रहाओ अमृत नाम प्रे प्रीत मनोहर एह गावन पान कहो अकाल मूर्त है साध संतन की ठाहर निकी ध्यान कहो बाणी मंत्र महापुरखन की मने उतारन मान कहो खोज लहो नानक सुख थाना हर नामा विश्राम कहो सारंग महला पंजवा मन सदा मंगल गोबिंद गाए रोग सोग तेरे मिटै सगल अग निमख ही है हर नाम ते आए रहाओ छोड़ सियाणप बहु चतराई साधु सरनी जाए पाए जो होए कृपाल दीन दुख पंजन जब ते होवै धर्म राय एक बिन नाही को दूजा अन्न बियो लवै लाए मात पिता भाई नानक को सुखदाता हर प्राण साए सारंग महला पंजवा हर जन सगलो धारे संग के पहे पुनीत पवित्र मन जन्म जन्म के दुख हरे रहाओ मार्ग चले इतनी सुख पाया जिन स्यों गोष्ट से तरे बूढ़त कोर अंध कूप मैं ते साधु संग पार परे जिनके भाग बड़े है पाई तिन साधु संग मुख जुरे तिन की तूर बांछै नित नानक प्रभ मेरा कृपा करे सारंग महला पंजवा हर जन राम राम राम त्याए एक पलक सुख साथ समागम कोठ बैकुंठे पाए रहाओ दुलब देह जप होत पुनीता जम की त्रास निवारै महापतत के पात के उतरै हर नामा और तारै जो जो सुनै राम जस निर्मल ताका जन्म मरण दुख नासा
ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪਾਈਐ ਵਡਭਾਗੀ ਮੰਤਨ ਹੋਏ ਬਿਗਾਸ।

फूल रही बिखिया बिख गुरमंत्र मूख गरडारी हाथ दे राख्यो करे अपना ज्यो जल कमला अलपारी हाओ नाही किश मैं क्या होसा सब तुम ही कल तारी नानक भाग परयो हर पाछ राग संत सदकारी सारंग महला पंजवा अब मोहे सर्वो पाप ब्रकाते करण कारण सम्राट स्वामी हर एक स्ते मेरी गाते रहाओ देखे नाना रूप बहु रंगा अन्ना ही तुम पांते देह आधार सर्व को ठाकरो जी प्राण सुखदाते प्रमतो प्रमतो हार जाओ परयाओ तौ गुर मिलो चरण पराते कहो नानक मैं सर्व सुख पाया ए सुख बेहानी राते सारंग महला पंजवा आप मोहे लभ दियो है हर टेका गुर दयाल पहे सुखदाई अंदलै मानक देखा रहाओ काटे अज्ञान तिमर निर्मलिया बुद्ध विगास विवेका ज्यो जल तरंग फेन जल होई है सेवक ठाकर पय एका जह ते उठ्यो तह ही आयो सब ही एक है एका नानक दृष्ट आयो सब उठाई प्राण पति हर सम का सारंग महला पंजवा मेरा मन एक है ही प्रेमांग पेख आयो सर्व थान देश प्रेरोमना समसर लागे रहाओ मैं नीरे अनक भोजन बहु बिंजन तिन स्यो दृष्ट न करै रिचांग हर रस चाहै प्रे प्रे मुख टेरै ज्यो अल कमला लोभांग गुण निदान मन मोहन लालन सुखदाई सर्वांग गुरु नानक प्रभु पाहे पठायो मिलो सखा गल लागै सारंग महला पंजवा अब मोरो ठाकर स्यो मन माना साध कृपाल दयाल पय है एहो छेदियो दुष्ट बेगाना रहाओ तुम ही सुंदर तुम्हें सियाने तुम ही सुगर सुजाना सगल योग यार ज्ञान ध्यान एक निमख ना कीमत जाना तुम ही नायक तुम्हें छत्रपत तुम पूर रहे भगवाना पावो दान संत सेवा हर नानक सद कुरबाना सारंग महला पंजवा मेरे मन चीत आए प्रेरंगा बिसरियो तंद बंद माया को रजन सबाई जंगा रहाओ हर सेवाओ हर दै बसावो हर पाया सतसंगा ऐसो मिलियो मनोहर प्रीतम सुख पाए मुख मंगा प्रयो अपना गुर बस कर दीना भोगो भोग निसंगा निरपो पहे नानक पौ मिटिया हर पायो पाठंगा सारंग महला पंजवा हर जियो के दर्शन को कुर्बानी बचन नाद मेरे श्रवनो पूरे देहा प्रयंक समानी रहाओ शूटर ते गुर की सुहागन हर पायो सुड सुजानी जे घर में बैसन नहीं पावत सो थान मिलियो बासानी उनके बस आयो भगत वच्छल जिन राखी आन संतानी कहो नानक हर संग मन मानिया सब चुकी कान लुकानी सारंग महला पंजवा अब मेरो पंचा ते संग टूटा दर्शन देख पए मन आनंद गुर कृपा ते छूटा रहाओ बिखम थान बहुत बहुत तरिया अनकराग सूरूटा बिखम गार कर पहुंचे नाही संत सांथ पै लूटा बहुत खजाना मेरे पाले परया अमोल लालिया खूटा जन नानक प्रभ कृपा तारी तो मन में हर रस कूटा सारंग महला पंजवा अब मेरो ठाकर स्यो मन लीना प्राण दान गुर पूरे दिया उर जायो जो जल मीना रहाओ काम क्रोध लोभ मद मत्सर एह अर्प सगल दान कीना मंत्र दृढ़ाए हर औखद गुर दियो तो मिलियो सगल परवीना गृहो तेरा तू ठाकर मेरा गुर हो खोई प्रभ दीना कहो नानक मैं सहज कर पाया हर भगत भंडार खजीना सारंग महला पंजवा मोहन सब जी तेरे

छुटै संघारो निमख कृपा ते कोट ब्रह्मांड उधारै रहाओ। करै अरदास बहुत बेनंती निमख निमख सा मारै, हो कृपाल दीन दुख पंजनो हाथ दे निस्तारै। क्या ए भूपत बपरे कहियै कहो ए किसनो मारै, राख राख राख सुख दाते सब नानक जग तो मारै। सारंग महला पंजवां अब मोहे तन पायो हर नामा, भया चिंत तृष्ण सबु जी है एह लिखियो लेख मथामा रहाओ। खोजत खोजत भयो बैरागी फिर आयो देह गिरामा, गुर कृपालो सौदा एहो जोरियो हाथ चरियो ला लिया गामा। आन वापार बनज जो करिय ते ते दुख सहामा, गोविंद भजन के निरपै वापारी हर रास नानक राम नामा। सारंग महला पंजवा मेरा मन मिष्ट लगे प्रे बोला, गुरबाह पकड़ प्रभ सेवा लाए सद दयाल हर टोला रहाओ। प्रभ तू ठाकर सर्व प्रतपालक मोह कलत्र सहित सब गोला, मान तान सब तू है एक नाम तेरा मैं ओला। जे तख्त बैसालै तो दास तुम्हारे घास बढ़ावै केतक बोला, जन नानके प्रभ पुरख बिधाते मेरे ठाकर अगहया तोला। सारंग महला पंजवा रसना राम कहत गुण सोहंग, एक निमख उपाय समावै देख चरत मन मोहंग रहाओ। जिस सुनिया मन होए रहस अत हृदय मान दुख जो हंग, सुख पायो दुख दूर पर आयो बनयाई प्रभ तो हंग। किले विख गए मन निर्मल होई है गुर काढे माया द्रोहंग, कहो नानक मैं सो प्रभ पाया करण कारण समर्थ होहंग। सारंग महला पंजवा नैनो देखो चलत तमाशा, सबहू दूर सबहू तेने रह आगम यगम घट वासा रहाओ। अपूल ना पूलै लिखियो ना चलावै मता ना करै पचासा, खिन मैं साज सवार बिना है भगत वछल गुणतासा। अंधकू मैं दीपक बलियो गुरदय कियो परगासा, कहो नानक दर्श पेक सुख पाया सब पूर्ण होई आसा। सारंग महला पंजवा चरण गोविंद मार्ग सुहावा, आन मार्ग जेता किश ताइयै ते तो ही दुखावा रहाओ। नेत्र पुनीत पय दर्श पेखे हस्त पुनीत टहलावा, हृदय पुनीत हृदय हर बसियो मस्त पुनीत संत तूरावा। सर्व निदान नाम हर हर कै जिस कर्म लिखिया तिन पावा, जन नानक कौ गुरपूरा भेटियो सुख सहजे आनंद बिहावा। सारंग महला पंजवा त्यायो अंत बार नाम सखा, जय मात पिता सुत भाई ना पहुंचै तहां तहां तू रखा रहाओ। अंधकूप ग्रे मैं तिन सिमरियो जिस मस्तक लेख लिखा, खूले बंधन मुक्त गुर कीनी सब तू है तू ही दिखा। अमृत नाम पिया मंत्र बतिया आगाए रसन चखा, कहो नानक सुख सहज मैं पाया गुरलाही सगल तिखा। सारंग महला पंजवा गुर मिले ऐसे प्रभु ते आया, पयो कृपालो दयाल दुख पंजन लगे ना ताती बाया रहाओ। जेते सास सास हम लेते तेते ही गुण गाया, निमख ना बिसरै करी ना बिसरै सद संगे जत जाया। हाँ बल बल बल बल चरण कमल कहो बल बल गुर दरसाया, कहो नानक काहू प्रवाह जब सुख सागर मैं पाया। सारंग महला पंजवा मेरा मन शब्द लगो गुर मीठा, खुल्यो कर्म पयो परगासा घट घट हर हर डीठा। रहाओ पार ब्रह्मया योनी संपो सर्वथान कट बीठा, पयो प्राप्त अमृत नामा बल बल प्रभ चरणीठा। सत संगत की रेण मुख लागी किए सगल तीर्थ मजनीठा, कहो नानक रंग चलूल पय है
ਹਰ ਰੰਗ ਨਾ ਲਹਿ ਮਜੀਠਾ ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਓ ਗੁਰਸਾਥੇ ਨਿਮਖ ਬਚਨ ਪ੍ਰਭ ਹੀਰੇ ਬਸਿਓ ਸਗਲ ਭੂਖ ਮੇਰੀ ਲਾਥੇ ਰਹਾਓ। ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਗੁਣ ਨਾਇਕ ਠਾਕਰ ਸੁਖ ਸਮੂਹ ਸਭ ਨਾਥੇ ਏਕ ਆਸ ਮੋਹਿ ਤੇਰੀ ਸੁਆਮੀ ਔਰ ਦੁਤੀਆ ਆਸ ਬਿਰਾਥੇ। ਨੈਣ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸੇ ਦੇਖ ਦਰਸਾਵਾਂ ਗੁਰ ਕਰ ਧਾਰੇ ਮੇਰੇ ਮਾਥੇ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਮੈਂ ਤੁਲ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਜਨ ਮਰਨ ਪੈ ਲਾਥੇ ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਹਰੇ ਮੂੜੇ ਆਨ ਕਾਹੇ ਕਤ ਜਾਹੀ ਸੰਗ ਮਨੋਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਰੇ ਪੂਲ ਪੂਲ ਬਿਖ ਖਾਈ ਰਹਾਓ। ਪ੍ਰਭ ਸੁੰਦਰ ਚਤਰ ਅਨੂਪ ਵਿਧਾਤੇ ਤਿਸ ਸਿਉਂ ਰੁਚ ਨਹੀਂ ਰਾਈ ਮੋਹਨ ਸਿਉਂ ਬਾਵਰ ਮਨ ਮੋਹਿਓ ਝੂਠ ਗੌਰੀ ਪਾਈ। ਭਇਓ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾਲ ਦੁਖ ਹਰਤਾ ਸੰਤਨ ਸਿਉ ਬਨ ਆਈ ਸਗਲ ਨਿਧਾਨ ਘਰੇ ਮੈਂ ਪਾਏ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜੋ ਸਮਾਈ ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਓਵੰ ਪ੍ਰੇ ਪ੍ਰੀਤ ਚੀਤ ਪਹਿਲਰੀਆ ਜੋ ਤੋ ਬਚਨ ਦਿਓ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋ ਮੈਂ ਸਾਜ ਸਿੰਗਰੀਆ ਰਹਾਓ। ਹਮ ਭੂਲੇ ਤੁਮ ਸਦਾ ਅਪੂਲਾ ਹਮ ਪਤਤ ਤੁਮ ਪਤਤ ਧਰੀਆ ਹਮ ਨੀਚ ਬਿਰਖ ਤੁਮ ਮੈਂ ਲਾਗਰ ਲਾਜ ਸੰਗ ਸੰਗ ਬਸਰੀਆ। ਤੁਮ ਗੰਭੀਰ ਧੀਰ ਉਪਕਾਰੀ ਹਮ ਕਿਆ ਬਪਰੇ ਜੰਤਰੀਆ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾਲ ਨਾਨਕ ਹਰ ਮੇਲਿਓ ਤੋ ਮੇਰੀ ਸੁਖ ਸੇਜਰੀਆ। ਸਾਰਿੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਮਨ ਓਏ ਦਿਨਸ ਧਨ ਪਰਵਾਨਾ ਸਫਲ ਤੇ ਕਰੀ ਸੰਜੋਗ ਸੁਹਾਵੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਗਿਆਨਾ ਰਹਾਓ। ਧਨ ਸੋ ਭਾਗ ਧਨ ਸੁਹਾਗਾ ਧਨ ਦੇਤ ਜਿਨ ਮਾਨਾ ਇਹੋ ਤਨ ਤੁਮਰਾ ਸਭ ਗ੍ਰਿਹੋ ਤਨ ਤੁਮਰਾ ਹਿਉ ਕਿਉ ਕੁਰਬਾਨਾ। ਕੋਟ ਲਾਖ ਰਾਜ ਸੁਖ ਪਾਏ ਇਕ ਨਿਮਖ ਪੇਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨਾ ਜੋ ਕਹੋ ਮੁਖ ਹੋ ਸੇਵਕ ਇਹ ਬੈਸੀਐ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਨਾ। ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਅਬ ਮੋਰੋ ਸਹਿਸਾ ਦੂਹ ਗਇਆ ਔਰਿਓ ਭਾਵ ਸਗਲ ਤਿਆਗ ਛੋਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਨ ਪਿਆ ਰਹਾਓ। ਸਰਬ ਸਿੱਧ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਰੇ ਅਹੰਗ ਰੋਗ ਸਗਲ ਹੀ ਖਇਆ ਕੋਟ ਪ੍ਰਾਧ ਖਿਨ ਮੈਂ ਖਉ ਪਈ ਹੈ ਗੁਰਮਿਲ ਹਰ ਹਰ ਕਹਿਆ। ਪੰਚ ਦਾਸ ਗੁਰ ਵਸਗਤ ਕੀਨੇ ਮਨ ਨਿਚਲ ਨਿਰਭਇਆ ਆਏ ਨਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਥੀ ਡੋਲੇ ਥਿਰ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਆਇਆ। ਸਾਰਿੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੋ ਇਤ ਉਤ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਮਨ ਮੋਹਨ ਮੇਰੇ ਜੀ ਕੋ ਪਿਆਰੋ ਕਵਨ ਕਹਾਂ ਗੁਣ ਗਾਈ। ਹਰਹਾਓ ਖੇਲ ਖਿਲਾਏ ਲਾਡ ਲਾਡਾਵੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਅਨਦਾਈ ਪ੍ਰਤਪਾਲੇ ਬਾਰਕੀ ਨਿਆਈ ਜੈਸੇ ਮਤ ਪਿਤਾਈ ਤਿਸ ਬਿਨ ਨਿਮਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੀ ਐ ਬਿਸਰ ਨਾ ਕਬ ਹੂੰ ਜਾਈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਮਿਲ ਸੰਤ ਸੰਗਤ ਤੇ ਮਗਨ ਭਏ ਲਿਵਲਾਈ। ਸਾਰਿੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਆਪਣਾ ਮੀਤ ਸਵਾਮੀ ਗਾਈਐ ਆਸਨਾ ਅਵਰ ਕਾਹੂ ਕੀ ਕੀਜੈ ਸੁਖਦਾਤਾ ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਈਐ ਰਹਾਓ। ਸੁਖ ਮੰਗਲ ਕਲਿਆਣ ਜਿਸੈ ਘਰ ਤਿਸ ਹੀ ਸਰਣੀ ਪਾਈਐ ਤਿਸੈ ਤਿਆਗ ਮਾਨੁਖ ਜੇ ਸੋਇ ਵਉ ਤਿਸੈ ਤਿਆਗ ਮਾਨੁਖ ਜੇ ਸੇਵਉ ਤਉ ਲਾਜ ਲੋਨ ਹੋਏ ਜਾਈਐ। ਏਕ ਓਟ ਪਕਰੀ ਠਾਕਰ ਕੀ ਗੁਰਮਿਲ ਮਤ ਬੁੱਧ ਪਾਈਐ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਿਆ ਸਗਲ ਚੁੱਕੀ ਮੋਹਤਾਈਐ। ਸਾਰਿੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਓਟ ਸਤਾਣੀ ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਮੇਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾ ਲਿਆਵੋ ਅਵਰ ਕਾਹੂ ਕਹੋ ਮਾਣ ਮਹੱਤ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰਾ ਰਹਾਓ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਕੀਓ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਕਾਲ ਲਿਆ ਬੇਘੇਰੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਔਖਦ ਮੁਖ ਦੀਨੋ ਜਾਏ ਪਿਆ ਗੁਰ ਪੈਰੈ। ਕਵਨ ਉਪਮਾ ਕਹੋ ਏਕ ਮੁਖ ਨਿਰਗੁਣ ਕੇ ਦਾ ਤੇਰੈ ਕਾਟ ਸਿਲਕ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕੀਨੋ ਨਾਨਕ ਸੂਖ ਘਨੇਰੈ। ਸਾਰਿੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਤ ਦੁਖ ਬਿਨਾਸੀ ਭਇਓ ਕਿਰਪਾਲ ਜੀ ਸੁਖਦਾਤਾ ਹੋਈ ਸਗਲ ਖਲਾਸੀ ਰਹਾਓ। ਅਵਰ ਨਾ ਕੋ ਸੂਜੈ ਪ੍ਰਭ ਬਿਨ ਕਹੋ ਕੋ ਕਿਸ ਪੈ ਜਾਸੀ ਜਿਉ ਜਾਣੋ ਤਿਉ ਰਾਖੋ ਠਾਕਰੋ ਸਭ ਕੀ ਤੁਮ ਹੀ ਪਾਸੀ। ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਸਦ ਜੀਵਨ ਅਬਨਾਸੀ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਮਨ ਅਨੰਦ ਭਇਆ ਹੈ ਕਾਟੀ ਜਮਕੀ ਫਾਸੀ। ਸਾਰਿੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ।
मेरो मन जत कत तुझे सुमारे, हम बारक दीन पिता प्रम मेरे ज्यो जान त्यों पारे। रहाओ जब भूखो तब भोजन मांगे, अगाए सुख सगारे तब अरोग, जब तुम संग बसतो छुटकत होए रवारे। कवन बसेरो दास दासन को थापो था पनहारे, नाम न बिसरता जीवन पाईए बिनती नानके सारे। सारंग महला पंजवा। मन ते भय पाओ दूर परायो, लाल दयाल गुलाल लाडले सह सहज गुण गायो। रहाओ गुरबचनात कमात कृपा ते, बहुर नकत हूं तायो। रहते उपाद समाज सुख आसन, भगत वच्छल ग्रह पायो। नाद बिनोद कोड़े आनंदा, सहजे सहज समायो। करना आप करावने आपे, कहो नानके आप पायो। सारंग महला पंजवा। अमृत नाम मनै आधारो, जिन दिया तस्कै कुरबाने, गुरपूरे नमस्कारो। रहाओ बूझी तृष्णा सह सुहेला, काम क्रोध बिखजारो। आए ना जाए बस ए ठाकर, जह आसन निरंकारो। एक है प्रगट एक है गुप्ता, एक है तुंदुकारो। आद मद अंत प्रभ सोई, कहो नानक साच विचारो। सारंग महला पंजवा। बिन प्रभ रहन ना जाए करी, सर्व सुख ताहू कै पूर्ण, जा कै सुख है हरी। रहाओ मंगल रूप प्राण जीवन तन, सिमरत आनंद घना, वड़ समर्थ सदा सद संगे, गुण रसना कवन पना। थान पवित्रा मान पवित्रा, पवित्र सुनन कहन हारे, कहो नानक ते भवन पवित्रा, जा मैं संत तुम्हारे। सारंग महला पंजवा। रसना जपती तू ही तू ही, मात गर्भ तुम ही प्रतपालक, मृत मंडल एक तू ही। रहाओ तुम है पिता तुम ही फुन माता, तुम है मीत हित प्राता, तुम परिवार तुम है आधारा, तुम है जी प्राण दाता, तुम्हें खजीना तुम्हें जरीना, तुम ही माणक लाला, तुम्हें पार जात गुरते पाए, तो नानक पहे निहाला। सारंग महला पंजवा। जाहू काहू अपनो ही चित जावे, जो काहू को चेरो होवत ठाकर ही पै जावे। रहाओ अपने पह दुख अपने पह सुखा, अपने ही पह बिरथा, अपने पह मान अपने पह ताना, अपने ही पह अर्था। किन ही राज जोबन तन मिलखा, किन ही बाप महतारी, सर्ब थोक नानक गुर पाए पूर्ण आस हमारी। सारंग महला पंजवा। झूठो माया को मदमान, त्रोह मोह दूर कर बपरे, संग पाले जान। रहाओ मिथ्या राजोबन अर उमरे, मीर मलक अर खान, मिथ्या कापर सुगंध चतराई, मिथ्या भोजन पान। दीन बंदरो दास दासरो, संतै की सारान, मंगर मंगो होय चिंता, मिल नानक के हर प्राण। सारंग महला पंजवा। अपनी इतनी कछु ना सारी, अनक काज अनक तावरता, उर्जो अन जंजारी। रहाओ देव सचार के दिसै, संगी उहां नाहीं जय पारी, तिन स्यों राच माच हित लायो, जो काम नहीं गावारी। हाँ नाहीं नाहीं किश मेरा, ना हमरो बस चारी, करन करावन नानक के प्रभ, संतन संग उधारी। सारंग महला पंजवा। मोहनी मोहत रह ना होरी, साधक सिद्ध सगल की प्यारी, तुटे ना काहू तोरी। रहाओ खड़ शास्त्र उचरत रसनागर, तीर्थ गमन ना थोरी, पूजा चक्र बर्त नेम तपिया, उहां गैल ना शोरी। अंध कू मह पतत होत जग, संतो करो परम गत मोरी, साध संगत नानक भयो मुक्ता, दर्शन पेखत पोरी। सारंग महला पंजवा। कहां करै रे खाट खाट ली, पवन अफार तोर चांबरो, अत जजरी तेरी रे माटली। रहाओ उही ते हरियो, उहां ले तरियो,
जैसे बासा मास देत चाटली, देवनहार बिसार्यो अंदले, ज्यो सफरी उदर भरै बै हाटली। साध बिकार बिकार झूठ रस, जै जानो तै भीर बाटली। कहो नानक समझ रे आने, आज काल खुलै तेरी गांठली। सारंग महला पंजवां, गुर जियो संग तुहारे जानेओ, कोट जोद ओआ की बात ना पुछिए, तां दरगह पी मान्यो रहाओ। कवन मूल प्राणी का कहिए, कवन रूप दृष्टान्यो, ज्योत प्रकाश पई माटी संग, दुलभ देह बखान्यो। तुम ते सेव तुम ते जपतापा, तुम ते तत पछान्यो, कर मस्तक तरकटी जेवरी, नानक दास दसान्यो। सारंग महला पंजवां, हर हर दियो सेव को नाम, मानसका को बपरो पाई, जा को राखा राम रहाओ। आप महाजन आपे पंचा, आप सेवक है काम, आपे सगले दूत बिदारे, ठाकरे अंतर जाम। आपे पत राखी सेवकी, आप कियो बंधान, या जुगा दो सेवकी राखे, नानक को प्रभ जान। सारंग महला पंजवां, तू मेरो मीत सखा हर प्राण, मन तन जियो पिंड सब तुमरा, एहो तन सीतो तुमरे तान रहाओ। तुम ही दिए अनक प्रकारा, तुम ही दिए मान, सदा सदा तुम ही पत राखो अंतर जामी जान। जिन संतन जानिया तू ठाकरो, ते आए प्रवान, जन का संग पाइय वडभागी, नानक संतन कै कुरबान। सारंग महला पंजवां, करो गत दयाल संतो मोरी, तुम समर्थ कारण करना, टूटी तुम ही जोरी रहाओ। जन्म जन्म के बखई तुम तारे, समत संग तुम्हारे पाई, अनक जोन भ्रमते प्रभ बिसरत, सास सास हर गाई। जो जो संग मिले साधु कह, ते ते पदत पुनीता, कहो नानक जाके वडभागा, तिन जन्म पदार्थ जीता। सारंग महला पंजवां, ठाकुर बिनती करन जन आयो, सर्व सुख आनंद सहज रस, सुन तुहारो नायो रहाओ। कृपा निधान सूख के सागर, जा सब मैं जा को छायो, संत संग रंग तुम किए, अपना आप दृष्टायो। नैनो संग संतन की सेवा, चरण चारी के सायो, आठ पहर दर्शन संतन का, सुख नान के हो पायो। सारंग महला पंजवां, जाकी राम नाम लिव लागी, सजन सुरदा सुहेला, सहजे सो कहिए वडभागी रहाओ। रहत बेकार अल्प माया, ते अहम बुद्ध बिख त्यागी, दर्श प्यास आस टेकै की, दर्श प्यास आस एक है की, टेक ही है प्रे पागी। अचिंत सोए जागन उठ बैसन, अचिंत हस्त बैरागी, कहो नानक जन जगत ठगाना, सो माया हर जन ठागी। सारंग महला पंजवां, आप जन ऊपर को ना पुकारे, पुकारन को जो उद्यम करता, गुर परमेश्वर ता को मारे रहाओ। निर्वैर संग वैर रिचावे, हर दरगे ओह हारे, आज जुगाद प्रभ की वड्याई, जन की पै सुवार। निरपव पय सगल पव मिटिया, चरण कमल आधार है, गुर के बचन जप्यो, नाव नानक प्रगट पयो संसार है। सारंग महला पंजवां, हर जन छोड़िया सगला आप, ज्यो जानो त्यो रखो गुसाई, पेख जीवा प्रताप रहाओ। गुर उपदेश साध की संगत, बिनस्यो सगल संताप, मित्र सत्र पेख समत बिचार्यो, सगल संपाखन जाप। तपत बुझी सीतलिया गाने, सुन अनहद बिसम भय बिस्माद, आनंद भया नानक मनसाचा, पूर्ण पूरे नाद। सारंग महला पंजवां, मेरा गुर मोरो से सा उतारिया, तिस गुर कै जाइए बले, तिस गुर कै जाइए बलिहारी, सदा सदा हो वारिया रहाओ। गुर का नाम जपियो दिन राती, गुर के चरण मन तारिया, गुर की तूर करो नित मज्जन, किलवख मैल उतारिया। गुर पूरे की करो नित सेवा, गुर अपना नमस्कारिया, सर्वफला दीने गुर पूरे, नानक गुर निस्तारिया।
ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਿਮਰਤ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਨਗਤ ਪਾਵੈ ਮਿਟੈ ਕਲੇਸ਼ ਤਰਾ ਸਭ ਨਾਸੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਿਤ ਲਾਵੈ ਰਹਾਉ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਆਰਾਧੇ ਰਸਨਾ ਹਰ ਜਸ ਗਾਵੈ ਤਜ ਅਭਿਮਾਨ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਿੰਦਾ ਬਾਸ ਦੇਵ ਰੰਗ ਲਾਵੈ ਦਾਮੋਦਰ ਦਯਾਲਾ ਰਾਧੋ ਗੋਬਿੰਦ ਕਰਤ ਸੁਹਾਵੈ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਕੀ ਹੋਏ ਰੇਨਾ ਹਰ ਹਰ ਦਰਸ ਸਮਾਵੈ ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਪੂਰੇ ਬਲਿਹਾਰੈ ਪ੍ਰਗਟ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕੀਓ ਨਾਮ ਕੋ ਰਾਖੇ ਰਖਨਹਾਰੈ ਰਹਾਓ ਨਿਰਭਉ ਕੀਏ ਸੇਵਕ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਸਗਲੇ ਦੁੱਖ ਵਿਦਾਰੈ ਆਨੋ ਪਾਵ ਤਿਆਗ ਜਨ ਸਗਲੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਰੇ ਧਾਰੈ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰ ਮੀਤ ਸਾਜਨ ਪ੍ਰਭ ਇਕ ਐ ਇਕ ਓਂਕਾਰੈ ਸਭ ਤੇ ਊਚੋ ਠਾਕਰ ਨਾਨਕ ਕਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਬਿਨ ਹਰ ਹੈ ਕੋ ਕਹਾਂ ਬਤਾਵੋ ਸੁਖ ਸਮੂਹ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਰਤਾ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭਸਦਾ ਧਿਆਵੋ ਰਹਾਓ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸੂਤ ਪਰੋਏ ਜਨਤਾ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਜਸ ਗਾਵੋ ਸਿਮਰ ਠਾਕਰ ਜਿਨ ਸਭ ਕਿਛ ਦੀਨਾ ਆਨ ਕਹਾਂ ਪੈ ਜਾਵੋ ਸਫਲ ਸੇਵਾ ਸਵਾਮੀ ਮੇਰੇ ਕੀ ਮਨ ਬਾਂਸ਼ਤ ਫਲ ਪਾਵੋ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਲਾਭ ਲਾਹਾ ਲੈ ਚੱਲੋ ਸੁਖ ਸੇਤੀ ਘਰ ਜਾਵੋ ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਸਰਨ ਆਈ ਆਇਆ ਉਤਰ ਗਯੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕਾ ਸੰਸਾ ਜਬ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਰਹਾਓ ਅਨਬੋਲਤ ਮੇਰੀ ਬਿਰਥਾ ਜਾਨੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ ਦੁਖ ਨਾਠੇ ਸੁਖ ਸਹਿ ਸਮਾਏ ਅਨੰਦ ਅਨੰਦ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਬਾਹਾਂ ਪਕਰ ਕੱਢ ਲੀਨੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਅੰਧ ਕੂਪ ਤੇ ਮਾਇਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ਬਿਸ਼ਰਤ ਆਨ ਮਿਲਾਇਆ ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਗਤ ਠੰਡੀ ਬੇਦ ਪ੍ਰਾਣ ਸਿਮਰਤ ਸਾਧੂ ਜਨ ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਕਾਂਡੀ ਰਹਾਓ ਸਿਵ ਬਿਰੰਚ ਅਰ ਇੰਦਰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਲ ਤੋਂ ਫਿਰਿਆ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਵਾਮੀ ਭੈ ਸੀਤਲ ਦੁਖ ਦਰਦ ਪ੍ਰਮ ਹਿਰਿਆ ਜੋ ਜੋ ਤਰਿਓ ਪੁਰਾਤਨ ਨਵ ਤਨ ਭਗਤ ਪਾਏ ਹਰ ਦੇਵਾ ਨਾਨਕੀ ਬੇਨੰਤੀ ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਮਿਲੈ ਸੰਤ ਜਨ ਸੇਵਾ ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜਿਹਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਣ ਹਰ ਗਾਓ ਹਰ ਹਰ ਬੋਲ ਕਥਾ ਸੁਨ ਹਰ ਕੀ ਉਚਰੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਨਾਉ ਰਹਾਓ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਤਨ ਧਨ ਸੰਚੋ ਮਨ ਤਨ ਲਾਵੋ ਭਾਓ ਆਨ ਵਿਭੂਤ ਮਿਥਿਆ ਕਰ ਮਾਨੋ ਸੱਚ ਹੈ ਸੁਭਾਓ ਜੀ ਪ੍ਰਾਨ ਮੁਕਤ ਕੋ ਦਾਤਾ ਇਕ ਸਿਉ ਲਿਵ ਲਾਓ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਨਾਈ ਦੇਤ ਸਗਲ ਅਪਿਆਓ ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹੋਤੀ ਨਹੀਂ ਕਵਨ ਕਸ਼ ਕਰਨੀ ਇਹ ਓਟ ਪਾਈ ਮਿਲ ਸੰਤੈ ਗੋਪਾਲ ਏ ਕੀ ਸਰਨੀ ਰਹਾਓ ਪੰਚ ਦੋਖ ਛਿਦਰ ਆ ਤਨ ਮੈਂ ਬਿਖੈ ਵਿਆਧ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆਸ ਅਪਾਰ ਦਿਨ ਸਗਣ ਰਾਖੇ ਗ੍ਰਸਤ ਜਾਤ ਬਲ ਜਰਨੀ ਅਨਾਥ ਨਾਥ ਦਯਾਲ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਸਰਬ ਦੁਖ ਪੈ ਹਰਨੀ ਮਨ ਬਾਹਿਤ ਚਿਤਵਤ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਪੇਖ ਜੀਵਾਂ ਪ੍ਰਭ ਚਰਨੀ ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਫੀਕੇ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨਸਾਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਕੀਰਤਨ ਹਰ ਗਾਈਐ ਅਹਿਨਸ ਪੂਰਨ ਨਾਦ ਰਹਾਓ ਸਿਮਰਤ ਸਾਂਤ ਮਹਾਂ ਸੁਖ ਪਾਈਐ ਮਿਟ ਜਾਹੇ ਸਗਲ ਬੇਖਾਦ ਹਰ ਹਰ ਲਾਭ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਈਐ ਕਰ ਲੈ ਆਵੋ ਔਲਾਦ ਸਭ ਤੇ ਊਚ ਊਚ ਤੇ ਊਚੋ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਮਰਜਾਦ ਵਰਨ ਨਾਸਾ ਕਉ ਨਾਨਕ ਮਹਿਮਾ ਪੇਖ ਰਹੇ ਬਿਸਮਾਦ ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਆਇਓ ਸੁਨਨ ਪੜਨ ਕਉ ਬਾਣੀ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਲੱਗੈ ਅਨ ਲਾਲਚ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਣੀ ਰਹਾਓ ਸਮਝਿਆ ਚੇਤ ਚੇਤ ਮਨ ਮੇਰੇ ਕਥੀ ਸੰਤਨ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਲਾਭ ਲੈਹੋ ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਅਰਾਧਾ ਹੋ ਛੁਟਕੈ ਆਵਣ ਜਾਣੀ ਉਦਮ ਸਗਤ ਸਿਆਣਪ ਤੁਮਰੀ ਦੇਹੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀ ਸੇਈ ਭਗਤ ਭਗਤ ਸੇ ਲਾਗੇ ਨਾਨਕ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਣੀ ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ
ਧਨਵੰਤ ਨਾਮ ਕੇ ਵਣਜਾਰੇ, ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਨਾਮ ਤਨ ਖਟੋ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ ਰਹਾਓ। ਛੋਡੋ ਕਪਟ ਹੋਏ ਨਿਰਵੈਰਾ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗ ਨਿਹਾਰੇ, ਸੱਚ ਧਨ ਵਣ ਜਾਓ, ਸੱਚ ਧਨ ਸੰਚੋ, ਕਬੂ ਨਾ ਆਵੋ ਹਾਰੇ। ਖਾਤ ਖਰਚਤ ਕਿਛ ਨਿਖੁਟਤ ਨਾਹੀ, ਅਗੰਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰੇ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੋਭਾ ਸੰਗ ਜਾਵੋ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੈ ਦੁਆਰੇ, ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਮੋਹੇ ਕਵਨਾ ਨਾਥ ਵਿਚਾਰਾ, ਕਵਨ ਮੂਲ ਤੇ ਮਾਨੁਖ ਕਰਿਆ, ਇਹੋ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੁਹਾਰਾ ਰਹਾਓ। ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਸਭ ਕੇ ਦਾਤੇ, ਗੁਣ ਕਹੇ ਨਾ ਜਾਹੇ ਅਪਾਰਾ, ਸਭ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਰਬ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ, ਸਰਬ ਕਟਾਇਆ ਆਧਾਰਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੈ ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ, ਆਪੈ ਇਕ ਪਸਾਰਾ। ਸਾਧ ਨਾਮ ਬੈਠਾਵੋ ਨਾਨਕ, ਭਵ ਸਾਗਰ ਭਾਰ ਉਤਾਰਾ, ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਆਵੈ ਰਾਮ ਸਰਨ ਵਡਭਾਗੀ, ਏਕਸ ਬਿਨ ਕਿਛ ਹੋਰ ਨਾ ਜਾਣੈ, ਅਵਰਿਓ ਭਾਵ ਤਿਆਗੀ ਰਹਾਓ। ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਅਰਾਧੈ ਹਰ ਹਰ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਆਨੰਦ ਵਿਰੋਧ ਅਕਥ ਕਥਾ ਰਸ, ਸਾਚੈ ਸਹਿ ਸਮਾਇਆ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕੀਨੋ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਤਮ ਬਾਣੀ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਨਿਸਤਰੀ ਐ, ਜੋ ਰਾਤੇ ਪ੍ਰਭ ਨਿਰਬਾਣੀ। ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਧੂ ਸਰਨ ਗਹੀ, ਸਾਂਤ ਸਹਿਜ ਮਨ ਭਇਓ ਪ੍ਰਗਾਸਾ, ਬਿਰਥਾ ਕਛ ਨਾ ਰਹੀ ਰਹਾਓ। ਹੋ ਕਿਰਪਾਲ ਨਾਮ ਦੇਹੋ ਆਪਣਾ, ਬਿਨਤੀ ਇਹ ਕਹੀ, ਆਨ ਵਿਵਹਾਰ ਬਿਸਰੇ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਤ, ਪਾਇਓ ਲਾਭ ਸਹੀ। ਜਹਿ ਤੇ ਉਪਜਿਓ ਤਹੀ ਸਮਾਨੋ, ਸਾਈ ਬਸਤ ਅਹੀ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਭਰਮ ਗੁਰ ਖੋਇਓ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਹੀ। ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਰਸਨਾ ਰਾਮ ਕੋ ਜਸ ਗਾਓ, ਆਨ ਸਵਾਦ ਵਿਸਾਰ ਸਗਲੇ, ਭਲੋ ਨਾਮ ਸਵਾਓ ਰਹਾਓ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਬਸਾਏ ਹਿਰਦੈ, ਏਕ ਸਿਉ ਲਿਵਲਾਓ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੋਹੇ ਨਿਰਮਲ, ਬਹੁੜ ਜੋਣ ਨਾ ਆਓ। ਜਿਉ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਨਿਥਾ ਵੇਥਾਓ, ਸਾਧ ਸਾਧ ਸਮਾਲ ਹਰ ਹਰ, ਨਾਨਕ ਸਦਬਲ ਜਾਓ। ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਬੈਕੁੰਠ ਗੋਬਿੰਦ ਚਰਨ ਨਿਤ ਧਿਆਓ, ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਕਾ ਨਾਉ ਰਹਾਓ। ਊਤਮ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਜੈ ਸ਼੍ਰਵਣੀ, ਮਾਇਆ ਕਰੋ ਭਗਵਾਨ, ਆਵਤ ਜਾਤ ਦੋ ਪਖ ਪੂਰਨ, ਪਾਈਐ ਸੁਖ ਵਿਸਰਾਮ। ਸੋਧਤ ਸੋਧਤ ਤਤ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਭਗਤ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪੂਰੀ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ, ਅਵਰ ਸਗਲ ਬਿਦ ਊਰੀ। ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਸਾਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤਾਰਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਸਗਲ ਦੁੱਖ ਨਾਸੈ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਬਲਿਹਾਰਾ ਰਹਾਓ। ਸਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਤ ਸਾਧ ਜਨ, ਨਿਹਚਲ ਹਰ ਕਾ ਨਾਉ, ਭਗਤ ਭਾਵਨੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ, ਅਵਨਾਸੀ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਅਗਮੈ ਗੋਚਰ ਮਿਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਐ, ਸਗਲ ਕਟਾਇਆ ਧਾਰ, ਨਾਨਕ ਵਾਹ ਵਾਹੋ ਕਹੋ ਤਾਂ ਕਹੋ, ਜਾਂ ਕਾਂਤ ਨਾ ਪਾਰ। ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਬਸੇ ਮਨ ਮੇਰਾ, ਪੂਰ ਰਹਿਓ ਠਾਕਰ ਸਭ ਥਾਈ, ਨਿਗਟ ਬਸੈ ਸਭ ਨੇਰੈ ਰਹਾਓ। ਬੰਧਨ ਤੋਰ ਰਾਮ ਲਿਵਲਾਈ, ਸੰਤ ਸੰਗ ਬਨਿਆਈ, ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਭਇਓ ਪੁਨੀਤਾ, ਇੱਛਾ ਸਗਲ ਪੁਜਾਈ, ਜਾਂ ਕਹੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ। ਸੋ ਹਰ ਕਾ ਜਸ ਗਾਵੈ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਗਾਵੈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਦਬਲ ਜਾਵੈ। ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਜੀਵਨ ਤਉ ਗਨੀਐ ਹਰ ਪੇਖਾ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਨ ਮੋਹਨ, ਫੋਰ ਭਰਮ ਕੀ ਰੇਖਾ ਰਹਾਓ। ਕਹਿਤ ਸੁਣਤ ਕਿਛ ਸਾਂਤ ਨਾ ਉਪਜਤ, ਬਿਨ ਵਿਸਾਸ ਗਿਆ ਸੇਖਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਤਿਆਗ ਆਨ ਜੋ ਚਾਹਤ, ਤਾਂ ਕਹਿ ਮੁਖ ਲਾਗੈ ਕਾ ਲੇਖਾ। ਜਾਂ ਕਹਿ ਰਾਸ ਸਰਬ ਸੁਖ ਸਵਾਮੀ, ਆਨਾ ਮੰਤ ਭੇਖਾ, ਨਾਨਕ ਦਰਸ ਮਗਨ ਮਨ ਮੋਹਿਓ, ਪੂਰਨ ਅਰਥ ਬਸੇਖਾ। ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਸਿਮਰਨ ਰਾਮ ਕੋ ਇਕ ਨਾਮ, ਗਲ ਕਲਮਲ ਦਗਧ ਹੋਏ ਖਿਨੇ ਅੰਤਰ, ਕੋੜਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਰਹਾਓ। ਆਨ ਜੰਜਾਰ ਬਿਰਥਾ ਸ਼ਰਮ ਘਾਲਤ, ਬਿਨ ਹਰ ਫੋਕਟ ਗਿਆਨ, ਜਨ ਮਰਨ ਸੰਕਟ ਤੇ ਛੂਟੈ, ਜਗਦੀਸ਼ ਭਜਨ ਸੁਖ ਧਿਆਨ।
तेरी शरण पूर्ण सुख सागर कर कृपा देवो दान सिमर सिमर नानक प्रभ जीवे बिनस जाए अभमान। सारंग महला पंजवा तूरत सोई जे तुर कौ लागे सोई तुरंतर सोई बसुंदर हर एक प्रेम रस पागे रहाओ। बल बंच करे ना जाने लाभे सो तूरत नहीं मूड़ा स्वार्थ त्याग या सार्थ रचियो न सिमरै प्रभ रूड़ा। सोई चतर सियाणा पंडित सो सूरा सो दाना साध संग जन हर हर जपियो नानक सो परवाना। सारिंग महला पंजवा हर हर संत जना की जीवन बिखै रस भोग अमृत सुख सागर राम नाम रस पीवन रहाओ। संचन राम नाम तन रतना मन तन पीतर सीवन हर रंग रांग पय मन लाला राम नाम रस खीवन। ज्यो मीना जल से उर्जानो राम नाम संग लीवन नानक संत चातर की न्याई हर बूंद पान सुख थीवन। सारंग महला पंजवा हर के नाम हीन बेताल जेता करन करावन तेता सब बंधन जंजाल रहाओ। बिन प्रभ सेव करत्यन सेवा बिरथा काटे काल जब जब आए संघारे प्राणी तब तुमरो कौन हवाल। राख लेहो दास अपने कौ सदा सदा कृपाल सुख निदान नानक प्रभ मेरा सा संग तन माल। सारंग महला पंजवा मन तन राम को व्यवहार प्रेम भगत गुण गावन गीदे पोहत ने संसार रहाओ। श्रवणी कीर्तन सिमरन स्वामी हो साध को आचार चरण कमल अस्थित हृदय अंतर पूजा प्राण को आधार प्रभ दीन दयाल सुनो बेनंती कृपा अपनी तार। नाम निदान उचरो नित रसना नानक सदबरिहार। सारंग महला पंजवा हर के नाम हीन मत थोरी सिमरत नाहे श्री धर ठाकर मिलत अंध दुख कोरी रहाओ। हर के नाम स्यों प्रीत ना लागी अनक भेख बहु जोरी टूटत बार ना लागे तां कहो ज्यों गागर जल फोरी। कर कृपा भगत रस दीजै मन खचत प्रेम रस खोरी नानक दास तेरी सरनाई प्रभ बिन ना होरी। सारंग महला पंजवा चितवाओ वाह अवसर मन माहे होय एकत्र मिलो संत साजन गुण गोबिंद नित गाहे रहाओ। बिन हर भजन जेते काम करिए तेते बिरथे जाहे पूर्ण परमानंद मन मीठो तिस बिन दूसर नाहे। जप तप संजम कर्म सुख साधन तोलना कछुए लाहे चरण कमल नानक मन बेदियो चरण संग समाहे। सारंग महला पंजवा मेरा प्रभ संगे अंतर जामी आगे कुशल पाछे खेम सुखा सिमरत नाम स्वामी रहाओ। साजन मीत सखा हर मेरा है गुण गोपाल हर राया बिसरना जाई निमख हृदय ते पूरे गुरु मिलाया। कर कृपा राखे दास अपने जी जंत वस जाके एकाले पूर्ण परमेश्वर पाओ नहीं नानक ताके। सारंग महला पंजवा जाके राम को बल होए सगल मनोरथ पूर्ण ताहू के दुख ना व्यापे कोए रहाओ। जो जो जो जन भगत दास निज प्रभ का सुन जीवा तिस सोए उद्यम करो दर्शन पेखन कहो कर्म प्राप्त होए। गुर प्रसादी दृष्ट निहारो दूसर नाही कोए दान देह नानक अपने कहो चरण जीवा संत तोए। सारंग महला पंजवा जीवत राम के गुण गाए करहो कृपा गोपाल बीठले बिसरना कभी जाए रहाओ। मन तन तन सब तुमरा स्वामी आन दूजी जाए ज्यों तू रखै तिही रहना तुमरा पैन खाए साध संगत कै बल बल जाई। बहुना जन्मा ताए नानक दास तेरी सरनाई ज्यों पावै तवै चलाए। सारंग महला पंजवा
मन रे नाम को सुखसार आन काम बेकार माया सगल दिशा सार रहाओ ग्रह अंधकूप पतित प्राणी नरक घोर गुबार अनक जोनी प्रमत हार्यो प्रमत बारंबार पतित पावन भगत वछलो दीन कृपा तार कर जोड़ नानक दान मांगे साध संग उधार सारंग महला पंजवा विराजत राम को प्रताप आद ब्याज पाद सब नासी बिनसे तीन ताप रहाओ तृष्णा बुझी पूर्ण सब आसा चूके शोक संताप गुण गावत्या चौतव नासी मंतन आत्म त्राप काम क्रोध लोभ मद मत सर साधु कै संग खाप भगत वच्छर पै कट नहारे नानक के माई बाप सारंग महला पंजवा आतर ना बिन संसार तृप्त न होवत कुकरी आसा इत लागो बिख्या शार रहाओ पाए ठगौरी आप लायो जन्मत बारो बार हर का सिमरन निमख ना सिमरियो जम कंकर करत खुआर हो कृपाल दीन दुख भंजन तेरिया संतै की रावार नानक दास दर्स प्रभ जाचै मन तन को आधार सारंग महला पंजवा मैला हर के नाम बिन जियो तिन प्रभ साचाया भुलाया बिखै ठगौरी पियो रहाओ कोट जन्म भ्रम तो बहु भांति थित नहीं कथू पाई पूरा सतगुर सहज न पेटिया सख्त आवै जाई राख ले हो प्रभ समरथ दाते तुम प्रभ अगम्या पार नानक दास तेरी सरनाई भवजल उतरियो पार सारंग महला पंजवा रमण कौ राम के गुणबाद साध संग त्याई है परमेसर अमृत जाके स्वाद रहाओ सिमरत एक अच्युत अविनाशी बिरसे माया माद सहज अनद अनहद धुन बाणी बहुर न भय बेखाद सनकादक ब्रह्मादक गावत गावत सुख प्रहलाद पीवत अमयो मनोहर हर रस जप नानक हर बिस्माद सारंग महला पंजवा कीने पाप के बहु कोट दिन सरैनी थकत नाही कत नाही छोट रहाओ महाबजर बिख ब्यादी सिरे उठाई पोट उगर गईया खिनह पीतर जमे ग्रासे चोट पस प्रेत उष्ट गर्दब अनक जोनी लेट पज साध संग गोबिंद नानक कश ना लागे फेट सारंग महला पंजवा अंधे खावे बिसु के गटाक नैन सरवण शरीर सब हुट्यो सास गयो तत घाट रहाओ अनाथ रियान उधर ले पोखे माया गईया हाट किल बिख करत करत पछतावे कब न सकै शांट निंदक जमदूती आए संघारे ओ देवे मूंड उपर मटाक नानक अपन कटारी आपस कौ लाई मन अपना कीनो फाट सारंग महला पंजवा टूटी निंदक की अद बीच जनका राखा आप स्वामी बेमुख कौ आए पहुची मीच रहाओ उसका कहया कोई ना सुनई कहीं ना बैसन पावे इहां दुख आगे नरक पुंचे बहु जोनी परमावे प्रगट पया खंडी ब्रह्मंडी कीता अपना पाया नानक सरन निरपव करते की आनंद मंगल गुण गाया सारंग महला पंजवा तृष्णा चलत बहु प्रकार पूर्ण होत न कथो बातै अंत प्रतिहार रहाओ सांत सुख न सहज उपजै एह इस व्यवहार आप पर का कछ न जानै काम क्रोध यार संसार सागर दुख व्यापियो दास लेवो तार चरण कमल सुनाए नानक सच सदा बलिहार सारंग महला पंजवा अरे पापी तै कमन की मत लीन निमख करी ना सिमर स्वामी जियो पिंड जंदीन रहाओ खात पीवत स्वंत सुखिया नाम सिमरत खीन गर्भ उदर बिललाट करता तहां होवत दीन महामाद बिकार बादा अनक जोन परमीन गोबिंद बिसरे कवन दुख गनिय सुख नानक हर पद चीन
सारंग महला पंजवा। मायरी चरना उठ गही, दर्शन पेख मेरा मन मोहयो, दुर्मत जात बही रहाओ। अगह अगाध ऊच अवनासी, कीमत जात ना कही, जल थल पेख पेख मन बिकस्यो, पूरे ओ सर्वमही। दीन दयाल प्रीतम मन मोहन, मिल सादै कीनो सही, सिमर सिमर जीवत हर नानक, जम की पीर ना फही। सारंग महला पंजवा। मायरी मन मेरो मतवारो, पेख दयाल आनंद सुख पूर्ण, हर रस रप्यो खुमारो रहाओ। निर्मल भय उजल जस गावत, बहुर न होवत कारो, चरण कमल स्यों डोरी राची, भेट्यो पुरख्या पारो। कर गह लीने सरबस दीने, दीपक भय उजारो, नानक नाम रसक बैरागी, कुलै समूहा तारो। सारंग महला पंजवा। मायरी आन सिमर मर जाहे, त्याग गोबिंद जियन को दाता, माया संग लपटा हे रहाओ। नाम विसार चले अनमार्ग, नर घोर मै पाहे, अनक सजाई गणत न आवै, गर्भ गर्भ परमाहे। से तनवंते से पतवंते, हर की शरण समाहे, गुरप्रसाद नानक जग जीतियो, बहुर न आवै जाहे। सारंग महला पंजवा। हर काटी कुटलता कुठार, भ्रम बन दहन भय खिन पीतर, राम नाम परहार रहाओ। काम क्रोध निंदा पर हरिया, काडे साधु कै संगमार। जन्म पदार्थ गुरमुख जीतया, बहुर न जुवै हार। आठ पहर प्रभ के गुण गावै, पूर्ण शब्द विचार। नानक दासन दास जन तेरा, पुनः पुनः नमस्कार। सारंग महला पंजवा। पोथी परमेश्वर का थान, साध संग गावे गुण गोबिंद, पूर्ण ब्रह्म ज्ञान रहाओ। साधक सिद्ध सगल मुन लोचै, बिरले लागे ध्यान, जिसे कृपाल होए मेरा स्वामी, पूर्णता को काम। जा कर दे वसै पै पंजन, तिह जाने सगल जहान, खिन पल बिसर नहीं मेरे करते, एहो नानक मांगै दान। सारंग महला पंजवा। वूठा सर्व थाई में हो, आनंद मंगल गाओ हर जस, पूर्ण प्रगट्यो ने हो रहाओ। चार कुंट दह दिस जल निध, ऊन थाओ ना के हो, कृपा निध गोबिंद पूर्ण, जी दान सब दे हो। सत सत हर सत स्वामी, सत साध संगे हो, सत ते जन जिन प्रतीत उपजी, नानक ने परमे हो। सारंग महला पंजवा। गोविंद जियो तू मेरे प्राण आधार, साजन मीत सहाई तुम ही, तू मेरो परवार रहाओ। कर मस्तक धारियो मेरे माथे, साध संग गुण गाए, तुमरी कृपा ते सफल पाए, रसक राम नाम त्याए। आब चल नीम तराई सतगुर, कभू डोलत नाही, गुर नानक जप पै दयारा, सर्व सुखा निध पाही। सारंग महला पंजवा। निभही नाम की सच खेप, लाभ हर गुण गाए निद।

लेखा लिखिए मन कह पाए नानक पीजे साचे नाए। महला पहला नाम से खटका करे विचार निस दिन उचरे पार अठार। तिन पियंत ना ताय तिन पियंत ना पाया तो हे नाम बिहून मुक्त क्यों होए। नाब वस्त ब्रह्म अंत न जानिया गुरमुख नानक नाम पछाणिया। पौड़ी आपे आप निरंजना जिने आप पाया आपे खिलर चायो न सब जगत सुबाया। त्रै गुण आप सिरजन माया मोह वधाया गुर प्रसादी उबरे जन पाणा पाया। नानक सच वरतदा सब सच समाया। श्लोक महला दूजा। आपो पाए नानका आपे रखे वेक मंदा किसनो वाखी जा सबना साहब एक। सबना साहब एक है वेखे तंदे लाए किसे थोड़ा किसे अगला खाली कोई ना है। आवे नंगे जाहे नंगे विचे करे विथार नानक हुक्म ना जानिए अगै काई कार। महला पहला जिनस थाप जिया को भेजे जिनस थाप लै जावे आपे थापो थापे आपे एते विस्करावे। जेते जी फिर औदूती आपे पिख्या पावे। लेखे बोलन लेखे चलन काय तो कीचे दावे मूल मत प्रवाणाए हो नानक आख सुनाए। करनी उपर होए तपावस जे को कहे कहाए। पौड़ी गुरमुख चलतर चायोन गुण प्रगटी आया गुरबाणी सद उचरै हर मन वसाया। सगत गई प्रम कटिया शिव जो जगाया जिनकै पोतै पुन है गुरपुरख मिलाया। नानक सहजे मिल रहे हर नाम समाया। श्लोक महला दूजा। साह चले वन जा रहा लिखिया देवै नाल लिखे उपर हुक्म होए लिये वस समाल। वस लई बन जा रही वखर बद्दा पाए कई लाह लै चले चले मूल गवाए। थोड़ा किने ना मंगेओ किस कही ऐसा बास नजर तिना कहो नानका जे सबत लाए रास। महला पहला। जोड़ जोड़ विछड़े

जैसा करे कहावै तैसा, ऐसी बनी जरूरत, होवै लिंग चिंग न होवै ऐसी कही है सूरत, जो उस इच्छे सो फल पाए ता नानक कही है मूर्त पौड़ी। सतगुर अमृत बिरख है अमृत रस फलिया, जिस प्राप्त सो लहै गुर शब्दी मिलिया, सतगुर कै पाणे जो चलै हर सेती रलिया, जम काल जोहे न सकई कर चानन बलिया, नानक बख्श में लाया न फिर गर्भ ना गलिया। श्लोक महला पहला। सच वर्त संतोख तीर्थ, ज्ञान ध्यान इशनान, दया देवता खिमा जप माली, ते मानस प्रधान, जुगत धोती सुरत चौका, तिलक करनी होए पाओ पाओ जुन नानका, विरला ता कोई कोए। महला तीजा। नौमी नेम सच जे करे, काम क्रोध तृष्णा उचरे। दसवीं दसे द्वार जे ठाके, एकादशी एक कर जाने, द्वादशी पंच वसगत कर राखे, तौ नानक मन माने। ऐसा वर्त रही जय पांडे, होर बहुत सिख क्या दीजे। पौड़ी पुपत राजे रंग राय, संचय विखमाया, कर कर हेत वधाए दे पर दर्प चुराया। पुत्र कलत्र नाम विस है, बहुप्रीत लगाया, वेखद्या ही माया तुहे गई पछता पछताया। जम दर्ब दे मारिए नानक हर पाया। श्लोक महला पहला। ज्ञान में हुना गावै गीत, भुखे मुला करे मसीत, मखटू होए कै कन पढ़ाए, फकर करे होर जात गवाए, गुरपीर सदाए मंगन जाए, ता कै मूल न लगिए पाए, काल खाए किश हथों दे, नानक राहो पछाणे से। महला पहला। मनो जे अंधे कूप, कहया बिरदना जाननी, मन अंधे उंधे कवल दिसन खरे करूप, एक कह जान कहया बुजन ते नरसुर स्वरूप, एक ना नादना बेदना गी रस, रस कस ना जानंत, एक ना शुद्ध ना बुद्ध ना अकल सार, अखर का प्यो ना लहंत, नानक से नर असल खार, जे बिन गुण गर्भ करंत। पौड़ी गुरमुख सब पवित है, तन संपै माया, हर अर्थ जो खर्च दे देंदे सुख पाया, जो हर नाम ते आए दे तिन तोट ना आया, गुरमुखा नदरी आमदा माया सुट पाया। नानक भगता होर चेतना आवई, हर नाम समाया। श्लोक महला चौथा। सतगुर सेवन से वडभागी, सचै शब्द जिन्ना एक लिव लागी, ग्रह कुटाम मैं सहज समाधि, नानक नाम रते से सच्चे बैरागी। महला चौथा। गणत सेवना हो वई, कीता थाए ना पाए, शब्द साधना आयो सच ना लगो पाओ, सतगुर प्यारा ना लगे मन ठिया वह जाए, जे एक विख अगाह भरे ता दस विखा पिछाह जाए, सतगुर की सेवा चाकरी जे चले सतगुर पाए, आप गवाए सतगुरु नो मिले, सहजे रह समाए, नानक तिन्ना नाम ना।

करत है गोविंद ते सतसंग मिलात मात पिता बंता सुत संपत अंत न चलत संगात कहत कबीर राम भज बौरे जन्म अकारथ जात राजा श्रम मित नहीं जानी तेरी तेरे संतन की हो चेरी रहाओ हस्तो जाए सो रोवत आवै रोवत जाए सो हसै बस तो होए होए सो उजर उजर होए सो बसै जल ते थल

आओ, काम ना बिसरियो, क्रोध ना बिसरियो, लोभ ना छूटियो देवा, पर निंदा मुक्ते नहीं छूटी, निफल पई सब सेवा। बाट पार कर मूस बिरानो, पेट भरे अपराधी, जेह पर लोग जाए अपकीर्त, सोई अविद्या साधी। हिंसा तो मनते नहीं छूटी, जी दया नहीं पाली, परमानंद साध संगत मिल, कथा पुनीत ना चाली। शाड़ मानो हर बिमुखन को संग, सारंग महला पंजवा, सूरदास एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर के संग बसे हर लोक, तन मन अर्प सरबस सब अर्प्यो, आनंद सहज धुन चोक रहाओ, दर्शन पेख पय निर्भखई, पाए है सगले थोक, आन बस्त स्यों काज ना कछु है, सुंदर बंदन्या लोक। श्याम सुंदर तज आन जो चाहत, जो कुष्टि तन जोक, सूरदास मन प्रभ हथ लीनो, दीनो एहो परलोक। सारंग कबीर जियो एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर बिन कौन सहाई मन का, मात पिता भाई सुत बंता, हित लागो सब फन का रहाओ, आगे कहो किश तुल्हा बंद हो, क्या प्रवासा तन का, कहां बिसासा इस भांडे का, इतनक लागै ठनका। सगल धर्म पुन फल पावहो, तूर बांछो सब जन का, कह कबीर सुनोरे संतो, एहो मन उडन पंखेरू बन का। राग मलार चौप दे महला पहला, कर पहला एक ओंकार सतनाम, करता पुरख निर्भउ निर्वैर, अकाल मूर्ता जूनी सह भंगुर प्रसाद। खाना पीना हसना

है मरना, खसम विसार खुआरी कीनी, त्रिग जीवन नहीं रहना। प्राणी एको नाम ते आवो, अपनी पासेती कर जावो रहाओ। तुझनो सेव है तुझ क्या देव है, मांगे ले वह रह नहीं। तू दाता जिया सबना का, जिया अंदर जियो तुही। गुरमुख त्यावे से मृत पावे, से ही सुचे हो ही। अहनिस नाम जपोरे प्राणी, मैले हच्छे हो ही। जेही रुत काया सुख तेहा, तेहो जेही देही। नानक रुत सुहावी साई, बिन नाम है रुत के ही। मलार महला पहला, करो बिनो गुरे अपने प्रीतम। हर वर आन मिलावे, सुन कन कोर। शीतल मन मोरा, लाल रती गुण गावे। बरस घना मेरा मन पीना, अमृत बुंद सुहानी ही है। गुरमोही मन हर सलीना रहाओ। सहज सुखी वर कामन प्यारी, जिस गुर बचनी मन मानिया। हर वर नार भई सुहागण, मंतन प्रेम सुखानिया। आवगण त्याग भई बैरागण, आस्तर वर सुहाग हरी। सोग विजोग तिस कदे ना व्यापै, हर प्रभ अपनी कृपा करी। आवन जान नहीं मन निर्मल, आवन जान नहीं मन निचल। पूरे गुर की ओट गही, नानक राम नाम जप गुरमुख। तन सुहागण सच सही, मलार महला पहला। साची सुरत नाम नहीं तृप्ते, हो मैं करत गवाया। पर तन पर नारी रत निंदा, बिख खाई दुख पाया। शब्द चीन पै कपट ना छूटे, मनमुख माया माया। अजगर पार लदे अत भारी, मर जन्म जन्म गवाया। मन भावे शब्द सुहाया, भ्रम भ्रम जोन पेख बहु कीने। गुर राखे सच पाया रहाओ। तीर्थ तेज निवार ना नाते, हर का नाम ना पाया। रतन पदार्थ पर हर त्याग गया, जत को तत ही आया। बिष्टा कीट पै उतही ते, उतही महे समाया। अधिक स्वाद रोग अधकाई, बिन गुर सहज नाम पाया। सेवा सुरत रहस गुण गावा, गुरमुख ज्ञान बिचारा। खोजी उपजै बादी बिनसै, हम बल बल गुर करतारा। हम नीच होते हीन मत झूठे, तू शब्द सवारनहारा। आत्म चीन तहां तू तारण, सच तारे तारनहारा। बैस सुथान कहां गुण तेरे, क्या क्या कथों अपारा। अलख न लखिए अगमा जोनी, तू नाथा नाथनहारा। किस पै देख कहो तू कैसा, सब जाचक तू दा तारा। भगतहीन नानक दर देखो, एक नाम मिले उर तारा। मलार महला पहला, जिन तन पिर का साधना जानिया। सा बिलख बदन कुमलानी, पई निरासी कर्म की फासी। बिन गुर भरम भुलानी, बरस घना मेरा पिर कर आया। बल जावा गुरे अपने प्रीतम, जिन हर प्रभ आन मिलाया रहाओ। नव तन प्रीत सदा ठाकर स्यो, आंदन भगत सुहावी। मुक्त पाए गुरदर्श दिखाया, जो जो भगत सुभावी। हम थारे त्रिपवन जग तुमरा, तू मेरा हो तेरा। सतगुर मिलया निरंजन पाया, बहुर ना पवजल फेरा। अपने पिरहर देख विगासी, तौ तन साज सिंगारो। अकुल निरंजन स्यो सच साची, गुरमत नाम आधारो। मुक्त पई बंधन गुर खोले, शब्द सुरत पत पाई। नानक राम नाम हृदय अंतर, गुरमुख मेल मिलाई।

जिस गुर का शब्द रत्न आचार रहाउ। दुख सुख दो सम कर जाने बुरा पला संसार, शुद्ध बुद्ध सुरत नाम हर पाई है ऐसा संगत गुर प्यार। हैन सलाह हर नाम प्राप्त गुरदाता देवनहार, गुरमुख सिख सोई जन पाए जिसनो नजर करे करतार। काया महल मंदिर घर हर का तिसमें राखी जोत अपार, नानक गुरमुख महल बुलाई है हर मेले मिलनहार। मलार महला पहला कर दूजा एको अंकार, सतगुर प्रसाद पमणे पानी जाने जात, काया अगन करे निभरात, जब मैं जी जाने जे थाओ, सुरता पंडिता का नाओ। गुण गोबिंद ना जानी है माए, अंडी ठग शिकै न जाए, क्या कर आख वखाणी है माए, रहाओ ऊपर दर असमान पयाल, क्यों कर कही है देहो विचार, बिन जहवा जो जपह आए, कोई जाने कैसा नाओ। कथनी बदनी रह निप्रांत, सो बूझे होवे जिस दात, अहन स्यंतर रह लिव लाए, सोई पुरख जे सच समाए। जात कुलीन सेवक जे होए, ताका कहना कहो ना कोए, विसनाती सेवक होए, नानक पणिया पहरै सोए। मलार महला पहला दुख विछोड़ा एक दुख भूख, एक दुख सकत वार जमदूत, एक दुख रोग लगे तन ताए, वैदना भोले दारू लाए, वैदना भोले दारू लाए, दर्द होवे दुख रहे शरीर, ऐसा दारू लगे ना बीर। रहाओ खसम विसार किए रस भोग, तां तन उठ खलोए रोग, मन अंधे को मिले सजाए, वैदना भोले दारू लाए। चंदन का फल चंदन वास, मानस का फल घट मैं सास, सास गए काया टल पाए, तां कह पछे कोई ना खाए, कंचन काया निर्मल हंस, जिसमें नाम निरंजन अंस। दुख रोग सब गया गवाए, नानक छूटस सच है नाए। मलार महला पहला दुख महुरा मारन हर नाम, सिला संतोख पीसन हथ दान। नित नित लेहो ना चीजै देह, अंतकाल जम मारे ठेह, ऐसा दारू खाहे गवार, जित खादे तेरे जाहे विकार। रहाओ राज माल जोबन सब शाम, रथ फिरंदे दिसै थाम, देह ना नाओ ना होवै जात, उथै देहो एथै सब रात। साध कर समदा तृष्णा क्यो तेल, काम क्रोध अग्नि सो मेल, होम जग अर पाठ पुराण, ज्योत सुभावै सो प्रवाण। तप कागद तेरा नाम निशान, जिन को लिखिया हो निदान, से तनवंत दिसै कर जाए, नानक जननी तन्नी माए। मलार महला पहला बागे कापड़ बोले बैन, लम्मा नक काले तेरे नैन। कबू साहिब देखिया पैन, ऊंडा ऊंड चढ़ा समान, साहिब समरथ तेरे तान। जल थल डूंगर देखा तीर, थान थनंतर साहिब वीर। जिन तन साज दिए नाल खंभ, आत तृष्णा उड़ने की डंज। नदर करे ता बंदा धीर, ज्यो विखाले त्यो वेखा वीर। ना हो तन जाएगा ना जाहेंगे खंभ, पौने पानी अग्नि का संबंध। नानक कर्म होवे जपिए कर गुर पीर, सच समावे हो शरीर। मलार महला तीजा चौप दे कर पहला एक ओंकार, सतगुर प्रसाद निरंकार आकार है आपे, आपे परम पुलाए, कर कर करता आपे वेखै, जित पावै तित लाए। सेव कौ इहा वडियाई, जा कौ हुकम नाए, अपना पाणा आपे जाणै, गुर कृपा ते लहीऐ, इहा सख्त सेवै कर आवै, जीवदे अमर रहीऐ। रहाओ वेद पढ़ै पढ़वाद वखाणै, ब्रह्मा विष्णु महेसा, एह त्रै गुण माया जिन जगत भुलाया, जन्म मरण का सहिसा। गुर प्रसादी एको जाने चूके मनु अंदेसा, हम दीन मूर्ख अविचारी, तुम चिंता करो हमारी। हो दयाल कर दास दासा का, सेवा करी तुम्हारी। एक निदान देह तू अपना, अहनस नाम वखाणी, कहत नानक गुर प्रसादी बूझो।
कोई ऐसा करे विचारा, ज्यों जल ऊपर फेन बुदबुदा, तैसा एहो संसारा, जिसते होवा तिसै समाणा, चूक गया पासारा। मलार महला तीजा, जिनी हुक्म पछाणिया से मेले हमें शब्द जलाए, सच्ची भगत करह जनराती, सच रहे लिव लाए, सदा सच हर वेख दे गुर कह शब्द सुवाए। मन रे हुक्म मन सुख होए, प्रभ पाणा अपना भावदा, जिस बख्से तिस बिघन ना कोए रहाओ। त्रै गुण सब बात आत है, ना हर भगत ना पाए, गत मुक्त कदे ना हो वई, हम मैं कर्म कमाए। साहिब भावै सो थीऐ, पै किरत फिराए, सतगुर भेटिऐ मन मर रहै, हर नाम वसै मन आए। तिसकी कीमत ना पवै, कहना किछु ना जाए, चौथे पदवासा होया सच्चे रहै सुमाए। मेरा हर प्रभ अगमय गोचर है, कीमत कहन ना जाए, गुर प्रसादी बुझिया सबदे कार कमाए। नानक नाम सलाहे तू, हर हर दर सोभा पाए। मलार महला तीजा, गुरमुख कोई विरला बूझे, जिसनो नजर करे गुरबिन दाता कोई नाही, बख्से नजर करे गुर मिलिया सांत उपजाए, अंदर नाम लय। मेरे मन हर अमृत नाम ते आए, सतगुर पुरख मिलै नाव पाई है, हर नामे सदा सुमाए। रहाओ मनमुख सदा विछड़े फिर है, कोई ना किसी ही नाल, हमें वड्डा रोग है सिर मारे जमकाल। गुरमत सत संगत ना विछड़े, अंधे नाम संभाल, सबना करता एक तू, नित कर देखे विचार। एक गुरमुख आप मिलाया, बख्से भगत भंडार, तू आपे सब कुछ जानदा,

बरसै मेघ सखी घर पा होने आए, मोहे दीन कृपा निध ठाकर नवनिद नाम समाए रहाओ। अनक प्रकार भोजन बहु किए बहु व्यंजन मिष्टाए, करी पागसाल सोच पवित्रा हुन लावो भोग हर राए। दुष्ट बिदारे साजन रहसे एह मंदर कर अपनाए, जौ ग्रह लाल रंगी ओ आया तो मैं सब सुख पाए। संत सभा ओट गुर पूरे तुर मस्तक लेख लिखाए, जन नानक कंत रंगीला पाया फिर दुख ना लाग आए। मलार महला पंजवा खीरा दार, बारक जब होता बिन खीरा रहन न जाई। सार संभाल माता मुख नीरे तबो तृप्त अगाई। हम बारक पिता प्रभदाता, भूले बारक अनक लख बरिया, अनठौर नाही जय जाता रहाओ। चंचल मत बारक बपरे की, सर्प अग्न कर मेले, माता पिता कंठ लाए राखे आनंद सही तब खेले। जिसका पिता तू है मेरे स्वामी, तिस बारक भूख कैसी, नव निध नाम निदान ग्रह तेरा, मन बांछ सो लैसी। पिता कृपाल आज्ञा है दीनी, बारक मुख मांगे सो देना, नानक बारक दर्श प्रभ चाहे, मोहे हृदय बसै नित चरना। मलार महला पंजवा, सगल विधि जो रिया हर करया, तजो सगलां देसा, कार्य सगल अरंभ्यो घर का, ठाकर का पारोसा। सुनिया बाजै बाज सुहावी, भोर भया मैं प्रेम मुख पेखे, गृह मंगल सोहलावी रहाओ। मनुआ लाए सवारे थाना, पूछो संतां जाए, खोजत खोजत मैं पाहुन मिलियो, भगत करो ने उपाए। जब प्रे आए बसे गृह आसन, तब हम मंगल गाया, मीत सजन मेरे पहे सुहेले, प्रभ पूरा गुरु मिलाया। सखी सहेली पहे आनंदा, गुर कार्ज हमरे पूरे, कहो नानक वर मिलिया सुखदाता, छोड़ ना जाई दूरे। मलार महला पंजवा, राज ते कीट, कीट ते सुरपत, कर दोख जठर कौ भरते, कृपा निध छोड़ आन कौ पूजै, आत्म काती हरते, हर बिसरत ते दुख दुख मरते, अनक बार प्रमय बो जोनी, टेक न काहू धरते रहाओ। त्याग स्वामी आन कौ बिचर चितवत, मूड मुग्ध खल खरते, कागर नाव लंघे कथ सागर, बिरथा कथत हम तरते। सेव बिरंच असुर सुर जेते, काल अग्न में जरते, नानक सरन।

आनंद मंगल रस गावनी निकी रहाओ। तुनत ललत गुनग अनक भांत बहुबिध रूप दिखावनी निकी। गिर तर थल जल पवन भरपुर घट घट लालन छावनी निकी। साध संग रामैया रस पायो नानक जाकै पावनी निकी। मलार महला पंजवा गुरप्रीत प्यारे चरण कमल होरे दे अंतर तारे। रहाओ दर्स सफल्यो दर्स पेख्यो गए किल बिख गए मन निर्मल उजियारे। बिसम बिसमै बिसम पई अड़ग कोट हरते नाम लई। गुर चरण मस्तक डार पही प्रभ एक तू ही भगत टेक तुहारे जन नानक शरण द्वारे। मलार महला पंजवा बरस सरस आग्या होहे आनंद सगल भाग। रहाओ संत संगे मन पर फड़ै मिल मेघ तर सुहाग। कन कोर प्रीत मोर चित चातरक बूंद ओर। ऐसो हर संगे मन मोह त्याग माया तो हो मिल संत नानक जागया। मलार महला पंजवा गुण गोपाल गाओ नीत राम नाम तार चीत। रहाओ छोड़ मान तज गुमान मिल साधुआ कै संग। हर सिमर एक रंग मिट जाहे दोख मीत। पार ब्रह्म भय दयाल बिनस गए बिखै जंजाल। साध जना कै चरण लाग नानक गावै गोविंद नीत। मलार महला पंजवा कन गरजत गोविंद रूप गुण गावत सुख चैन। रहाओ हर चरण सरन तरन सागर तुन अनहता रस बैन। पथक प्यास चित सरोवर आत्म जल लैन। हर दर्श प्रेम जन नानक कर कृपा प्रभ दैन। मलार महला पंजवा हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल लाल। रहाओ प्राण नाथा नाथ सखे दीन दर्द निवार। हे समर्थ गम पूर्ण मोहे मया तार। अंधकूप महापयान नानक पार उतार। मलार महला पहला अष्टपदिया कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। चकवी नैन नींद न चाहे बिन

मेरे मन हर हर राम नाम जपचीत, हर हर वस्त माया गड़बेड़ी, गुर कै शब्द लियो गड़जीत रहाओ। बिखिया परम परम बहु प्रमया, लुभ दो पुत्र कलत्र मोह प्रीत, जैसे तरवर की तुष छाया, खिन में बिनस जाए देह पीत। हमरे प्राण प्रीतम जन उत्तम, जिन मिलिया मन होए प्रतीत। परचे राम रव्या कट अंतर, अस्त्र राम रव्या रंग प्रीत। हर के संत संत जन नीके, जिन मिलिया मन रंग रंगीत। हर रंग लह न उतरे कबहू, हर हर जाए मिले हर प्रीत। हम बहु पाप किए अपराधी, गुर काटे कटत कटीत। हर हर नाम दियो मुख औखद, जन नानक पतत पुनीत। कानड़ा महला चौथा, जप मन राम नाम जगन्नाथ। घूमन घेर परे बिख बिखिया, सतगुर काढ़ लिए दे हाथ रहाओ। स्वामी अपै निरंजन नर हर, तुम राख ले हो हम पापी पाथ। काम क्रोध बिखिया लोभ लुभते, काष्ट लोह तरे संग साथ। तुम वड पुरख वड अगमा गोचर, हम ढूंढ रहे पाई नहीं हाथ। तू परै परै परम्पर स्वामी, तू अपन जाने आप जगन्नाथ। अदृष्ट गोचर नाम ते आए, सत संगत मेर साधु पाथ। हर हर कथा सुनी मिल संगत, हर हर जपियो अकथ कथ काथ। हमरे प्रभ जगदीश गोसाई, हम राख लेहो जगन्नाथ। जन नानक दास दास दासन को, प्रभ करहो कृपा राखो।

हमरे हर प्राण सखा स्वामी हर मीता, मेरे मन तन जी हर हरे, हरे राम नाम तन माल, जाको भाग तिन लियो री सुहाग, हर हर हरे हरे गुण गावे गुरमत, हौ बलबले हौ बलबले, जन नानक हर जप पही, निहाल निहाल निहाल, कानड़ा महला चौथा, हर गुण गावो जगदीश, एका जी कीचै लख बीस, जप हर हर शब्द जपीस, हर हो कृपीस रहाओ, हर कृपा कर स्वामी हम लाए हर सेवा, हर जप जपे जप जपो जगदीश, तुमरे जन राम जपै ते उत्तम, तिन कहो हाँ कुम कुमे कुम कुम जीस, हर तुम वड वडे वडे वड ऊचे, सो करै जे तुद पावीस, जन नानक अमृत पिया गुरमती, तन तन तन तन तन गुरु साबीस, कानड़ा महला चौथा, पज राम मन राम, जिस रूप ना रेख वडाम, सतसंगत मिल पज राम, बढ़ हो पाग मथाम रहाओ, जित ग्रह मंदिर हर होत जास, तित कर आनंदो आनंद, पज राम राम राम, राम नाम गुण गावो हर प्रीतम, उपदेश गुरु गुर सतगुरा, सुख होत हर हरे हर हरे, हरे पज राम राम राम, सब सिष्ट तार हर तुम कृपाल करता, सब तू तू तू राम राम राम, जन नानको शरणागति देहो गुरमति, पज राम राम राम, कानड़ा महला चौथा, सतगुर चट पग चाट, जित मिल हर पादर बाट, पज हर रस रस हर गाट, हर हो लिखे लिलाट रहाओ, खट कर्म क्रिया कर बहु बहु विस्थार, सिद्ध साधक जोगिया कर जट जटा जट जाट, कर पेख ना पाईए हर ब्रह्म जोग हर पाईए, सतसंगति उपदेश गुरु गुर संत जना, गुर खोल खोल कपाट, तू अपरंपर स्वामी आता गाहा, तू भरपुर रया जल थल।

नहीं सब भला ही है रे, हार नहीं सब जेता है, सोग नाही सदा हरखी है रे, छोड़ नाही किछ लेता है। कहो नानक जन हर हर हर है, कत आवै कत रमत है, कानड़ा महला पंजवा, हिये को प्रीतम बिसर ना जाए, तन मन गलत पए तेह संगे, मोहनी मोहे रही मोरी माए रहाओ, जय जय पै कहो बिरथा हो अपनी, तेऊ तेऊ गह रहे अटकाए, अनक पांत की एक है जाली, ताकि गंठ नहीं शोर आए, फिरत फिरत नानक दास आयो, संत नहीं सरनाए, काटे अज्ञान परम हो माया, लियो कंठ लगाए, कानड़ा महला पंजवा, आनंद रंग बिनोद हमारे, नामो गावन नाम ते आवनो, नाम हमारे प्राणाधार है रहाओ, नामो ज्ञान नाम इशनाना, हर नाम हमारे कार्य सवार है, हर नामो शोभा नाम बढ़ाई, पौजल बिखम नाम हर तार है, अगम पदार्थ लाला मोला, पयो प्राप्त गुर चरनार है, कहो नानक प्रभय कृपाला, मगन पय ही अरै दरसार है, कानड़ा महला पंजवा, साजन मी स्वामी नेरो, पेखत सुनत सबन कह संगे, थोरे काज ब्रो कह फेरो रहाओ, नाम बिना जेतो लपटायो, कछु नहीं नाही कछ तेरो, आगे दृष्ट आवत सब प्रगट, इहा मोहयो परम अंधेरो, अटक्यो सुत बनता संग माया, देवन हार दा तार बसेरो, कहो नानक एक है पारो सौ, बंधन काटन हार गुरमेरो, कानड़ा महला पंजवा, बिखे दल संतन तुमरे गायो, तुमरी टेक भरोसा ठाकरो, शरण तुम्हारी आयो रहाओ, जन्म जन्म के महाप्राहित, दर्शन पेट मिटाहो, पयो प्रगास अन दुजियारा, सह समा समाहो, कौन कहे तुम ते कछ नाही, तुम समर्थ अथाहो, कृपा निधान रंग रूप रस, नाम नानक लै लाहो, कानड़ा महला पंजवा, बूढ़त प्राणी हर जप तीरै, बिन सह मोह परम दुख पीरै रहाओ, सिमरो दिन रैन गुर के चरना, जत खत पेखो तुमरी सरना, संत प्रसाद हर के गुण गाया, गुर भेड़त नानक सुख पाया, कानड़ा महला पंजवा, सिमरत नाम मन सुख पाई है, साज जना मिल हर जस गाई है, रहाओ कर कृपा प्रवरदय बसेरो, चरण संदर के माथा मेरो, पार ब्रह्म को सिमरो मना, गुरमुख नानक हर जा सुना, कानड़ा महला पंजवा, मेरे मन प्रीत चरण प्रप्रसन, रसना हर हर भोजन तृप्तानी, अखियन को संतोख प्रब दर्शन, रहाओ करनन पूर रहो जस प्रीतम, कल मल दोग सगल मल हरसन, पावन तहावन स्वामी सुख पंथा, अंग संग काया संत सरसन, शरण गही पूर्ण अबनासी, आनो पाव थकत नहीं करसन, कर गए लिए नानक जन अपने, अंध घोर सागर नहीं मरसन, कानड़ा महला पंजवा, कोह कत कपट खपट खल गरजत, मरजत मीच अनक बरिया रहाओ, अहू मत अनरात कुमित हित प्रीतम, पेखत भ्रम ला गरिया, अनित व्यवहार आचार विदहीनत, मम मद मात कोप जरिया, करण कृपाल गोपाल दीन बंद, नानक उदर सरन परिया, कानड़ा महला पंजवा, जी प्राण मान दाता, हर बिसरते ही हान रहाओ, गोबिंद त्याग आन लागे, अमृतो डार भूम पागे, बिखैरा स्यों आसक्त मूड़े, काहे सुखमान, काम क्रोध लो व्याप्यो, जन्म ही की खान, पतत पावन शरण आयो, उधर नानक जान, कानड़ा महला पंजवा, अवलोको राम को मुखार बिंद, खोजत खोजत रतन पायो, बिसरी सब चिंद रहाओ, चरण कमल हृदय तार, उतरिया दुख मंद, राज तन परवार मेरा, सर्ब सो गोबिंद, साध संगम लाभ पायो, नानक फिर ना मरंद। कानड़ा महला पंजवा, घर पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, प्रभ पूज हो नाम आराध, गुर सतगुर चरनी लाग, हर पाव मन आगाद, जग जीतो हो गुर कृपाद, रहाओ
अनक पूजा मैं बहुविध खोजी, सा पूजा जे हर पावास। माटी की यह पुत्री जोरी, क्या है कर्म करा कमास। प्रभा पकड़ जिस मार्ग पावो, सो तुद जंत मिलास। अवर ओट में कोई न सूजे, एक हर की ओट में आस। क्या दीन करे अरदास, जो सब कट प्रभु निवास। प्रभ चरणन की मन प्यास, जन नानक दास कहियत है तुमरा। हाँ बल बल सद बल जास। कानड़ा महला पंजवां, कर शेवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जगत उदारण नाम प्रे तेरे, नवनिध नाम निदान हर के रह। हर रंग रंग रंग अनूपे रह, काहे रे मन मोहे मगने रह। नैनो देख सा दरसे रह, सो पावे जिस लिखत ले रह। रहाओ सेवा सेवो सेवो साध संत चरने रह। बांछो तूर पवित्र करे रह, अठ सठ मज्जन मैल कटे रह। सास सास त्यावो मुख नहीं मोरै। किछ संग ना चाले लाख करो रह, प्रभ जी को नाम अंत पकरो रह। मनसा मान एक

कर कृपा मिले परमानंदा परम मिले स्वामी सुखैगामी इच्छा इच्छ मन की पुनिया बजी बधाई सहजे समाई बहुत दुख न रुनिया ले कंठ लाए सुख दे कहाए।

जानो हम बिरथे कोई मार्ग पंथ बतावे प्रभ का, कहो तिन कहो क्या दिन थे, सब तन मन अर्पो अर्पया रापो कोई मिले प्रभ मिल थे। हर के गुण बहुत बहुत बहुत शोभा, हम तुच्छ कर कर वर्ण थे, हमरी मत वसगत प्रभ तुमरे, जन नानक के प्रभ समर्थ थे, कल्याण महल्ला चौथा। मेरे मन जप हर गुना कथ सुन थई, धर्म अर्थ सब काम मोख है, जन पीछे लग फिर थई रहाओ। सो हर हर नाम ते आवे हर जन, जिस वट भाग मथई, जै दरगह प्रभ लेखा मांगे, तै छूटे नाम ते आए थई। हमरे दुख बहु जन्म जन्म के, दुख हमै मैल लग थई, गुरतार कृपा हर जल ना वाए, सब के लिख पाप कथई। जन कह हृदय अंतर प्रभ स्वामी, जन हर हर नाम भज थई, जह अंति अवसर आए बनत है, तै राखे नाम साथई। जन तेरा जस गावे हर हर, प्रभ हर जप्यो जग।

नथी। जन नानक के प्रभ राखे स्वामी, हम पाथर रख बुढ़ थई कल्याण महला चौथा। हमरी चितवनी हर प्रभ जान है, और कोई निंद करे हर जन की, प्रभता का कहया एक तल नहीं मानना है रहाओ। और सब त्याग सेवा कर अच्युत, जो सब ते ऊंच ठाकर भगवान है। हर सेवा ते काल जोहे ना सके, चरणी आए पवे हर जन। जा कौ राख ले मेरा स्वामी, ता कौ समत दे पै कान। ता कौ कोई अपर ना सके, जा की भगत मेरा प्रभ मान। हर के चोज विडान देख जान, जो खोटा खरा एक निमख पछान। ता ते जन कौ आनंद भया है, रिद सुध मिले खोटे पछतान। तुम हरदा ते समर्थ स्वामी, एक मांगो तुझ पासो हर दान। जन नानक कौ हर कृपा कर दीजै, सद बसै हृदय मुहे हर चरान। कल्याण महला चौथा। प्रभ की जय कृपा निधान, हम हर गुण गावेंगे। हाँ तुमरी करो नित्यास प्रभ, मोहे कब गल लावेंगे रहाओ। हम बारक मुग्ध एआन पिता समझावेंगे, सुत खिन खिन पूल बिगार जगत पित पावेंगे। जो हर स्वामी तुम दे हो, सोई हम पावेंगे। मोहे दूजी नाही ठौर, जिस पै हम जावेंगे। जो हर पावे भगत तिना हर पावेंगे, ज्योति ज्योत में लाए ज्योत रल जावेंगे। हरे आपे होए कृपाल, आप लिव लावेंगे। जन नानक शरण द्वार, हर लाज रखावेंगे। शक्का एक कल्याण पोपाली महला चौथा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पार ब्रह्म परमेश्वर स्वामी, दुख निवारण नारायण। सगल भगत जाचे सुख सागर, पावने दरन हर चिंता मणे रहाओ। दीन दयाल जगदीश दमोदर, हर अंतर जामी गोबिंदे। ते निरपो जिन श्री राम ते आया, गुरमत मुरार हर मुकंदे। जगदीशर चरण सरन जो आए, ते जन पावनित पार परे। भक्त जना की पैज हर राखे, जन नानक आप हर कृपा करे। राग कल्याण महला पंजवा, कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हमारा एह कृपा की जय, आलम करंद चरण कमल स्यो। मन फेर फेर दी जय रहाओ, आन जला स्यो काज ना कछुऐ। हर बूंद चातरक कौ दी जय, बिन मिलबे नाही संतोखा। पेख दर्शन नानक जी जय। कल्याण महला पंजवा, जाचक नाम जाचै जाचै। सर्वतार सर्व के नायक, सुख समूह के दाते रहाओ। केती केती मांगन मांगे, पावनिया सो पाईऐ। सफल सफल सफल दर्शरे, परस परस गुण गाईऐ। नानक तत तत स्यो मिलीऐ, हीरे हीर बिधाईऐ। कल्याण महला पंजवा, मेरे लालन की शोभा। साध नवतन मन रंगी शोभा रहाओ। ब्रह्म महेश सिद्ध मुन इंद्रा, भगत दान जस मंगी। योग ज्ञान ध्यान सेख नागै, सगल जपै तिरंगी। कहो नानक संतन बलिहार है, जो प्रभ के सद संगी। कल्याण महला पंजवा, कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। तेरे मान हर हर मान, नैन बैन श्रवण सुनिए। अंग अंगे सुख प्राण रहाओ। ईत योत दह दिस रवेओ, मेरत ने समान। जत कथा तत पेखिए, हर पुरख पत प्रधान। साध संग भ्रम पै मिटे, कथे नानक ब्रह्म ज्ञान। कल्याण महला पंजवा, गुण नाद तोनिया नंद बेद। कथत सुनत मुन जना, मिल संत मंडली रहाओ। ज्ञान ध्यान मान दान, मन रसक रसन नाम जपत। तै पाप खंडली, जोग जुगत ज्ञान भुगत। सुरत शब्द तत् बेते, जप तप अखंडली। ओत पोत मिल जोत नानक, कछु दुख ना डंडली। कल्याण महला पंजवा,
कौन बेता की कहां करो, तरत ध्यान ज्ञान शस्त्र गया, अजर पद कैसे जरो रहाओ, विष्ण महेश सिद्ध मुन इंद्रा कै दर्शन परो, काहू पै राज काहू पै सुरगा, कोट मदे मुक्त कहो, कहो नानक नाम रस पाई है, साधु चरण गहो कल्याण महला पंजवा। प्राण पत दयाल पुरख प्रभ सखे, गर्भ जोन कल काल जाल, दुख विनाशन हर रखे रहाओ, नाम तारी शरण तेरी, प्रभ दयाल टेक मेरी, अनाथ दीन आसवंत, नाम स्वामी मनै मंत, तुझ बिना प्रभ किशु ना जानू, सर्व युग मैं तुम पछानू, हर मन बसे निस बसरो, गोबिंद नानक आसरो, कल्याण महला पंजवा। मंत्र जापिए भगवान, गुर पूरे सो प्रसन्न पए, सदा सुख कल्याण रहाओ, सर्व कार्य सिद्ध पए, गाए गुण गोपाल, मिर साध संगत प्रभु सिमरे, नाठिया दुखकाल, कर कृपा प्रभ मेरे आ, करो दिन रहन सेव, नानक दास शरणागति, हर पुरख पूर्ण देव, कल्याण महला पंजवा। प्रभ मेरा अंतर जामी जान, कर कृपा पूर्ण परमेसर, निहचल सच शब्द निशान रहाओ, हर बिन आन ना कोई समर्थ, तेरी आस तेरा मंतान, सर्व घटा के दाते स्वामी, देह सो पहरन खान, सुरत मत चतराई शोभा, रूप रंग तन मान, सर्व सुख आनंद नानक, जप राम नाम कल्याण, कल्याण महला पंजवा। हर चरण सरन कल्याण करन, प्रभ नाम पतित पावनो रहाओ, साध संग जपन संग, जमकाल तिस ना खावनो, मुक्त जुगत अनक सुख, हर भगत लवै ना लावनो, प्रभ दर्श लुबद दास नानक, बहुड़ जोन ना तावनो। कल्याण महला चौथा अष्टपदिया एक ओंकार, सतगुर प्रसाद, रामा रम रामो सुन मन पीजै, हर हर नाम अमृत रस मीठा, गुरमत सहजे पीजै रहाओ, काष्ट मैं ज्यो है बैसंतर, मत संजम काढ़ कढ़ीजै, राम नाम है जोत सबाई, तत गुरमत काढ़ लईजै, नौ दरवाज नवे दर फीके, रस अमृत दसवें चुईजै, कृपा कृपा कृपा कर प्यारे, गुरसबदी हर रस पीजै, काया नगर नगर है नीको, विच सबदा हर रस कीजै, रतन लाल अमोल अमोलक, सतगुर सेवा लीजै, सतगुर अगम अगम है ठाकर, पर सागर भगत करीजै, कृपा कृपा कर दीन हम सारंग, एक बूंद नाम मुख।

रस रसक घटक नित पीजै, बसदा सबत दीप है सागर, कड कंचन कर तरीजै। मेरे ठाकर के जन इनो ना बांचै, हर मांगै हर रस दीजै। साकत नर प्राणी सत भूखे, नित भूखन भूख करीजै। तावत ताए ताव है प्रीत माया, लख कोसन कौ बिथ दीजै। हर हर हर हर हर जन उत्तम, क्या उपमा तिन दीजै। राम नाम तुल और ना उपमा, जन नानक कृपा करीजै। कल्याण महला चौथा। राम गुरपारस परस करीजै, हम निर्गुणी मनूर या तफीके, मिल सतगुर पारस की जय रहाओ। स्वर्ग मुक्त बैकुंठ सब बांछै, नित आसा आस करी जय। हर दर्शन के जन मुक्त ना मांगै, मिल दर्शन तृप्त मन तीजै। माया मोह सबल है भारी, मोह कालख दाग लगी जय। मेरे ठाकर के जन अलिप्त है मुक्ते, ज्यो मुर्गाई पंख ना पीजै। चंदन वास पयंगम वेड़ी, के मिलिए चंदन लीजै। काड खड़ग गुर ज्ञान करारा, बिक्षेद शेद रस पीजै। आन आन समदा बहुकीनी, पल बैसंतर पस्म करीजै। महायुगर पाप साक्त नरकी ने, मेरे साधु लुकी दीजै। साधु साधु साध जनि के, जनंतर नाम तरी जय। परस निपरस पय साधु जन, जन हर भगवान दखीजै। साक्त सूत बहु गुरुजी भरिया, क्यों कर तंत नीजै। तंत सूत किशनिक सह नाही, साकत संग ना कीजै। सतगुर साध संगत है नीकी, मिल संगत राम रवीजै। अंतर रतन जिवे हर माणक, गुर कृपा ते लीजै। मेरा ठाकर वड्डा वड्डा है स्वामी, हम क्यों कर मिलै मिलीजै। नानक मेल मिलाए गुरपूरा, जन को पूर्ण दीजै। कल्याण महला चौथा। रामा राम रामो राम रवीजै, साधु साधु साध जनी के, मिल साधु हर रंग की जय रहाओ। जी जंत सब जग है जेता, मन डोलत डोल करी जय। कृपा कृपा कर साध मिलावो, जग थमन कौ थम दी जय। बसदा तला तला सभी ऊपर, मिल साधु चरण रुली जय। अति उत्तम अति उत्तम होवो, सब श्रेष्ठ चरण तल दी जय। गुरमुख जोत भली सिवनी की, आन पानी सख्त भरी जय। मैन दंत निकसै गुरबचनी, सार चब चब हर रस पी जय। राम नाम अन गुरो बहु किया, गुर साधु पुरख मिली जय। गुण राम नाम बिसीरन की है, हर सगल भवन जस दी जय। साधु साधु साध मन प्रीतम, बिन देखे रह ना सकी जय। ज्यों जल मीन जलंग जल प्रीत है, खिन जल बिन फूट मरी जय।

जागत बिकसै मूठो अंधा गल फाही सिर मारे तंदा आसा आवै मन सा जाए उर्जी ताणी किशना बसाए। जागस जीवन जागण हारा सुख सागर अमृत भंडारा रहाओ कहो ना बूझै अंध ना सूझै पूंडी कार कमाई आपे प्रीत प्रेम परमेसर करमी मिलै वडाई। दिन दिन आवै तिल तिल शीजै माया मोह कटाई बिन गुर बूढ़ो ठौर ना पावै जब लग दूजी राई। अहनस जिया देख संभाले सुख दुख प्रभ कमाई कर्महीन सच भीखिया मांगै नानक मिलै वडाई। प्रभाती महला पहला मस्ट करो मूर्ख जग कहिया अधिक बको तेरी लिव रहिया। भूल चूक तेरा दरबार नाम बिना कैसे आचार ऐसे झूठ मुठे संसारा निंदक निंदा मुझे प्यारा रहाओ। जिस निंदै सोई बिद जाने गुर कै सबदे दर निशाने कारण नाम अंतरगत जाने जिसनो नजर करे सोई बिद जाने। मैं मैल उजल सच सोए ऊतम आख न उच्चा होए मन मुख खूल महा बिख खाए गुरमुख होए सोरा चैन आए अंधो बोलो मुग्ध गवार हीणो नीच बुरो बुरो यार। नी तन कहो तन नाम प्यार एहो तन सार होर बिखिया शार उस्तत निंदा शब्द विचार जो देवै तिसको जयकार। तू बख्शै जात पत होए नानक कह कहा वै सोए प्रभाती महला पहला। खाया मैल वधाया पैदा कर की हान बक बकवा चलाया बिना मैं बिख जान। बाबा ऐसा बिखम जाल मनवासिया बिबल चाग सहज परगासिया रहाओ। बिख खाना बिख बोलना बेकी कार कमाए जमदर बादे मारी है छूट सच है नाए। जिव आया तिव जाए सी किया लिख लै जाए मन मुख मूल गवाया दरगह मिलै सजाए। जग खोटो सच निर्मलाओ गुर सबदी विचार ते नर विरले जानिया जिन अंतर ज्ञान मुरार। अजर जरै नीजर चरै अमर आनंद स्वरूप नानक जल कौ मीन सै थै पावै राखो प्रीत। प्रभाती महला पहला। गीत नाद हरख चतराई रह सरंग फुरमाए सकाई पैनन खाना चीतना पाई सात सहज सुख नाम वसाई। क्या जाना क्या करै करावै नाम बिना तन किशना सुखावै रहाओ। जोग बिनोद स्वाद आनंदा मत सत पाए भगत गोबिंदा कीर्त कर्म कार निज संदा अंतर रवतो राज अरविंदा। प्रयो प्रयो प्रीत प्रेम और तारी दीना नाथ पियो बनवारी आन दिन नाम दान बतकारी त्रिपत तरंग तत् बिचारी। अकथो कथो क्या मैं मोर अकथो कथो क्या मैं जोर भगत करी कराए मोर अंतर वसै चूकै मैं मोर किसे भी दूजा नहीं होर। गुर का शब्द महारस मीठा ऐसा अमृत अंतर डीठा जिन चाख्या पूरा पद होए नानक त्राप्यो तन सुख होए। प्रभाती महला पहला। अंतर देख शब्द मन मानिया अवर न रंग नहारा एनस जिया देख संभाले तिस ही की सरकारा। मेरा प्रभ रांकण अतरूढ़ो दीन दयाल प्रीत मन मोहन आतरस लाल सगूड़ो रहाओ। ऊपर कूप गगन पनिहारी अमृत पीवन हारा जिसकी रचना सोबित जाने गुरमुख ज्ञान विचारा। पसरी किरण रस कमल बेगासे संस्कार सूर समाया काल विध्वंस मनसा मन मारी गुरप्रसाद प्रपाया। आत रस रंग च लूलै राती दूजा रंग ना कोई नानक रसन रसाए राते रव रया प्रभ सोई। प्रभाती महला पहला। बारह मैं रावल खप जावै चौछे मैं सन्यासी जोगी कापड़िया सिर खूथे बिन सब दै गल फासी।
ਸ਼ਬਦ ਰਤੇ ਪੂਰੇ ਬੈਰਾਗੀ ਓ ਹਠ ਹਸਤ ਮੈਂ ਭੀਖਿਆ ਜਾਚੀ ਏਕ ਭਾਏ ਲਿਵਲਾਗੀ ਰਹਾਓ। ਬ੍ਰਹਮਣਵਾਦ ਪੜੈ ਕਰ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨੀ ਕਰਮ ਕੁਰਾਏ ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਕਿਛ ਸੂਝੈ ਨਾਹੀ ਮਨਮੁਖ ਵਿਛੜ ਦੁਖ ਪਾਏ। ਸ਼ਬਦ ਮਿਲੇ ਸੇ ਸੁਚਾਚਾਰੀ ਸਾਚੀ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨੇ ਅਨ ਦਿਨ ਨਾਮ ਰਤਨ ਲਿਵ ਲਾਗੇ ਜੋ ਜੁਗ ਸਾਜ ਸਮਾਨੇ। ਸਗਲੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਸੁਚ ਸੰਜਮ ਜਪ ਤਪ ਤੀਰਥ ਸ਼ਬਦ ਵਸੇ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਮਿਲਾਇਆ ਦੁਖ ਪ੍ਰਾਹਿਤ ਕਾਲ ਨਸੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸੰਤਾਂ ਕੀ ਰੇਣ ਸਾਧ ਜਨ ਸੰਗਤ ਹਰ ਕੀਰਤ ਤਰਤਾਰੀ ਕਹਾਂ ਕਰੈ ਬਪਰਾ ਜਮ ਡਰ ਪੈ ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦੈ ਮੋਰਾਰੀ। ਜਲ ਜਾਓ ਜੀਵਨ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਹਰ ਜਪ ਜਾਪ ਜਪੋ ਜਪ ਮਾਲੀ ਗੁਰਮੁਖ ਆਵੈ ਸਾਧ ਮਨਾ ਰਹਾਓ। ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਚ ਸੁਖ ਜਾ ਕਹੋ ਕਿਆ ਤਿਸ ਉਪਮਾ ਕਹੀਐ ਲਾਲ ਜਵੇਹਰ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਖੋਜਤ ਗੁਰਮੁਖ ਲਈਐ ਚੀਨੈ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਧਨ ਸਾਚੋ ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਵ ਲਾਵੈ ਨਿਰਾਲੰਬ ਨਿਰਹਾਰ ਨਿਹ ਕੇਵਲ ਨਿਰਭਉ ਤਾੜੀ ਲਾਵੈ। ਸਾਇਰ ਸ਼ਬਦ ਭਰੇ ਜਲ ਨਿਰਮਲ ਉਲਟੀ ਨਾਮ ਧਰਾਵੈ ਬਾਹਰ ਜਾਤੋ ਠਾਕ ਰਹਾਵੈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਹਿ ਸਮਾਵੈ। ਸੋ ਗਿਰਹੀ ਸੋ ਦਾਸੋ ਦਾਸੀ ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਪਛਾਨਿਆ ਨਾਨਕ ਕਹੈ ਅਵਰ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਰਾਗ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਚੌਪਦੇ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਰਲਾ ਕੋਈ ਬੂਝੈ ਸਬਦੇ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਸੱਚ ਰਹਿ ਲਿਵਲਾਈ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੋ ਜਨ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਮਨ ਅਸਥਿਰ ਹੋਵੈ ਅੰਦਨ ਹਰਸ ਰਹਿਆ ਅਗਾਈ ਰਹਾਓ। ਅਨ ਦਿਨ ਭਗਤ ਕਰੋ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਇਸ ਯੁਗ ਕਾ ਲਾਹਾ ਭਾਈ ਸਦਾ ਜਨ ਨਿਰਮਲ ਮੈਲ ਨ ਲਾਗੈ ਸੱਚ ਨਾਮ ਚਿਤ ਲਾਈ। ਸੁਖ ਸਿੰਗਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿਖਾਇਆ ਨਾਮ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਅਖੁੱਟ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਕਦੇ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੈ ਸਦਾ ਹਰ ਸੇਵੋ ਭਾਈ। ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਵੈ ਤਿਸ ਵਸੈ ਮਨ ਆਈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸਦਾ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਦਿਖਾਈ। ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਨਿਰਗੁਣੀ ਆਰੇ ਕੋ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਸਵਾਮੀ ਆਪੇ ਲਹਿ ਮਿਲਾਈ ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸਬਦੇ ਦੇਹੋ ਬੁਝਾਈ। ਹਰ ਜੀਓ ਤੁਧ ਵਿਟੋ ਬਲ ਜਾਈ ਤਨ ਮਨ ਅਰਪੀ ਤੁਧ ਆਗੈ ਰਾਖੋ ਸਦਾ ਰਹਾ ਸਰਨਾਈ ਰਹਾਓ। ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਰੱਖ ਸਵਾਮੀ ਹਰ ਨਾਮੋ ਦੇਹ ਵਡਿਆਈ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਭਾਣਾ ਜਾਪੈ ਅੰਦਨ ਸਹਿ ਸਮਾਈ ਤੇਰੇ ਭਾਣੈ ਭਗਤ ਜੇ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਮਿਲਾਈ ਤੇਰੇ ਭਾਣੈ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਗਨ ਬੁਝਾਈ। ਜੋ ਤੂੰ ਕਰੈ ਸੋ ਹੋਵੈ ਕਰਤੇ ਅਵਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ ਨਾਨਕ ਨਾਮੈ ਜੇਵੜੇ ਅਵਰ ਨਾ ਦਾਤਾ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈ। ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰਸਾ ਲਹਾਇਆ ਜਿੰਨਾ ਤਿਨ ਸਲਾਹੇ ਹਰ ਜਾਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮ ਗਿਆ ਹੈ ਦੂਜਾ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਤਾ। ਹਰ ਜੀਓ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੋਈ ਤੂੰ ਜਪੀ ਤੁਧੈ ਸਾ ਲਾਹੀ ਗਤ ਮਤ ਤੁਝ ਤੇ ਹੋਈ ਰਹਾਓ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਾ ਲਾਹਨ ਸੇ ਸਾਧ ਪਾਏ ਨ ਮਿੱਠਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰ ਸਦਾ ਮਿੱਠਾ ਕਦੇ ਨਾ ਫੀਕਾ ਗੁਰਸਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰ। ਜਿਨ ਮਿੱਠਾ ਲਾਇਆ ਸੋਈ ਜਾਣੈ ਤਿਸ ਵਿਟੋ ਬਲ ਜਾਈ ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਹੀ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਹੈ ਦਾਤਾ ਜੋ ਇੱਛੈ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰਸਬ ਦੀ ਸਚ ਪਾਏ। ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਜੋ ਤੇਰੀ ਸਰਨਾਈ ਹਰ ਜੀਓ ਤਿੰਨ ਤੂੰ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਤੋ ਜੇਵੜ ਮੈਂ ਅਵਰ ਨਾ ਸੂਜੈ ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਹੋਗ। ਹਰ ਜੀਓ ਸਦਾ ਤੇਰੀ ਸਰਨਾਈ ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰੱਖੋ ਮੇਰੇ ਸਵਾਮੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਰਹਾਓ।
जो तेरी शरण आई हर जियो, तिन की करें प्रतपाल, आप कृपा कर रखो हर जियो, पोहे ना सके जमकाल, तेरी शरण आई सच्ची हर जियो, ना यो कटे ना जाए, जो हर छोड़ दूजे पाए लागे, ओ जम्मे ते मर जाए, जो तेरी शरण आई हर जियो, तिन्ना दुख पू किश नाहे, नानक नाम सलाहे सदा तू सच्चे शब्द समाहे, प्रभाती महला तीजा, गुरमुख हर जियो सदा ते आवो, जब लग जी प्राण, गुर शब्दी मन निर्मल होवा, चूका मन अवमान, सफल जन्म तिस प्राणी केरा, हर कै नाम समान, मेरे मन गुर की सिख सुनी जय, हर का नाम सदा सुखदाता, सहजे हरस की जय रहाओ, मूल पछाण ते निज कर वासा, सहजे ही सुख होई, गुर कै शब्द कमल पर गासिया, हो मैं दुर्मत खोई, सब नामे एको सच वरते, विरला बुझे कोई, गुरमति मन निर्मल होवा, अमृत तत्व खाने, हर का नाम सदा मन वसिया, विच मन ही मन माने, सद बलिहारी गुर अपने विटों, जित आत्म राम पछाने, मानस जन्म सदगुरु ना सेवया, बिरथा जन्म गवाया, नदर करे ता सदगुर मेले, सहजे सही सुमाया, नानक नाम मिलै वडियाई, पूरे भगत आया, प्रभाती महला तीजा, आपे पांत बनाए बहुरंगी, सिष्टियो पाए प्रभ खेल किया, कर कर वेखे करे कराए, सर्ब जियान और इक दिया, कली काल में रवे आराम, कड़कड़ पूर रहा प्रभ एको, गुरमुख प्रगट हर हर नाम रहाओ, गुप्ता नाम वरते विच कल जुग, कटकट हर पर पूर रहया, नाम रतन तिन्ना हिरदय प्रगटिया, जो गुर सरनाई पज पया, इंद्री पंच पंचे वसे आने, खिमा संतोख गुरमत पावे, सो तन तन हर जन वड पूरा, जो पह बै राग हर गुण गावे, गुरते मोह फेरे जे कोई, गुर का कहया ना चित तरै, कार्याचार बहु संपो संचय, जो किश करे सो नरक परै, एको शब्द एको प्रभ वरते, सब एक स्ते उत्पत चले, नानक गुरमुख मेल मिलाए, गुरमुख हर हर जाए रलै, प्रभाती महला तीजा, मेरे मन गुर अपना साला है, पूरा भाग हुआ मुख मस्तक, सदा हर के गुण गाहे रहाओ, अमृत नाम भोजन हर दे, कोट मदे कोई विर ला ले, जिसनों अपनी नजर करे, गुर के चरण मन माहे वसाए, दुख नेरा अंदरों जाए, आपे साचा ले मिलाए, गुर की बाणी सुन लाए प्यार, व्यथे उथे हो आधार, आपे देवे सृजनहार, सच्चा मनाए अपना पाणा, सोई भगत सुगड़ सुजाणा, नानक तिसकै सतकुरबाणा, प्रभाती महला चौथा, विभास एक ओंकार, सतगुर प्रसाद, रसक रसक गुण गावै गुरमत, लिव उन्मन नाम लगान, अमृत रस पिया गुर शब्दी, हम नाम विटों कुर्बान, हमरे जग जीवन हर प्राण, हरि उतमरे अंतर पायो, गुरमंत दियो हर कान रहाओ, आवो संत मिलो मेरे पाई, मिल हर हर नाम वखान, कित बिद क्यों पाई है प्रभ अपना, मोको करो उपदेश हर दान, सत संगत में हर हर वसिया, मिल संगत हर गुण जान, वड्डे भाग सत संगत पाई, गुर सतगुर परस भगवान, गुण गावे प्रभ अगम ठाकुर के, गुण गाए रहे हैरान, जन नानक कहो गुर कृपा तारी, हर नाम दियो खिन दान, प्रभाती महला चौथा, उगवै सूर गुरमुख हर बोले, सब रहन संभाले हर गाल, हमरे प्रभ हम लोच लगाई,
हम करह प्रभु हर पाल, मेरा मन साधु तुर रवाल। हर हर नाम दृढ़ायो गुर मीठा, गुर पग चारो हम बाल रहाओ। साकत कहो दिन रहन अंधारी, मोहे फाथे माया जाल। खिन पल हर प्रभु हृदय न वस्यो, रिन बांधे बहु बिदबाल। सत संगत मिल मत बुद्ध पाई, हो छूटे ममता जाल। हर नामा हर मीठ लगाना, गुर किए शब्द निहाल। हम बारक गुर अगम गोसाई, गुर कर कृपा प्रतपाल। बिख पौ जल डुबदे काढ लिहो प्रभ, गुर नानक बाल गोपाल। प्रभाती महला चौथा। एक खिन हर प्रभ कृपा तारी, गुण गाए रसक रसीक। गावत सुनत दो पहे मुक्ते, जिन्ना गुरमुख खिन हर पीक। मेरा मन हर हर नाम, मेरा मन हर हर राम नाम रस टीक। गुरमत नाम शीतल जल पाया, गुरमुख नाम शीतल जल पाया। हर हर नाम पिया रस चीक रहाओ, जिन हर हृदय प्रीत लगानी। तिन्ना मस्तक उजल टीक, हर जन सोभा सब जग उपर। ज्यों विच उड़वा ससकीक, जिन हर हृदय नाम न वसियो। तिन सब कारज फीक, जैसे सिंगार करे देह मानुख। नाम बिना निकटे नक कीक, कट कट रमैया रमत राम राय। सब वरतै समय ईक, जन नानक कव हर कृपा तारी। गुर बचन ते आयो करी मीक, प्रभाती महला चौथा। अगम दयाल कृपा प्रभ तारी, मुख हर हर नाम कहे। पतत पावन हर नाम ते आयो, सब किल विख पाप लहे। जप मन राम नाम रव रहे, दीन दयाल दुख पंजन गायो। गुरमत नाम पदार्थ लहे रहाओ, काया नगर नगर हर बसयो। मत गुरमत हर हर सहे, शरीर सरोवर नाम हर प्रगटयो। कर मंदिर हर प्रभ लहे, जो नर परम परम उदयाने। ते सागत मूड मोहे, ज्यो मृग नाभ बसे बास बसना। परम प्रमयो चार गहे, तो वड अगम अगाध बोध प्रभ। मत देवो हर प्रभ लहे, जन नानक कहो गुर हाथ सिर तरयो। हर राम नाम रव रहे, प्रभाती महला चौथा। मन लागी प्रीत राम नाम, हर हर जप्यो हर प्रभ वडफा। सतगुर बचन सुखाने हियर, हर तारी हर प्रभ कृपफा। मेरे मन पज राम नाम हर निमखफा, हर हर दान दियो गुर पूरै। हर नामा मन तन बसफा रहाओ, काया नगर वसियो कर मंदर। जप सोभा गुरमुख करपफा, हलत पलत जन पहे सुहेले। मुख उज्जल गुरमुख तरफा, अनपव हर हर हर लिव लागी। हर उर तारयो गुरनिमुखफा, कोट कोट के दोख सब जन के। हर दूर किए एक पलफा, तुमरे जन तुम ही ते जाने। प्रभ जान्यो जनते मुखफा, हर हर आप तरयो हर जन में। जन नानक हर प्रभ एक फा, प्रभाती महला चौथा। गुर सतगुर नाम दृढ़ायो, हर हर हम मोए जीवे हर जप बा। तन तन गुरु गुर सतगुर पूरा, बिख डुबदे बाह दे कडबा। जप मानो राम नाम अर्धम्बा, उपजंपो पाए ना पाइए कतहूं। गुरपूरै हर प्रभ लभ रहाओ, राम नाम रस राम रसायण। रस पिया गुरमत रसबा, लोह मनूर कंचन मेर संगत। हर उर तारियो गुर हरबा, हाँ मैं बिखिया नित लोभ लुभाने। पुत कलत मोहे लुभबा, तिन पग संतन सेवे कभू। ते मनमुख पूंबर परबा, तुमरे गुण तुम ही प्रभ जानो। हम परे हार तुम सरनबा,
ज्यों जानौ त्यों राखो स्वामी, जन नानक दास तुम नवाशका एक। प्रभाती विभास पड़ताल महला चौथा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जप मानो हर हर नाम निधान, हर दरगह पावे मान, जिन जपया ते पार प्राण रहाओ। सुन मानो हर हर नाम कर ध्यान, सुन मानो हर कीर्त अड़सठ मजान। सुन मन गुरमुख पावे मान, जप मन परमेश्वर प्रधान, खिन खोवे पाप कोटान। मिल नानक हर भगवान, प्रभाती महला पंजवां विभास, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मन हर किया तन सब साजिया, पंच तत् रजोत निवाजिया, सहजा धरत बर्तन कौ पानी, निमख ना विसारो सेवो सारंग पानी। मन सतगुर सेव होए परम गते, हर सोग ते रहे निरारा, ता तू पावे प्राण पते रहाओ। कापड़ भोग रस अनक पुंचाए, मात पिता कुटुंब सगल बनाए, रिजक समाहे जल थन मीत, सो हर सेवो नीता नीत। तहां सखाई जै कोई ना होवै, कोट अपराध एक खिन में तोवै। दात करे नहीं पछोतावै, एका बख्स फिर बहुर ना बुलावै। किरत संजोगी पाया पाल, साध संगत में बसे गोपाल, गुर मिले आए तुमरे द्वार, जन नानक दर्शन देहो मरार। प्रभाती महला पंजवां, प्रभु की सेवा जन की सोभा, काम क्रोध मिटे तिस लोभा, नाम तेरा जन कै पंडार, गुण गावै प्रभु दर्श प्यार। तुमरी भगत प्रभु तुम्हें जनाई, काट जेवरी जन लिए छडाई रहाओ। जो जन दाता प्रभ कै रंग, तिन सुख पाया प्रभ कै संग। जिस रस आया सोई जान, पेख पेख मन में हैरान। सो सुखिया सब ते उत्तम सोए, जा कै हृदय वस्या प्रभ सोए। सोई निश्चलिया वै ना जाए, अंदर प्रभ के हर गुण गाए। ता को करो सगल नमस्कार, जा कै मन पूर्ण निरंकार। कर कृपा मोहे ठाकुर देवा, नानक उदरे जन की सेवा। प्रभाती महला पंजवां, गुण गावत मन होए आनंद, आठ पैर सिमरो भगवंत। जा कै सिमरन कलमल जाहे, तिस गुर की हम चरनी पाहे। सुमत देवो संत प्यारे, सिमरो नाम मोहे निस्तारे रहाओ। जिन गुर कहया मार्ग सीधा, सगल त्याग नाम हर गीदा। तिस गुर कै सदा बल जाइय, हर सिमरन जिस गुर ते पाइय। बूढ़त प्राणी जिन गुरै तराया, जिस प्रसाद मोहे नहीं माया। हालत पलत जिन गुरै सवारिया, तिस गुर ऊपर सदा हों वारिया। महामुगते किया ज्ञानी, गुर पूरे की कथ कहानी। पार ब्रह्म नानक गुरदेव, वड़े पाग पाई है हर सेव। प्रभाती महला पंजवां, सगले दुख मिटे सुख दिए, अपना नाम जपाया। कर कृपा अपनी सेवा लाए, सगला दुर्त मिटाया। हम बारक शरण प्रभ दयाल, अवगण काट किए प्रभ अपने, राख लिए मेरे गुर गोपाल रहाओ। ताप पाप बिनसे खिन पीतर, पै कृपाल गुसाई। सास सास पार ब्रह्म आराधी, अपने सतगुर कै बल जाई। अगम गोचर बेअंत स्वामी, ताका अंत ना पाई है। लाहा खाट हुई है तनवंता, अपना प्रभु त्याई है। आठ पहर पार ब्रह्म त्याई, सदा सदा गुण गाया। कहो नानक मेरे पूरे मनोरथ, पार ब्रह्म गुर पाया। प्रभाती महला पंजवां, सिमरत नाम किलबिख सब नासे, सच नाम गुरदीनी रासे। प्रभ की दरगह सोभावंते, सेवक सेव सदा सोहंते। हर हर नाम जपो मेरे भाई, सगले रोग दोख सब बिनसै। अज्ञान अंधेरा मनते जाई रहाओ। जन्म मरण गुर राखे मीत, हर के नाम स्यों लागी प्रीत।
कोट जन्म के गए कलेस, ज्योतिष पावे सुफल होस। तिस गुर कौ हो सदा बल जाई, जिस प्रसाद हर नाम ते आई, ऐसा गुर पाई है वडभागी, जिस मिल ते राम लिव लागी। कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी, सगल घटा के अंतरयामी, आठ पहरे अपनी लिव लाए, जन नानक प्रभ की शरण आए। प्रभाती महला पंजवा, कर कृपा अपने प्रभ की, हर का नाम जपन कौ दिए, आठ पहर गुण गाए गोबिंद, पै बिन से उतरी सब चिंद। उबरे सदगुर चरनी लाग, जो गुर कहे सोई पल मीठा, मन की मत त्याग रहाओ। मन तन वस्या हर प्रभ सोई, कल कलेस कल कलेस किश विघन ना होई। सदा सदा प्रभ जी कै संग, उतरी मैल नाम कै रंग, चरण कमल स्यों लागो प्यार, बिन से काम क्रोध हंकार। प्रभ मिलन का मार्ग जाना, पाए भगत हर स्यों मन माना, सुन सज्जन संत मीत सुहेले, नाम रतन हर अगे अतोले। सदा सदा प्रभ गुण निध गाई है, कहो नानक वडभागी पाई है। प्रभाती महला पंजवा, से धनवंत से ही सच साहा, हर की दरगह नाम विसाहा, हर हर नाम जपो मन मीत, गुरपुरा पाईए वडभागी, निर्मल पूर्ण रीत रहाओ। पाया लाभ वजी वधाई, संत प्रसाद हर के गुण गाई, सफल जन्म जीवन परवान, गुर प्रसादी हर रंग मान। बिन से काम क्रोध अहंकार, नानक गुरमुख उत्तर सपार। प्रभाती महला पंजवा, गुरपुरा पूरी तां की कला, गुर का शब्द सदा सद अटला, गुर की बाणी जिस मन वसै, दुख दर्द सब तां का नसै। हर रंग राता मन राम गुण गावै, मुक्तो साधु तुरी नावै रहाओ। गुर प्रसादी उतरे पार, पाओ परम बिन से बेकार, मन तन अंतर बसे गुर चरना, निरपै साध परे हर सरना। आनंद सहज रसूक नेरे, दुश्मन दुख ना आवै नेरे, गुर पूरा अपने कर राखे, हर नाम जपत किल बिख सब लाथे। संत साजन सिख पए सुहेले, गुर पूरा प्रभ स्यों लै मेले। जन्म मरण दुख पहा काटिया, कहो नानक गुर पड़दा ढाकिया। प्रभाती महला पंजवा, सतगुर पूरा नाम दिया, आनंद मंगल कल्याण सदा सुख, कार्ज सगला रास्थिया रहाओ। चरण कमल गुर के मन उठे, दुख दर्द परम बिन से झूठे। नित उठ गावो प्रभ की बाणी, आठ पैर हर सिमरो प्राणी, घर बाहर प्रभ सबनी थाई, संग सहाई जय हो जाई। दोय कर जोड़ करी अरदास, सदा जपे नानक गुणतास। प्रभाती महला पंजवा, पार ब्रह्म प्रभ सूड़ सुजा।

सर्वसिद्ध कल्याण पूर्ण होए सगल काम। हर को नाम जपिए नीत, काम क्रोध अहंकार बिनसै लगे कै प्रीत रहाओ। नाम लागे दुख पागे सरण पालन जोग, सदगुर पेटे जमना तेटे जिस तुर होवे संजोग। रैन दिन सत्याय हर हर तजो मन के परम, साध संगत हर मिले जिसे पूर्ण कर्म। जन्म जन्म बिखाद बिन से राख लीने आप, मात पिता मीत भाई जन नानक हर हर जाप। प्रभाती महला पंजवां विभास पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राम राम राम राम जाप, कल कलेस लो मोह बिरस जाए अहंताप रहाओ। आप त्याग संत चरण लाग, मन पवित्र जाहे पाप। नानक बारक कशु ना लाग जाने, राखण को प्रमाई बाप। प्रभाती महला पंजवा, चरण कमल सरन टेक। ऊच मूच बेअंत ठाकर, सर्व ऊपर तू ही एक रहाओ। प्राण आधार दुख बिदार, दैन हार बुद्ध विवेक। नमस्कार रखन हार, मन आराध प्रभु मेक। संत रेण करो मज्जन, नानक पावे सुख अनेक। प्रभाती अष्टपदियां महला पहला विवास एक ओंकार सतगुर प्रसाद। दुबदा बौरी मन बौराया, झूठा लालच जन्म गवाया। लपट रही फन बंद ना पाया, सतगुर राखे नाम दरड़ाया। ना मन मरे ना माया मरे, जिन किश किया सोई जाने। शब्द विचार पौ सागर तरे रहाओ। माया संच राजे हंकारी, माया साथ न चले प्यारी। माया ममता है बहुरंगी, बिन्ना मैं को साथ न संगी। जो मन देखे पर मन तैसा, जैसी मनसा तैसी दशा। जैसा कर्म तैसी लिव लावे, सदगुर पूछ सहज कर पावे। राग नाद मन दूजे पाए, अंतर कपट महा दुख पाए। सतगुर पेटे सोजी पाए, सच्चे नाम रहे लिवलाए। सच्चे शब्द सच कमावे, सच्ची बाणी हर गुण गावे। निकरवा सिमर पद पावे, तांदर सच्चे सोभा पावे। गुर सेवा बिन भगत ना होई, अनेक जतन करे जे कोई। हमे मेरा सबदे खोई, निर्मल नाम वसे मन सोई। इस जग में शब्द करनी है सार, बिन शब्द होर मोह गुबार। शब्दे नाम रखे और तार, शब्दे गत मत मुख द्वार। अवर नाही कर देखण हारो, साचा आप अनूपया पारो। राम नाम उत्तम गत होई, नन खोज लह जन कोई। प्रभाती महला पहला, माया मोहे सगल जग छाया। कामण दे काम लोबाया, सुत कंचन संहेत वधाया। सब किछ अपना इक राम पराया, ऐसा जाप जप

हो जप माली, दुख सुख पर हर भगत निराली रहाओ। गुण निदान तेरा अंत ना पाया, साज शब्द तुझ माहे समाया। आवा गौण तुदया प्रचाया, सही भगत जिन सच चित लाया। ज्ञान ध्यान नर हर निर्वाणी, बिन सतगुर भेटे कोई न जानी। सगल सरोवर जो समाणी, आनंद रूप विटो कुरबाणी। पाओ भगत गुरमति पाए, हम मैं विचों शब्द जलाए। तावत रखे ठाकर हाए, सच्चा नाम मन वसाए। बिस्म विनोद रहे परमादी, गुरमत मान्या एक लिव लागी। देख निवारिया जल मैं आगी, सो बूझे होवे वड भागी। सतगुर सेवे परम चुकाए, अंदर जागे सच लिव लाए। एको जाने अवर ना कोए, सुखदाता सेवे निर्मल होए। सेवा सुरत शब्द विचार, जप तप संजम हो मैं मार। जीवन मुक्त जा शब्द सुनाए, सच्ची रहत तो सच्चा सुख पाए। सुखदाता दुख मिटन हारा, अवर ना सू जिस बीजी कारा। तन मन तन हरे आगे राखिया, नानक कह महारस चाखिया। प्रभाती महला पहला, निवली कर्म भयंगम पाठी। रेचक पूरक कुंभ कर, बिन सतगुर के सोजी नाही। परमे पूला बूड मर, अंधा परया पर परत होवे। अंतर की मलक दे नाल है, ना बिना फोकट सब कर्मा। ज्यो बाजी गर परम पुल, खट कर्म नाम निरंजन सोई। तू गुण सागर अब गुण मोही रहाओ। माया तंदा तावणी, दुर्मतकार बेकार। मूर्ख आप गणाएंदा, बूझ न सकै कार। मनसा माया मोहनी, मनमुख बोल खुवार। मज्जन झूठा चंडाल का, फोकट चार सिंगार। झूठी मन की मत है, करनी बाद विवाद। झूठे विच अहंकरण है, खसम ना पावे साध। बिन नामे होर कमावना, फिका आवे साध। दुष्टि सभा विगुची है, बिखवाती जीवन बाद। ए परम पूले मरो ना कोई, सतगुर सेव सदा सुख होई। बिन सतगुर मुक्त कने ना पाई, आवे जाहे मरे मर जाई। एहो शरीर है त्रैगुण धात, इसनो व्यापै सोग संताप। सो सेवहो जिस माई ना बाप, विचों चूकै तिसना आर्याप। जै जै देखा तै तै सोई, बिन सतगुर पेटे मुक्त ना होई। हिरदै सच है करनी सार, होर सब पाखंड पूज खुवार। दुबदा चूकै

करनी कीर्त गुरमत सार, संत सभा गुण ज्ञान विचार। मन मारे जीवत मर जान, नानक नदरी नदर पछाण। प्रभाती महला पहला दखनी, गौतम तपा अहल्या स्त्री। तिस देख इंद्र लोभ आया, सहस शरीर चहन पग हुए। तामन पछोताया, कोई जान ना पूले पाई। सो पूले जिसया पुलाए, बुझे जिसे बुझाई रहाओ। तिन हरिचंद पृथ्वी पत राजा, कागद कीम ना पाई। अवगुण जाने ता पुन करे, क्यों क्यों ने खास बिकाई। करो अढ़ाई धरती मांगी, बावन रूप बहाना। क्यों पयाल जाए क्यों छलिया, जेबल रूप पछाना। राजा जनमेजा दे मती, बर्ज प्यास पड़ाया। तिन कर जग अठारह काए, कीर्तना चले चलाया। गणतना गणी हुक्म पछाणा, बोली पाए सुबाई। जोकिश वरतै तुदै सलाही, सब तेरी वड्याई। गुरमुख लिप तो लेप कदे ना लागे, सदा रह सरनाई। मनमुख मुगध आगे चेतै नाही, दुख लागे पछताई। आपे करे कराए करता, जिन एह रचना रचियै। हर अवमान न जाई जियो, अवमाने पै पचियै। भुलण विच किया सब कोई, करता आप ना भुलै। नानक सच नाम निस्तारा, को गुर प्रसाद या कुलै। प्रभाती महला पहला, आखण सुनना नाम आधार। तंदा छुट गया बेकार, ज्यो मनमुख दूजे पत खोई। बिन नावै मैं अवर ना कोई, सुन मन अंधे मूर्ख गवार। आवत जा तो लाज नहीं लागै, बिन गुर बूढ़े बारो बार रहाओ। इस मन माया मोहे बिनास, तुर हुक्म लिखिया ता कहिए कास। गुरमुख विरला चीने कोई, ना बेहूना मुक्त ना होई। प्रम प्रम डोले लख चौरासी, बिन गुर बूझे जमकी फासी। एहो मनुआ खिर खिरी उपयाल, गुरमुख छूटे नाम समाल। आपे सदे ढिल ना होए, शब्द मरै सहला जीवै सोए। बिन गुर सोजी किसै ना होए, आपे करै करावै सोए। झगड़ चुकावै हर गुण गावै, पूरा सतगुर सहि समावै। एहो मन डोलत तौ ठहरावै, सच करनी कर कार कमावै। अंतर जूठा क्यों सोच होए, शब्दी धोवै विरला कोए। गुरमुख कोई सच कमावै, आवन जाना ठाक रहावै। पाओ खाना पीना सुखसार, हर जन संगत पावै पार। सच बोलै बोलावै प्यार, गुर का शब्द करनी है सार। हर जस कर्म धर्म पत पूजा, काम क्रोध अग्नि में पूंजा। हर रस चाखिया तौ मन पीजा, प्रणवत नानक वरना दूजा। प्रभाती महला पहला, राम नाम जप यंत्र पूजा। गुर शब्द विचार अवर नहीं दूजा। एको रव रहया सब ठाई, अवर ना दिसै किस पूज चढ़ाई रहाओ। मन तन आगे जियड़ा तुद पास, जो पावै तो रखो अरदास। सच जेहवा हर रसन रसाई, गुरमत छूटस प्रभ सरनाई। कर्म धर्म प्रभ मेरे किए, नाम वढाई सिर कर्मा किए। सतगुर कहवा चार पदार्थ, तीन समाए एक कृतार्थ। सतगुर दिए मुक्त ध्याना, हर पाचीन पय परदाना। मन तन शीतल गुरबूझ बुझाई, प्रभ निवाजे किन कीमत पाई। कहो नानक गुरबूझ बुझाई, नाम बिना गत किने ना पाई। प्रभाती महला पहला, एक तुर बख्श लय गुरपूरै। सच्ची बणत मनाई, हर अंगरा ते सदा रंग साचा। दुख विसरे पथ पाई, झूठी दुरमत की चतराई। बिरसत बार न लागै काई रहाओ। मानमुख कहो दुख दर्द व्यापस,
ਮਨ ਮੁਖ ਦੁੱਖ ਨਾ ਜਾਈ, ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਦਾਤਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਤਾ, ਮੇਲ ਲੈ ਸਰਨਾਈ। ਮਨ ਮੁਖ ਤੇ ਆਪ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਵਸ, ਹਮੈ ਪਚੈ ਦੇਵਾਨੇ, ਇਹੋ ਮਨੁਆ ਖਿਨੀ ਉਪਯਾਲੀ, ਜਬ ਲਗ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਭੂਖ ਪਿਆਸਾ ਜਗ ਪਿਆ, ਤਿਪਤ ਨਹੀਂ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜ ਮਿਲੈ ਸੁਖ ਪਾਈਐ, ਦਰਗਹਿ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ। ਦਰਗਹਿ ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ ਇੱਕ ਆਪੇ, ਨਿਰਮਲ ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਆਪੇ ਸੁਰਤਾ ਸੱਚ ਵਿਚਾਰਸ, ਆਪੇ ਬੂਝੈ ਪਨ ਨਿਰਬਾਣੀ। ਜਲ ਤਰੰਗ ਅਗਨੀ ਪਵਨੈ ਫੁਨ, ਤ੍ਰੈਮਲ ਜਗ ਤੇ ਉਪਾਇਆ, ਐਸਾ ਬਲ ਛਲ ਤਿਨ ਕਉ ਦੀਆ, ਹੁਕਮੀ ਠਾਕ ਰਹਾਇਆ। ਐਸੇ ਜਨ ਵਿਰਲੇ ਜਵ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਖਜਾਨੈ ਪਾਇਆ, ਜਾਤ ਵਰਨ ਤੇ ਭਏ ਅਤੀਤਾ, ਮਮਤਾ ਲੋਭ ਚੁਕਾਇਆ। ਨਾਮ ਰਤੇ ਤੀਰਥ ਸੇ ਨਿਰਮਲ, ਦੁਖ ਹਉਮੈ ਮਹਿਲ ਚੁਕਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਤਿਨਕੇ ਚਰਨ ਪਖਾਲੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚਾ ਪਾਇਆ। ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਵਿਵਾਸ ਇੱਕ ਓਵੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਵੇਖ ਤੂੰ ਹਰ ਮੰਦਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਮੰਦਰ ਸਭ ਦੇ ਖੋਜੀਐ, ਹਰ ਨਾਮੋ ਲਿਹੋ ਸੰਭਾਲ, ਮਨ ਫੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਰੱਪੈ ਰੰਗ ਹੋਏ, ਸੱਚੀ ਭਗਤ ਸੱਚਾ ਹਰ ਮੰਦਰ, ਪ੍ਰਗਟੀ ਸਾਚੀ ਸੋਏ ਰਹਾਓ। ਹਰ ਮੰਦਰ ਇਹੋ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਮਨਮੁਖ ਮੂਲ ਨਾ ਜਾਣਨੀ, ਮਾਨਸ ਹਰ ਮੰਦਰ ਨਾ ਹੋਏ। ਹਰ ਮੰਦਰ ਹਰ ਜੀਉ ਸਾਜਿਆ, ਰੱਖਿਆ ਹੁਕਮ ਸਵਾਰ, ਤੁਰ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਕਮਾਵਣਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਮੇਟਣ ਹਾਰ। ਸ਼ਬਦ ਚੀਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਸੱਚੈ ਨਾਇ ਪਿਆਰ, ਹਰ ਮੰਦਰ ਸਬਦੇ ਸੋਹਣਾ, ਕੰਚਨ ਕੋਟਿਆ ਪਾਰ, ਹਰ ਮੰਦਰ ਇਹੋ ਜਗਤ ਹੈ, ਗੁਰਬਿਨ ਕੋਰਿਆ ਅੰਧਾਰ। ਦੂਜਾ

प्रभाती बाणी भगत नामदेव जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मन की बिरथा मन ही जाने कह बूझ लिया गै कहिए, अंतर जामी राम रवाई मैं डर कैसे चाहिए। बेदियले गोपाल गोसाई मेरा प्रभ रवैया सरबे ठाई रहाओ। मन है हाट मन है पाट मन है पासारी, मन है बस है नाना पेदी परमत है संसारी। गुर कै शब्द हो मन राता दुबदा सहि समाणी, सबो हुक्म हुक्म है आपे निरपौ समत विचारी। जो जन जान भजे पुरखोत्म ताची अवगत बाणी, नामा कह जग जीवन पाया हृदय लख बिडाणी। प्रभाती आद जुगाद जुगाद जुगो जुग ता का अंत न जानिया, सर्ब निरंतर राम रया रव ऐसा रूप बखानिया। गोविंद गाजै शब्द बाजै आनंद रूपी मेरो रामैया रहाओ। बावन बिखू बानै बिखे वास्ते सुख लागला, सर्बे आद परमलाद काहट चंदन पैलै। तुमचे पारस हमचे लोहा संगे कंचन पैला, तू दयाल रतन लाल नामा साच समायला। प्रभाती अकुल पुरख एक चलते उपाया, कट कट अंतर ब्रह्म लुकाया। जी की जोत न जाने कोई, तै मैं किया सो मालूम होई रहाओ। ज्यो प्रगासिया माटी कुंभे ओ, आप ही करता बीठल दे ओ। जी का बंधन कर्म व्यापै, जो किश किया सो आपै आपै। प्रणवत नाम देओ इहो जियो चितवै सो लहै, अमर होए सद आकुल रहै। प्रभाती भगत बेणी जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। तन चंदन मस्तक पाती हृदय अंतर कर तलकाती, ठग दिष्ट बगा लिव लागा देख बैसनो प्राण मुख पागा। कल भगवत बंद च राम क्रूर दिष्ट रता निस्बादंग रहाओ। नित प्रत इशनान श्रीरंग दोय धोती कर्म मुख खीरंग, हृदय श्री संध्यानी पर दर्भ हरन की बानी। सिल पूजस चक्र गणेशंग निस जागत निस जागस भगत परवेसंग, पग नाचस चित आकर्मंग एलंपट नाचा धर्मंग। मृग आसन तुलसी माला कर उजल तिलक कपाला, हृदय कूड़ कंठ रुद्राखंग रे लंपट कृष्ण अपाखंग। जिन आत्म तत् न चीनिया सा फोगट धर्म अबीनिया। कहो बेणी गुरमुख त्यावै बिन सतगुर बाट ना पावै। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूर्त अजूनी सह भंगुर प्रसाद। राग जय जयवंती महला नवा, राम सिमरो एह तेरे काज है। माया को संग त्याग प्रभजू की शरण लाग, जगत सुख मान मिथ्या झूठो सब साज है रहाओ। सुपने ज्यो तन पछान काहे पर करतमान, बारू की पीत जैसे बसदा को राज है। नानक जन कहत बात बिन सजह है तेरो गात, छिन छिन कर गयो काल तैसे जात आज है। जय जावंती महला नावा, राम भज जन्म सिरात है। कहो कहा बार बार समझत न क्यों गवार, बिनसत नह लगे बार उरे समगात है रहाओ। सगल परम डार देहे गोविंद को नाम लेहे, अंत बार संग तेरा यह एक जात है। बिखिया बिख ज्यो बिसार प्रभ को जस ही ये तार, नानक जन कह पुकार अवसर बिहात है। जय जावंती महला नावा, रे मन कौन गत होए है तेरी,
ਇਹ ਜਗ ਮੈਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੋ ਤਉ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਓ ਕਾਨ ਬਿਖਿਆਨ ਸਿਉ ਅਤ ਲੁਭਾਨ ਮਤ ਨਾਨ ਫੇਰੀ ਰਹਾਓ ਮਾਨਸ ਕੋ ਜਨਮ ਲੀਨ ਸਿਮਰਨ ਨੈ ਨਿਮਖ ਕੀਨ ਦਾਰਾ ਸੁਖ ਭਇਓ ਦੀਨ ਪਗਹੁ ਪਰੀ ਬੇਰੀ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕਹਿ ਪੁਕਾਰ ਸੁਪਨੇ ਜਿਉ ਜਗ ਪਸਾਰ ਸਿਮਰਤ ਨਹਿ ਕਿਉ ਮੁਰਾਰ ਮਾਇਆ ਜਾਂ ਕੀ ਚੇਰੀ ਜੈ ਜੈ ਵੰਤੀ ਮਹੱਲਾ ਨਾਵਾਂ ਬੀਤ ਜੈ ਹੈ ਜਨਮ ਅਕਾਜ ਰੇ ਨਿਸ ਦਿਨ ਸੁਣ ਕੈ ਪੁਰਾਨ ਸਮਝਤ ਨੈ ਰੇ ਅਜਾਨ ਕਾਲ ਤਉ ਪਹੁੰਚਿਓ ਆਨ ਕਹਾਂ ਜਹਿ ਪਾਜ ਰੇ ਰਹਾਓ ਅਸਥਿਰ ਜੋ ਮਨ

करते हुए सो होए। कबीर बैसनो की कुकर भली सागत की बुरी माए, ओ नित सुने हर नाम जस ओ पाप बिसाहन जाए। कबीर हरना दुबला एहो हरियारा ताल, लाख अहेरी एक जियो केता बंचो काल। कबीर गंगा तीर जो कर करे पीवे निर्मल नीर, बिन हर भगत ना मुक्त होए इयों कह रमे कबीर। कबीर मन निर्मल पया जैसा गंगा नीर, पाछा लागो हर फिर कहत कबीर कबीर। कबीर हर दी पियारी चूना उज्जल पाए, राम स्नेही तो मिले दोनों बरन गवाए। कबीर हर दी पी रतन हर चून चहन ना रहाए, बलिहारी यह प्रीत कहो जे जात बरन कुल जाए। कबीर मुक्त द्वार।

आए कबीर ऐसा सतगुरु जे मिलै तुठा करे पसाओ मुग द्वारा मोकला सहजे आवो जाओ। कबीर नाम है शान ना शापरी नाम है करनी गाओ मत हर पूछे कौन है मेरे जात ना नाओ। कबीर मोह मरने का चाओ है मरो ता हर कै द्वार मत हर पूछे कौन है परा हमारे बार। कबीर ना हम किया ना करहेंगे ना कर सके शरीर क्या जानो किस हर किया पयो कबीर कबीर। कबीर सुपने हूं बरड़ाए कै जे मुख निकसे राम ताके पग की पानी मेरे तन को चाम। कबीर माटी के हम पुत्रे मानस राख्यो नाओ चार दिवस के पाहुने बड़ बड़ रूंदे ठाओ। कबीर मेहंदी कर काले आया पीसाए पीसाए तै सह बात ना पूछिए कबो ना लाई पाए। कबीर जे दरियावत जाते हो हटके नाही कोए सो दर कैसे छोड़ी है जो दर ऐसा होए। कबीर डूबा था पै उबरे ओ गुण की लहर चबक जब देखियो बेड़ा जर्जरा तब उतर पर्यो हाँ फर्क। कबीर पापी भगत ना पावई हर पूजा ना सुहाए माखी चंदन पर हरे जय बगंत जाए। कबीर बैद मुआ रोगी मुआ मुआ सब संसार एक कबीरा नाम हुआ जे नाही रोवनहार। कबीर राम ना त्यायो मोटी लागी खोर काया हांडी काठ की ना उचरे बहोर। कबीर ऐसी होए परी मन को पावत कीन मरने ते क्या डरपना जब हास दौरा लीन। कबीर रस को गंडो चूसिए गुण को मरिए रोए अवगुण यारे मानस है पलो न कह है कोए। कबीर गागर जल परी आज काल जय है फूट गुर जो ना चेत अपनो अद माज ली जय गे लूट। कबीर कुकर राम को मुतिया मेरो नाओ गले हमारे जेवरी जय खिंचे तै जाओ। कबीर जपनी काठ की क्या दिखलावे लोए हृदय राम ना चेत ही ये जपनी क्या होए। कबीर बिरो पुजंग मन बसे मंत ना माने कोए राम बियोगी ना जिये जिये ता बौरा होए। कबीर पारस चंदन तिन है एक सुगंध तेह मिलते ऊ तुम पहे लो काठ निर्गंध। कबीर जम का ठेंगा बुरा है ओ नहीं सहया जाए एक जो साधु मोह मिले ओ तेन लिया अंचल लाए। कबीर बैद कहे हौ ही भला दारू मेरे वस ए तो बस्त गोपाल की जब पावे लेखस। कबीर नौबत अपनी दिन दस लिहो बजाए नदी नाव संजोग ज्यो बौर न मिल है आए। कबीर सात समुंदे मस करो कलम करो बन राए बसदा कागज जो करो हर जस लिखन ना जाए। कबीर जात जुलाहा क्या करे हृदय बसे गोपाल कबीर रमैया कंठ मिल चूके सर्व जंजाल। कबीर ऐसा को नहीं मंदिर दे जराए पांचो लड़के मार कह रह राम लियो लाए। कबीर ऐसा को नहीं एहो तन दे वै फूक अंधा लोग ना जान नहीं रहो कबीरा कूक। कबीर सती पुकारे चह चढ़ी सुनो वीर मसान लोग सबाया चल गयो हम तुम काम निदान। कबीर मन पंखी पयो उड़ उड़ दे दिस जाए जो जैसी संगत मिले सो तै सो फल खाए। कबीर जां को खोजते पायो सोई ठौर सोई फिर कह तू पया जा को कहता और। कबीर मारी मरो कुसंग की केले निकट जो बेर ओह चूले ओह चीरी है साकत संग ना हेर। कबीर पार पराई सिर चरे चलो चाहे बाट अपने पारे ना डरे आगे औकट काट।
ਕਬੀਰ ਬਨਕੀ ਦਾਦੀ ਲੱਕਰੀ ਠੰਡੀ ਕਰੈ ਪੁਕਾਰ, ਮਤ ਬਸ ਪਰੋ ਲੁਹਾਰ ਕੇ ਜਾਰੈ ਦੂਜੀ ਬਾਰ। ਕਬੀਰ ਏਕ ਮਰਨ ਤੇ ਦੋਏ ਮੂਏ, ਦੋਏ ਮਰਨ ਤੈ ਚਾਰ, ਚਾਰ ਮਰਨ ਤੈ ਸ਼ੈ ਮੂਏ, ਚਾਰ ਪੁਰਖ ਦੋਏ ਨਾਰ। ਕਬੀਰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਜਗ ਢੂੰਡਿਆ, ਕਹੂੰ ਨਾ ਪਾਇਓ ਠਾਉਰ, ਜਿਨ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਿਓ, ਕਹਾਂ ਭੁਲਾਨੇ ਔਰ। ਕਬੀਰ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ ਸਾਧ ਕੀ, ਅੰਤ ਕਰੈ ਨਿਰਵਾਹੋ, ਸਾਗਤ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀਜੀਐ ਜਾਤੇ ਹੋਏ ਬਿਨਾਹੋ। ਕਬੀਰ ਜਗ ਮੈਂ ਚੇਤਿਓ ਜਾਨਕੈ, ਜਗ ਮੈਂ ਰਹਿਓ ਸਮਾਏ, ਜਿਨ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਿਓ, ਬੰਦੈ ਜਨਮੇ ਆਏ। ਕਬੀਰ ਆਸਾ ਕਰੀਏ ਰਾਮ ਕੀ, ਅਵਰੈ ਆਸ ਨਿਰਾਸ, ਨਰਕ ਪਰੈ ਤੇ ਮਾਨੈ ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਉਦਾਸ। ਕਬੀਰ ਸਿੱਖ ਸਾਖਾ ਬਹੁਤੇ ਕੀਏ, ਕੇਸੋ ਕੀ ਉਹ ਨਾ ਮੀਤ, ਚਾਲੇ ਥੇ ਹਰ ਮਿਲਨ ਕਉ, ਬੀਚੈ ਅਟਕਿਓ ਚੀਤ। ਕਬੀਰ ਕਾਰਨ ਬਪਰਾ ਕਿਆ ਕਰੈ, ਜੋ ਰਾਮ ਨਾ ਕਰੈ ਸਹਾਇ, ਜਿਹ ਜਿਹ ਡਾਲੀ ਪਗ ਧਰੋ, ਸੋਈ ਮੁਰ ਮੁਰ ਜਾਏ। ਕਬੀਰ ਅਵਰਹਿ ਕਉ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ, ਮੁਖ ਮੈਂ ਪਰ ਹੈ ਰੇਤ, ਰਾਸ ਬਿਰਾਨੀ ਰਾਖ ਤੇ, ਖਾਇਆ ਕਰ ਕਾ ਖੇਤ। ਕਬੀਰ ਸਾਧੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਰਹੋ, ਜੋ ਕੀ ਪੂਸੀ ਖਾਓ, ਹੋਨ ਹਾਰ ਸੋ ਹੋਏ ਹੈ, ਸਾਗਤ ਸੰਗ ਨਾ ਜਾਓ। ਕਬੀਰ ਸੰਗਤ ਸਾਧ ਕੀ ਦਿਨ ਦਿਨ ਦੂਨਾ ਹੇਤ, ਸਾਗਤ ਕਾਰੀ ਕਾਂਬਰੀ ਤੋਏ ਹੋਏ ਨਾ ਸੇਤ। ਕਬੀਰ ਮਨ ਮੁੰਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੇਸ ਮੁੰਡਾਏ ਕਾਏ, ਜੋ ਕਿਛ ਕੀਆ ਸੋ ਮਨ ਕੀਆ, ਮੁੰਡਾ ਮੁੰਡਿਆ ਜਾਏ। ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਨਾ ਛੋਡੀਐ, ਤਨ ਤਨ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਾਓ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਚਿਤ ਬੇਦਿਆ।

कबीर माए मुंडो ते गुरु की जाते परम ना जाए, आप डुबे चौबे मैं चेले दिए बहाए। कबीर जेते पाप किए राखे तले दुराए, प्रगट पे निदान सब जा पूछे धर्म राय। कबीर हर का सिमरन छाड़ कै पाल्यो बहुत कुटंब, तंदा करता रह गया भाई रहा ना बंद। कबीर हर का सिमरन छाड़ कै रात जगावन जाए, सरपन होए कै उतर जाए अपने खाए। कबीर हर का सिमरन छाड़ कै अहोई राख नार, गधी होए कै उतर पारस है मन चार। कबीर चतराई अत कनी हर जप हिरदय माहे, सूरी उपर खेलना ग्रहता ठाहर नाहे। कबीर सोई मुख तन है जामु कहिए राम, देही किसकी बापरी पवित्र होए गो ग्राम। कबीर सोई कुल पली जा कुल हर को दास, जे कुल दास न उपजै सो कुल ढाक पलास। कबीर है गए बाहन सगन कानो, लाख तजा फहराए, या सुख ते पिखिया पली जो हर सिमरत दिन जाए। कबीर सब जग हों फिरयो मांदल कंध चढ़ाए, कोरी कोई काहू को नहीं सब देखी ठोक बजाए। मार्ग मोती बीथरे अंधा निकस्यो आए, जोत बिना जगदीसगी जगतो लंगे जाए। बूढ़ा बंश कबीर का उपजो पूत कमाल, हर का सिमरन छाड़ कै कर ले आया माल। कबीर साधु को मिलने जाइए साथ ना लीजे कोए, पाछे पाव ना दीजिए आगे होए सो होए। कबीर जग बांध्यो जे जेवरी तेह मत बंदो कबीर, जह आटा लोन ज्यो सोन समान शरीर। कबीर हंस उड्यो तन गाड्यो सो जाई सैनाहा, अज हूं जियो ना छोड़ई रंकाई नैनाहा। कबीर नैन निहारो तुझ कहो श्रवण सुनो तो नाओ, बैन उचरो तो नाम जी चरण कमल रिद ठाओ। कबीर सुर्ग नर्ग ते मैं रहो सदगुर के प्रसाद, चरण कमल की मौज में रहो अंत अर्याद। कबीर चरण कमल की मौज को कह कैसे उन्मान, कह बे को शोभा नहीं देखा ही परवान। कबीर देख कह कह कहो कहे ना को पतियाए, हर जैसा तैसा उही रहो हरख गुन गाए। कबीर चुगे चितारे पी चुगे चुग चुग चितारे, जैसे बचरे कुंज मन माया ममतारे। कबीर अंबर कन हर छाया बरख भरे सरताल, चात्रक जो तरसत रह तिनको कौन हवाल। कबीर चक्री जो निस बिछरे आए मिले प्रभात, जो नर बिछरे राम स्यो ना दिन मिले ना रात। कबीर रह नायर बेशोरिया रहोरे संख मजूर, देवल देवल ताहड़ी देसे उगवत सूर। कबीर सूता क्या करे जाग रोए पै दुख, जाका बासा गोर मैं सो क्यों सो वै सुख। कबीर सूता क्या कर है उठ के ना जपै मुरार, एक दिन सोमन होए गो लांबे गोट पसार। कबीर सूता क्या करे बैठा रहो अर जाग, जाके संगते बिछरा ताही के संग लाग। कबीर संत की गल ना छोड़िए मार्ग लागा जाओ, पेखत ही पोनीत होए पेट जपिए नाओ। कबीर साकत संग ना कीजिए दूरे जाइए भाग, बासन कारो परसिए तो कछ लागे दाग। कबीरा राम ना चेतियो जरा पहुंचो आए, लागी मंदिर द्वार ते आप क्या काढ़िया जाए। कबीर कारण सो पयो जो कि नो करतार, तिस बिन दूसर को नहीं एक है सृजनहार। कबीर फल लागे फलन पाकन लागे आंब, जाय पहुंचे खसम को जो बीच न खाही कांब। कबीर ठाकर पूजे मोल ले मानहट तीर्थ जाहे, देखा देखी स्वांग तार पुले पटका खाहे। कबीर पाहन परमेश्वर किया पूजे सब संसार, इस प्रवासे जो रहे बूढ़े काली तार।
ਕਬੀਰ ਕਾਗਦ ਕੀ ਓਬਰੀ, ਮਸਕੇ ਕਰਮ ਕਪਾਟ, ਪਾਹਨ ਬੋਰੀ ਪਿਰਥਮੀ, ਪੰਡਿਤ ਪਾੜੀ ਬਾਟ। ਕਬੀਰ ਕਾਲ ਕਰੰਤਾ ਅਬ ਹੈ ਕਰ, ਅਬ ਕਰਤਾ ਸੋਏ ਤਾਲ, ਪਾਛੈ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਜਬ ਸਿਰ ਪਰ ਆਵੈ ਕਾਲ। ਕਬੀਰ ਐਸਾ ਜਨਤਿਕ ਦੇਖਿਆ, ਜੈਸੀ ਧੋਈ ਲਾਖ, ਦਿਸੈ ਚੰਚਲ ਬਹੁਗੁਣਾ, ਮਤਹੀਨਾ ਨਾ ਪਾਕ। ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧ ਕਹੋ, ਜਮ ਨਾ ਕਰੈ ਤਿਸਕਾਰ, ਜਿਨ ਇਹੋ ਜਮੁਆ ਸਿਰਜਿਆ, ਸੋ ਜਪਿਆ ਪਰਵਦਗਾਰ। ਕਬੀਰ ਕਸਤੂਰੀ ਪਇਆ, ਭਵਰ ਭਏ ਸਬਦਾਸ, ਜਿਉ ਜਿਉ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕੀ, ਤਿਉ ਤਿਉ ਰਾਮ ਨਿਵਾਸ। ਕਬੀਰ ਗਹਿ ਗਜ ਪਰਿਓ ਕੁਟੰਬ ਕੈ, ਕਾਂਠੈ ਰਹਿ ਗਿਓ ਰਾਮ, ਆਏ ਪਰੇ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕੇ, ਵਿਚੈ ਤੂੰ ਮਾਤਾਮ। ਕਬੀਰ ਸਾਗ ਤੇ ਸੂਕਰ ਭਲਾ, ਰਾਖੈ ਅੱਛਾ ਗਾਓ, ਉਹ ਸਾਗਤ ਬੱਪਰਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਲਹਿ ਨਾਓ। ਕਬੀਰ ਕੌਡੀ ਕੌਡੀ ਜੋਰ ਕੈ, ਜੋਰੇ ਲੱਖ ਕਰੋਰ, ਚਲਤੀ ਬਾਰ ਨਾ ਕਛ ਮਿਲਿਓ, ਲਈ ਲੰਗੋਟੀ ਤੋਰ। ਕਬੀਰ ਬੈਸਰੋ ਹੁਆ ਤਾਂ ਕਿਆ ਪਿਆ, ਮਾਲਾ ਮੇਲੀ ਚਾਰ, ਬਾਹਰ ਕੰਚਨ ਬਾਰਹਾ, ਪਿੱਤਰ ਭਰੀ ਪੰਗਾਰ। ਕਬੀਰ ਰੋਣਾ ਹੋਏ ਰਹੋ ਬਾਟਕਾ, ਤਜ ਮਨ ਕਾ ਅਭਮਾਨ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਦਾਸ ਹੋਏ ਤਾਹੇ ਮਿਲੈ ਭਗਵਾਨ। ਕਬੀਰ ਰੋੜਾ ਹੁਆ

हर जन ऐसा चाहिए जो पानी सरबंग कबीर पानी हुआ ता क्या पया सीरा ताता होए। हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए ऊच पवन कर कामनी शिखर तजा फहराए ताते पली मधुकरी संत संग गुण गाए। कबीर पाटन ते उजर पाला राम भगत जेठाए राम स्नेही बाहरा जमपुर मेरे पाए। कबीर गंग जमन के अंतरे सहज सुन के काट तहां कबीर है मटकिया खोजत मुन जन बाट। कबीर जैसी उपजी पेड़ ते जो तैसी निभ ओड़ हीरा किसका बापरा पुज नारतन करोड़। कबीरा एका चंबो देखियो हीरा हट बिकाए बंजन हारे बाहरा कौडी बदले जाए। कबीरा जहां ज्ञान तह धर्म है जहां झूठ तह पाप जहां लोभ तह काल है जहां खिमा तह आप। कबीर माया तजीता क्या पया जो मान तजया नहीं जाए मान मुनि मुनमर गरे मान सबै को खाए। कबीर साचा सतगुर मैं मिलया शब्द जो बाहया एक लागत ही पोए मिल गया परया कलेजे शेक। कबीर साचा सतगुर क्या करे जो सिखा मह चूक अंधे एक न लाग गई जो बस बजाइए फूक। कबीर है गए बहन सगन कहन छत्रपति की नार ताश पटंतर ना पुजे हर जन की पनिहार। कबीर

मुख ते राम संभाल, हाथ पाओ कर काम सब, चीत निरंजन नाल। महला पंजवा, कबीरा हमरा को नहीं, हम किसू के ना है, जिन एहो रचन रचाया तिसी मैं समाहे। कबीर की चिड़ियाटा गिर परया, किशु ना आयो हाथ, पीस्त पीस्त चाबिया सोई निभया साथ। कबीर मन जाने सब बात, जानत ही अवगन करे काहे की कुसलात। हाथ दीप कुए पर कबीर लागी प्री सुजान, स्यों बरजै लो गया जान, ता स्यों टूटी क्यों बने जाके जी प्राण। कबीर कोठे मंडप हेत कर काहे मरो सवार, कार्ज साढ़े तीन हाथ कहीं ता पौने चार। कबीर जो मैं चितवो ना करै, क्या मेरे चितवे होए, अपना चितव्या हर करै जो मेरे चेतना होए। महला तीजा, चिंता पे आप कराए सी है, चिंत पे आपे दे, नानक सो सा लाही है जे सब ना सार करे। महला पंजवा, कबीर राम ना चेते ओ फिर या लालच माहे, पाप करंता मर गया औध पुनी खिन माहे। कबीर काया काची कारवी, केवल काची तात, साबत रखै ता राम पाज नाहे ता बिरठी बात। कबीर केसो केसो कुकिया, ना सोइए आसार, रात दिवस के कुकने कबहू के सुने पुकार। कबीर काया कजली बन पया, मन कुंचर मैं मंत, अंकस ज्ञान रतन है खेवट बिरला संत। कबीर राम रतन मुख कोथरी, पारखे आगे खोल, कोई आए मिले गो गाह की, ले गो में गो मोल। कबीर राम नाम जान्यो नहीं, पाल्यो कटक कुटंब, तंदे ही मैं मर गयो बाहर पई ना बंब। कबीर आखी केरे माटके, पल पल गई बिहाए, मन जंजाल ना छुडई, जम दिया दमामा आए। कबीर तारवर रूपी राम है, फल रूपी बैराग, छाया रूपी साध है, जिन तजया बाद विवाद। कबीर ऐसा बीज बोए बारह मास फलंत, शीतल छाया गहर फल, पंखी केल करंत। कबीर दाता तरवर दया फल, उपकारी जीवंत, पंखी चले दिसावरी बिरखा सुभर फलंत। कबीर साधु संग प्राप्ति, लिखिया होए ललाट, मुक्त पदार्थ पाई है ठाक ना या कटकाट। कबीर एक कड़ी आदि करी, आदि हूं ते आद, भगतन सेती गोष्टे जो कीने सो लाभ। कबीर भांग माछली सुरा पान, जो जो प्राणी खाहे, तीर्थ व्रत नेम किए ते सबैर थातल जाहे। नीचे लोहिन कर रहो ले सजन कट माहे, सब रस खेलो पीसो किसी लिखावो नाहे। आठ जाम चौ सठ करी, तो निरखत रह जियो, नीचे लोहन क्यों करो सब कर देखो पियो। सुन सखी पी मह जियो बसे, जी में बसे के पियो, जियो पियो बूझो नहीं घट में जियो के पियो। कबीर बामन गुरु है जगत का, भगतन का गुर नाहे, अर्ज उर्ज के पचमुआ चारो बेदो माहे। हर है खांड रेत में बिखरी, हाथी चुनी ना जाए, कह कबीर गुर पली बुझाई, कीटी होए कह खाए। कबीर जो तुहे साध ब्रह्म की, शीस काट कर गोए, खेलत खेलत हाल कर, जो किश होए ता होए। कबीर जो तुहे साध ब्रह्म की, पाके से ती खेल, काची सरसों पेल कै ना खल पई ना तेल। ढूंढत डोले अंध गत, अर चिंत नाही संत, कह नामा क्यों पाई है बिन भगतो भगवंत। हर सो हीरा छाड़ कै करे आन की आस, ते नर दो जग जाहेंगे सत पाखे रविदास। कबीर जौ ग्रहो करे ता धर्म कर, नाही ता कर बैराग, बैराग

दात दाती साहेब संधियां क्या चले तिस नाल, एक जागन दे ना लहन एक ना सुत्यां दे उठाल। ढूंढें दिए सुहाग को तौ तनकाई कोर, जिन्ना नाम सुहागनी तिन्ना चाक ना होर। सबर मंज कमान ए सबर का निहुणो, सबर संदा बाण खालक खता ना करी। सबर अंदर साबरी तन ए वै जालेन, हुन जी खुदाई दै भेत न किसै देन। सबर एहो सुवाओ जे तू बंदा दिड़ करै, वध थी वै।

विचार जगत पिता है सर्व प्राण को आधार जन नानक भगत दार तुल ब्रह्म समसार एक जी क्या बखाना हां के बल बल बल बल सद बलिहार अमृत प्रवाह सर अतुल भंडार पर परै ही ते परै अपरे अपार पर आपनो पावन कर मंत्र ना दूसरो तार ओपत पर लो एक है निमख तो कर आन नाही संसार उजियारो निर्मर कोट प्राप्त जाहे नाम लिए हर हर जन नानक भगत दार तुल ब्रह्म समसर एक जिह क्या बखाना हां के बल बल बल बल सद बलिहार सगल पवन तारे एक थे किए बिस्थारे पूर रहो सर मैं आप है निरारे हार गुण नाही अंत पारे जी जंत सब थारे सगल को दाता एक है अलख मुरारे आप ही तारन तारे कुदरत है देखा रे वर्ण चिहन नाही मुख नाम सारे जन नानक भगत दार तुल ब्रह्म समसर एक जी क्या बखाना हां के बल बल बल बल सद बलिहार सर्व गुण निधान कीमत ना ज्ञान ध्यान ऊचे ते ऊचो जानी जय प्रभ तेरो थान मन तन तेरो प्राण एक सूत है जहान कौन उपमा देओ बड़े ते बडान जाने कौन तेरो पेओ अलख्या पार देओ अकल कला है प्रभ सर्व को तान जन नानक भगत दार तुल ब्रह्म समसर एक जिही क्या बखाना हां के बल बल बल बल सद बलिहार निरंकार आकार अशल पूर्ण अविनाशी हर खवंत अनंत रूप निर्मल बेगासी गुण गावे बेअंत अंतिक तिल नहीं पासी जा कह होहे कृपाल सुजन प्रभ तुम्हें मिलासी तन तन ते तन जन जे कृपाल हर हर पयो हर गुरु नानक जन परसयो से जन मरण दो थे रहो सत सत हर सत सत सत्ते सत पणिए दूसरे अन्न अवर पुरख पौ रतन सुनिए अमृत हर को नाम लैत मन सब सुख पाए जेहे रसन चाखेओ तेह जन तृप्त आगाए जे ठाकर सो प्रसन्न पयो सतसंग ते प्यार हर गुरु नानक जन परसयो दिन सब कुल कियो उधार सच सभा दीवान सच सच्चे पै तरयो सच्चा तख्त निवास सच तपावस करयो सच सिरजियो संसार आपया पुल ना पुलो रतन नाम अपार कीम न पवे अमलो जे कृपाल होयो गोबिंद सर्व सुख तिन हूं पाए हर गुरु नानक जिन परसियो ते बौड़ फिर जो ना आए कवन योग कवन ज्ञान ध्यान कवन बिद उस्तत करिए सिद्ध साधक ते तीस कोर तिरकी मना परिए ब्रह्मादिक संकाद से गुण अंत ना पाए अगाव गयो नहीं जाए पूर सर्व रहो समाए जे काटी सिलक दयाल प्रभ से जन लगे भगते हर गुरु नानक जन परसयो ते इत्युत सदा मुक्ते प्रभ दाताओ दातार परयो जाच के कसरना मिले दान संतरेन जेह लग पौ जल तरना बिनत करो अरदास सुनो जे ठाकर पावे देहो दर्श मन चाओ भगत्यो मन ठहरावे बलियो चिराग अंधियार मैं सब कल उदरी एक नाम धर्म प्रगट सगल हर पवन में जन नानक गुर पार ब्रह्म सवैये श्री मुख बाक महला पंजवा एको ओंकार सतगुर प्रसाद काची देह मोह फुन बांधी सठ कठोर कुचील कुग्यानी तावत परमत रहन नहीं पावत पार ब्रह्म की गत नहीं जानी जोबन रूप माया मदमाता विचरत बिकल बड़ो अभमानी पार तान पारे अपवाद नार निंदा यह मिठी जी माए हितानी बल बंच शब करते पावा पेक्त संत प्रभ अंतर जामी
ਸੀਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਸੁਚ ਨਾਸਤ ਆਇਓ ਸਰਨ ਜੀ ਕੇ ਦਾਨੀ ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਸਮਰੱਥ ਸ੍ਰੀ ਧਰ ਰਾਖ ਲਿਹੋ ਨਾਨਕ ਕੇ ਸਵਾਮੀ ਕੀਰਤ ਕਰਨ ਸਰਨ ਮਨ ਮੋਹਨ ਜੋਹਨ ਪਾਪ ਬੇਦਾਰਨ ਕਹੋ ਹਰ ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਸਮਰੱਥ ਸਵੈ ਬਿਦ ਕੁਲੈ ਸਮੂਹ ਉਦਾਹਰਨ ਸਹੁ ਚਿਤ ਚੇਤ ਅਚੇਤ ਜਨ ਸਤਸੰਗਤ ਪਰਮ ਅੰਧੇਰ ਮੋਹਿਓ ਕਤ ਤਾਉ ਮੂਰਤ ਕਰੀ ਚਸਾ ਪਰ ਸਿਮਰਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਸਨਾ ਸੰਗ ਲਓ ਹੋਛੋ ਕਾਜ ਅਲਪ ਸੁਖ ਬੰਧਨ ਕੋਟ ਜਨਮ ਕਹਾਂ ਦੁਖ ਪਾਉ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਤ ਨਾਮ ਭਜ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਰੰਗ ਆਤਮ ਸਿਉ ਰਉ ਰੰਚਕ ਰੇਤ ਖੇਤ ਨਿਰਮਤ ਦੁਰਲਭ ਦੇਹ ਸਵਾਰ ਧਰੀ ਖਾਨ ਪਾਨ ਸੋਧੇ ਸੁਖ ਪੁੰਚਤ ਸੰਕਟ ਕਾਟ ਬਿਪਤ ਹਰੀ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਪਾਈ ਅਰ ਬੰਧਪ ਬੂਜਨ ਕੀ ਸਭ ਸੂਝ ਪਰੀ ਬਰਦਮਾਨ ਹੋਵਤ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਨਿਤ ਆਵਤ ਨਿਕਟ ਬਿਖਮ ਜਰੀ ਰੇ ਗੁਣਹੀਨ ਦੀਨ ਮਾਇਆ ਕ੍ਰਿਮ ਸਿਮਰ ਸਵਾਮੀ ਏਕ ਕਰੀ ਕਰ ਗੈ ਲਿਹੋ ਕਿਰਪਾਲ ਕਿਰਪਾ ਨਿਦ ਨਾਨਕ ਕਾਟ ਭਰਮ ਪਰੀ ਰੇ ਮਨ ਮੂਸ ਬਿਲਾ ਮੈਂ ਗਰਬਤ ਕਰਤਬ ਕਰਤ ਮਹਾਮੁਗਨਾ ਸੰਪਤ ਦੋਲ ਚੋਲ ਸੰਗ ਚੂਲਤ ਮਾਇਆ ਮਗਨ ਪ੍ਰਮਤ ਕੁਗਨਾ ਸੁਤ ਬਣਤਾ ਸਾਜਨ ਸੁਖ ਬੰਧਪ ਤਾਂ ਸਿਉ ਮੋਹ ਬਡਿਓ ਸੋ ਕਹਨਾ ਬੋਇਓ ਬੀਜ ਅਹੰ ਮਮ ਅੰਕਰ ਬੀਤ ਤਿਉਧ ਕਰਤ ਅਗਨਾ ਮਿਰਤ ਮਜਾਰ ਪਸਾਰ ਮੁਖ ਨਿਰਖਤ ਪੁੰਚਤ ਪੁਖਤ ਪੂਖ ਪੁਖਨਾ ਸਿਮਰ ਗੋਪਾਲ ਦਿਆਲ ਸਤਸੰਗਤ ਨਾਨਕ ਜਗ ਜਾਨਤ ਸੁਪਨਾ।

बरस एक हो फिर किने नो पर चौलायो, कहते है कहती सुनी रहत को खुशी ना आयो। हर नाम छोड़ दूजे लगे तिनके गुणाओ क्या कहो, गुरदय मिलायो पिखिया जिब तू रखे तिव रहो। पहर समाध सुना हो ज्ञान है आसन चढ़ियो, धर्म तनख कर गहे हो भगत सीले सर लड़ियो। पह निरपो हरा टल मानो शब्द गुर ने जा गड्यो, काम क्रोध लो मोह अपत पंच दूत बेखंडे आओ। पलो पुहाल तेजो तना निरपद नाथ नानक बार, गुर अमरदास सल पान तैं दल जितो इव युद्ध कर। कन हर बूंद बसोरो मावल कुसुम बसंत ग्रंथ न आवै, रव संस्करण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावै। रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर के कब जन पल उन्ह जो गावै, पल्ले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बने आवै। सवैये महल्ले चौथे के एक ओंकार सतगुर प्रसाद, एक मन पुरख निरंजन त्यावो गुर प्रसाद हर गुण सदगावो। गुण गावत मन होए बिगासा सतगुर पूर जिने की आसा, सतगुर से परम पद पायो अब नासी अब गाते आयो। तिस भेटे दरिदर ना चंपै कल सहार तास गुण जंपै, जंपो गुण बिमल सुजन जन केरे अमे नाम जा कौ फुरिया। इन सतगुर सेव शब्द रस पाया नाम निरंजन उर धरिया। हर नाम रस गोविंद गुण गाहक चाहक तत् समत सरे, कव कल ठकर हरदास तने गुर रामदास सरा पर परे। छुटत प्रवाह अमे अमरा पद अमृत सरोवर सद भरिया, ते पीवै संत करै मन मज्जन पुब जिनो सेवा करिया। तिन पहु निवार अनपै पादीना शब्द मात्र ते उदर धरे, कव कल ठकर हरदास तने गुर रामदास सरा पर परे। सतगुर मत गूढ़ बिमल सत संगत आत्म रंग चलूल पया, जाग्या मन कवल सहज प्रकाशया अपै निरंजन करै लहा। सतगुर दयाल हर नाम दृढ़ाया तिस प्रसाद वस पंच करे, कव कल ठकर हरदास तने गुर रामदास सरा पर परे। अनपव उन्मान अकल लागी पारस पेटिया सहज करे, सतगुर प्रसाद परम पद पाया भगत पाए भंडार परे। मेटिया जन्मात मरण पौ भागा चित लागा संतोख सरे, कव कल ठकर हरदास तने गुर रामदास सरा पर परे। अपर परे पायो अपार हृदय अंतर तारेओ, दुख पंजन आत्म प्रबोध मन तत् विचारेओ। सदा चाहे हर पाए प्रेम रस आपे जाने, सतगुर कै प्रसाद सहज से तीरंग माने। नानक प्रसाद अंगद समात गुर अमर अमर वरतायो, गुर रामदास कलुचरै तै अटल अमर पद पायो। संतोख सरोवर बसै अमे रस रसन प्रकाशै, मिलत सांत उपजै दुरत दूर अंतर नासै। सुख सागर पायो दिनत हर मग ना हुटै, संजम सत संतोख सीर सनहो फुटै। सतगुर प्रमाण बिदने सिरयो जग जस्तूर बजायो, गुर रामदास कलुचरै तै अपै अमर पद पायो। जग जितो सतगुर प्रमाण मन एक त्यायो, तन तन सतगुर अमरदास जिन नाम दृढ़ायो। नवनिद नाम निधान रिद्ध सिद्ध ता की दासी, सहज सरोवर मिलियो पुरख भेट्यो अबनासी। आदले भगत जित लग तरे सो गुर नाम दृढ़ायो, गुर रामदास कलुचरै तै हर प्रेम पदार्थ पायो। प्रेम भगत प्रवाह प्रीत पुबली ना हुटै, सतगुर शब्द अथाहो अमे तारा रस गुटै। मत माता संतोख पिता सरसै समायो, आजोनी संपावयो जगत गुर बचन तरायो। आप गात्या गोचर अपर पर मन गुर शब्द वसायो, गुर रामदास कलुचरै तैं जगतो धारण पायो।
जगत उदाहरण नाम निदान भगत पवतारण अमृत बूंद हर नाम बिसकी बिखै निवारण साहित रोवर फलो ज्ञान अमृत फल लागे गुर प्रसाद पाईए तन ते जनवट पागे ते मुक्ते पए सतगुर शब्द मन गुर परचा पायो गुर रामदास कलुचरै तै शब्द निशान मजायो से सदा सह शावान संतोख सराय चौ सदा सीर सन्ना हो सो है गुर शब्द समाचरयो नाम टेक संगाद बो है आजोनियो पालिया माल सदगुर संग निवास गुर रामदास कलुचरै तो सह सरोवर वास गुर जिन कौ सो प्रसन्न नाम हरदय निवासै जिन कौ गुर सो प्रसन्न दुरत दूर अंतर नासै गुर जिन कौ सो प्रसन्न मान अभमान निवारै जिन कौ गुर सो प्रसन्न शब्द लग पव जल तारै परचो प्रमाण गुर पायो तिन सके अथो जन्म जग श्री गुरु शरण भज कल कब भुगत मुक्त सब गुरु लग सतगुर खेमा ताणिया जुग जूत समाणे अनपौ नेजा नाम टेक जित भगत्या गाणे गुर नानक अंगद अमर भगत हर संग समाणे एहो राज जोग गुर रामदास तुमहू रस जाने जनक सोए जिन जानिया उन मन रथ तरिया सत संतोख समाचरे अपरा सर भरिया अकथ कथा अमरापुरी जिस देसो पावै एहो जनक राज गुर रामदास तुझ ही बने आवै सतगुर नाम एक लिव मन जपै दृढ़ तिन जन दुख पाप कहो कत होवै जियो तारन तरन खिन मात्र जा को दृष्ट तारै शब्द रिद विचारै काम क्रोध खोवै जियो जियन सवन दाता अगम ज्ञान बिख्याता एहन इस ध्यान तावै पलक ना सोवै जियो जा को देखत दिर जावै नाम सो निदान पावै गुरमुख ज्ञान दुरमत मैल धोवै जियो सतगुर नाम एक लिव मन जपै दृढ़ तिन जन दुख पाप कहो कत होवै जियो धर्म कर्म पूरै सतगुर पाई है जा की सेवा सिद्ध साध मुन जन सुर नर जाचै शब्द सार एक लिव लाई है फुन जानै को तेरा अपार निरपौ निरंकार अकथ कथनहार तुझे बुझाई है परम पूले संसार छुट्टो जूनी संगार जम को ना दंड काल गुरमत त्याई है मन प्राणी मुग्ध विचार अहन इस जप धर्म करम पूरे सतगुर पाई है हम बल बल जाऊं सतगुर साचे नाम पर कवन उपमा देओ कवन सेवा सिरेओ एक मुख रसना रसो जुग जोर कर फुन मन बच कर्म जान अंत दूजा नामान नाम सोआ पार सार दिनो गुर रिद तार नल कव पारस परस कच कंचना नल कव पारस परस कच कंचना होए चंदना सुबास जास सिमरत अन तार जाके देखत दुआरे काम क्रोध ही निवारे जी हम बल बल जाऊं सतगुर साचे नाम पर राज जोग तख्त दियन गुर रामदास प्रथमे नानक चंद जगत भयो आनंद तारन मनुख जन कियो परगास गुर अंगद दियो निदान अकथ कथा ज्ञान पंचभूत बस कीने जमत ना त्रास गुर अमर गुरु श्री सत कल युग राखी पत अग्न देखत गत चरण कवल जास सब विद्मान्यो मन तब ही पयो प्रसन्न राज जोग तख्त दियन गुर रामदास अरड जिसे तारयो तरत अर व्योम अर पवन ते नीर सर अवर अनल अनाद कियो सस रेख निस सूर दिन सैल तरु फल फुल दियो सुर नर सप्त समुन्दर के तारयो त्रि पवन जास सोई एक नाम हर नाम सत पायो गुर अमर परगास कच्चो कंचन पयो शब्द गुर श्रवणै सुनयो बिखते अमृत होयो नाम सतगुर मुख पणियो लोहो होयो लाल नदर सतगुर जा तारै
ਪਾਹਣ ਮਾਣਕ ਕਰੈ ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਕਹਿਓ ਵਿਚਾਰੈ। ਕਾਠੋ ਸ੍ਰੀ ਖੰਡ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆਓ ਦੁਖ ਦਰਿਦਰ ਤਿਨਕੇ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਰਨ ਜਨ ਪਰਸਿਆ ਸੇ ਪਸ ਪ੍ਰੇਤ ਸੁਰ ਨਰ ਪਏ। ਜਾਮ ਗੁਰੂ

ज्ञान अर ध्यान अनन पार जाम गुरु होए वल शब्द साखी सो सच्चै कर जो गुरु गुरु अहनस जपै दास पट बेनत कह जो गुरु नाम रिद मैं तरै सो जन्म मरण दोथे रै गुर बिन कोर अंधार गुरु बिन समझ ना आवै गुर बिन सुरत ना सिद्ध गुरु बिन मुक्त ना पावै गुर कर सच विचार गुरु कर रे मन मेरे गुर कर शब्द सपुन अगन कटै सब तेरे गुर नैन बैन गुर गुर करहो गुरु सत कब नल कह जिन गुरु ना देखियो नहो कियो ते अक्यत संसार मह गुरु गुरु गुर कर मन मेरे तारन तरन समर्थ कल युग सुनत समाद शब्द जिसके रे फुन दुखन नास सुखदायक सूरो जो तरत ध्यान बसत तेहे नेरे पूरो पुरख हृदय हर सिमरत मुख देखत अग जाहे परे रे जो हर बुद्ध रिद सिद्ध चाहत गुरु गुरु गुर कर मन मेरे गुरु मुख देख गुरु सुख पायो हुती जो प्यास पी उस पे वन की वंशत सिद्ध को बिद मिलायो पूर्ण पो मन ठौर बसो रस बासन से जो दहंग दिस्तायो गोबिंद वाल गोबिंद पुरी सम जलन तीर विपास बनायो गयो दुख दूर बरखन को सो गुरु मुख देख गुरु सुख पायो समरथ गुरु सिर हथ तरियो गुर कीनी कृपा हर नाम दियो जिस देख चरण अगन हरियो निस बासर एक समान ध्यान सो नाम सुने सुत पान डरियो पन दास सुवास जगतर गुरु की पारस पेट परस करियो रामदास गुरु हर सत कियो समरथ गुरु सिर हथ तरियो अब राखो दास पाठ की लाज जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की हर नाग सफारे करे आज फुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी शीनत बस्तर दीन बहु साज सो दामा अपदा ते राखिया गनका पड़त पूरे तेह काज श्री सतगुर सो प्रसन्न कल युग होए राखो दास पाठ की लाज झोलना गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप प्राणिया शब्द हर हर जपै नाम नाम निद अपै रसन अहनस रसै सत कर जानिया फुन प्रेम रंग पाई है गुरमुख है ते आई है अन मार्ग तजो भजो हर ज्ञानिया बचन गुर रिद तरो पंच पू बस करो जन्म कुल उधरो द्वार हर मानिया जाओ ता सब सुख एत्योत तुम बंछवो गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप प्राणिया गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप सत कर अगम गुण जान निदान हर मंत्रो त्यान अहनस करो बचन गुर दै तर फुन गुरु जल बिमल अथाह मज्जन करो संत गुर सिख तरो नाम सच रंग सर सदा निर्वैर निरंकार निरपो जपै प्रेम गुर शब्द रस करत दृढ़ भगत हर मुग्ध मन भ्रम तजो नाम गुरमुखो भजो गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप सत कर गुरु गुर गुर करो गुरु हर पाईऐ उदत गुर गहर गंभीर बेअंत हर नाम नग हीर मन मिलत ले वलाईऐ फुन गुरु परमल सरस करत कंचन परस मैल दुरमत हिरत शब्द गुर त्याईऐ अमृत प्रवाह छुटकंत सा द्वार जिस ज्ञान गुर बिमर सर संत सिख नाईऐ नाम निर्वाण निदान हर उर तरहो गुरु गुर गुर करहो गुरु हर पाईऐ गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप मन रे जाकी सेव सेव सिद्ध साधक सुर असुर गण तरह ते तीस गुर बचन सुन कन रे फुन तरह ते संत हित भगत गुर गुर करे तरयो प्रहलाद गुर मिलत मुन जन रे तरह नारदाद सनकाद हर गुरमुख है तरह एक नाम लग तजो रस अन रे दास बेनत कह नाम गुरमुख लह।

श्री गुरु साहेब सब ऊपर करी कृपा, सतयुग जंत्र ऊपर श्री प्रहलाद भगत उदरियंग, हस्त कमल माथे पर तरियंग, अलख रूप जी लख्या ना जाई, साधक सिद्ध सगल सरनाई, गुर के बचन सत जी तारो, मानस जन्म देह निस्तारो, गुर जहाज खेवट गुरु गुर बिन तरिया ना कोए, गुर प्रसाद प्रभ पाईए गुर बिन मुक्त ना होए, गुर नानक निकट बसै बनवारी तें लहना थाप जोत जगतारी, लहणै पंथ धर्म का किया अमरदास पल्ले कौ दिया, तिन श्री रामदास सोडी थर थप्यो हर का नाम अखै निद अप्यो हर नाम अखै निद चहो जुग गुर सेवा कर फल लहियंग, बंदे जो चरण सरन सुख पावै परमानंद गुरमुख कहियंग, प्रतख देह पार ब्रह्म स्वामी आद रूप पोखण परण, सतगुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री रामदास तारण तरण, जेहे अमृत बचन बाणी साधु जन जप है कर बचित चाओ, आनंद नित मंगल गुर दर्शन सफल संसार, संसार सफल गंगा गुर दर्शन परसन परम पवित्र गते, जीते जम लोक पतत जे प्राणी हर जन सेव गुर ज्ञान रते, रग बंश तिलक सुंदर दशरथ कर मुन बंश जाकी सरणं, सतगुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री रामदास तारण तरणं, संसार अगम सागर तुलहा हर नाम गुरु मुख पाया, जग जन्म मरण पग्गा एह आई ही है प्रतीत, प्रतीत ही है आई जन जन कै तिनको पदवी उच पई, तज माया मोह लोभ अर लालच काम क्रोध की बिरथा गई, अवलोकिया ब्रह्म परम सब छुटकिया, दिव दृष्ट कारण करण सतगुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री रामदास तारण तरण, प्रताप सदा गुर का कट कट प्रगास पया जस जन कै, एक पड़े सुने गावे प्रभाते करे इशनान, इशनान करे प्रभात शुद्ध मन, गुर पूजा विद सहत करं कंचन तन होए परस पारस कहो, ज्योत स्वरूपी ध्यान तरं, जग जीवन जगन्नाथ जल थल मैं रहया पूर बहुविध वर्णं,

चरण कमल सदा से ओ दृढ़ता कर मत जियो। नाम सार हिये तार तज बिकार मन ग्यंद, श्री गुरु श्री गुरु श्री गुरु सत जियो। सेवक कै भरपूर जुग जुग, वाहगुरु तेरा सब सदका, निरंकार प्रभ सदा सलामत, कह ना सकै को तू कद का। ब्रह्मा विष्णु सिरे तैं अगनत, तिनको मोह भया मन मदका। चौरासी लख जो ने उपाई, रिजक दिया सब हूं कौ तदका। सेवक कै भरपूर जुग जुग, वाह गुरु तेरा सब सदका। वाहो वाहो का बड़ा तमाशा, आपे हसै आप ही चितवै, आपे चंद सूर परगासा। आपे जल आपे थल थम्मन, आपे किया कटकट बासा। आपे नर आपे फुनारी, आपे सार आप ही पासा। गुरमुख संगत सबै बेचारा, वाहो वाहो का बड़ा तमाशा। किया खेल बड़ मेल तमाशा, वाहे गुरु तेरी सब रचना। तू जल थल गगन प्याल पूर रहया, अमृत ते मीठे जाके बचना। मन ब्रह्मादिक रुद्रादिक, काल का काल निरंजन जचना। गुरप्रसाद पाइए परमार्थ, सतसंगत सेती मन खचना। किया खेल बड़ मेल तमाशा, वाहगुरु तेरी सब रचना। अगम अनंत अनाद, आद जिस कोई न जाने। शिव ब्रंच तर ध्यान, नित जिस वेद बखाने। निरंकार निर्वैर, अवर नहीं दूसर कोई। पंजन गण समरथ, तरन तारन प्रभ सोई।

नाना प्रकार जिन जग कियो जन मथुरा रसना रसै श्री सतनाम करता पुरख गुरु रामदास चित्तै बसै। गुरु समर्थ गह करिया ध्रुव बुद्ध सुमत सुमारन को फुन त्रम तुजा फहरंत सदा अग पुंज तरंग निवारण को। मथुरा जन जान कही जी साच सो और कछु ना विचारन को। हर नाम बोहित बड़ो कल मैं पवसागर पार उतारन को। संतत ही सतसंगत संग सो रंग रते जस गावत हैं। धर्म पंथ तरयो तरनी तर आप रहे लिव तार ना तावत हैं। मथुरा पन भाग पले उनके मन इच्छित ही फल पावत हैं। रव के सुत को तिन त्रास कहा जो चरण गुरु चितलावत हैं। निर्मल नाम सदा परपूर्ण शब्द तरंग प्रगटत दिन आगर गहर गंभीर अथाह अत बड़ सुबर सदा सब दर्त नागर। संत मराल करे कंतूहल तिन जम त्रास मिट्यो दुख कागर। कल युग दुर्त दूर कर बे कौ दर्शन गुरु सगल सुख सागर। जाको मन ध्यान तरे फिरत सगल जुग कबहो को पावे आत्म प्रगास को। वेद बाणी सहत बरंच जस गावे जाको शिव मन गहे नात जात कबलास को। जाको जोगी जति सिद्ध साधक अनेक तप जटा जूट पेख किए फिरत उदास को। सो तिन सतगुर सुख पाए कृपा तारी जी नाम की बढ़ाई दई गुर रामदास को। नाम निदान ध्यान अंतर्गत तेज पुंज तेह लोग प्रगासे देख दर्श पटक परम पजत दुख परहर सुख सहज बेगासे। सेवक सित सेवक सिख सदा अतलुबत आलस मुह जो कुसम सुभासे। विद्यमान गुर आप थप्यो थिर साचो तख्त गुरु रामदास। तारियो संसार माया मद मोहत अमृत नाम दियो समरथ। फुन कीर्तवंत सदा सुख संपत रिद अर सिद्ध न छोड़े साथ। दान बड़ो अतवंत महाबल सेवक दास कयो एहो तथ। ताहे कहा परवाह कहूं की जा कै बसीस धरियो गुर हथ। तीन पवन पर पूर रहे हो सोई अपन सरस कियो ना जगत कोई। अपने आप ही हो पायो सुर नर असुर अंत नहीं पायो। पायो नहीं अंत सुरे असुर नर गण गंधर्व खोजंत फिरे। अब नासिया चाला जोनी संपाओ पुरखोत में आपार परे। करण कारण समर्थ सदा सोई सर्व जी मन त्यायो। श्री गुरु रामदास जयो जय जग मैं तै हर परम पद पायो। सतगुर नानक भगत करी एक मन तन मन धन गोबिंद दियो। अंगद अनंत मूर्त निज तारी अगम ज्ञान रस रसियो ही ओ। गुर अमरदास करतार कियो वस वाहो वाहो कर त्यायो। श्री गुरु रामदास जयो जय जग मैं तैं हर परम पद पायो। नारद त्रू प्रहलाद सुदामा पुब भगत हर के जुगण। अमरीक जय देव त्रिलोचन नामा अवर कबीर पण। तिन को अवतार पयो कल पिंतर जस जगत्र पर छायो। श्री गुरु रामदास जयो जय जग मैं तैं हर परम पद पायो। मनसा कर स्मरंत तुझे नर काम क्रोध मिट्यो जो तिन। बाचा कर स्मरंत तुझे तिन दुख दरिद्र मिट्यो जो खिण। कर्म कर तो दर्स परस पारस सरबल भट्ट जस गायो। श्री गुरु रामदास जयो जय जग मैं तै हर परम पद पायो। जे सतगुर सिमरंत
ਨੈਣ ਕੇ ਤਿਮਰ ਮਿਟੈ ਖੇਨ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਥ ਹਿਰਦੈ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਨੋ ਦਿਨ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਥ ਜੀ ਕੀ ਤਪਤ ਮਿਟਾਵੈ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਥ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨਵਨਿਧ ਪਾਵੈ, ਸੋਈ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਬਲ ਪਹਣ, ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਧਨ ਧਨ ਕਰੋ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਲਗ ਪ੍ਰਭ ਪਾਈਐ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੋ ਨਰੋ। ਜਿਨ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਓ, ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਨਾ ਛੋਡਿਓ ਪਾਸ, ਤਾਂ ਤੇ ਗਉ ਹਰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਉਜਿਆਰੋ, ਦੁੱਖ ਦਰਿਦਰ ਅੰਧਿਆਰ ਕੋ ਨਾਸ। ਕਵ ਕੀਰਤ ਜੋ ਸੰਤ ਚਰਨ ਮੁੜ ਲਾਗੈ, ਤਿਨ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਜਮ ਕੋ ਨਹੀਂ ਤ੍ਰਾਸ, ਜਿਵ ਅੰਗਦ ਅੰਗ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਗੁਰ, ਤਿਵ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਕੈ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ। ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਪਦਾਰਥ ਪਾਇਓ, ਨਿਸਬਾਸਰ ਹਰ ਚਰਨ ਨਿਵਾਸ, ਤਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਸਗਨ ਪਾਏ ਪਉ ਮਾਨੈ, ਤੁਮਲੀ ਆਗਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸੁਵਾਸ। ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕਬੀਰ ਤਰਲੋਚਨ, ਨਾਮ ਲੈਤ ਉਪਜਿਓ ਜੋ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਜਿਹ ਪਿਖਤ ਅਤ ਹੋਏ ਰਹੱਸ ਮਨ, ਸੋਈ ਸੰਤ ਸਹਾਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾਨੋ, ਕੀਨੀ ਭਗਤ ਪ੍ਰੇਮ ਲਿਵ ਲਾਈ, ਤਾਂ ਤੇ ਅੰਗਦ ਅੰਗ ਸੰਗ ਭਇਓ ਸਾਇਰ, ਤਿਨ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਕੀ ਨੀਵ ਰਖਾਈ। ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਕੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੀ ਕਛ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਈ, ਸੋਢੀ ਸਰਿੱਟ ਸਗਲ ਤਾਰਨ ਕਹੋ, ਆਪ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹੋ ਮਿਲੀ ਬੜਾਈ। ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਖੈ ਬਿਖ।

एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो सरनाई। मोह मल बिवस कियो काम गै केस पछाड़ियो क्रोध खंड प्रचंड लोभ अपमान स्यो चाड़ियो। जन्म काल कर जोड़ हुक्म जो होए सो मन्नै भव सागर बंदियो सिख तारे सो प्रसन्नै। सिर आत पात सचो तखत योग भोग संजुत बल गुर रामदास सच सल पाण तू अटल राज या पग दल। तू सतगुर चहु जुगी आप आपे परमेश्वर सुर नर साधक सिद्ध सिख सेवंत तुरै तुर। आद जुगा ध्यानाद कला तारी त्रे लोवै अगम निगम उदरन जरा जम्मै आरोवै। गुर अमरदास थिर थपे आओ परगामी तारण तरण अग अंतक बदै ना सल कव गुर रामदास तेरी सरण। सवैये महले पंजवें के एक ओंकार सतगुर प्रसाद सिमरंग सोई पुरखा चल अबनासी जे सिमरत दुरमत मलनासी। सतगुर चरण कवल रे तारंग गुर अर्जन गुण सहज विचारंग। गुर रामदास कर कियो परगासा सगल मनोरथ पूरी आसा तैं जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाण्यो कल जोड़ कर सुजस वखाण्यो। भगत जोग कौ जय तवार हर जन क्यो पायो शब्द गुरु प्रकाश्यो हर असन बसायो। गुर नानक अंगद अमर लाग उत्तम पद पायो गुर अर्जन कर गुर रामदास भगत उतर आयो। बड़ भागी उन मान्यो रिद शब्द बसायो मन मानक संतोखियो गुर नाम दृढ़ायो। आगम्या गोचर पार ब्रह्म सतगुर दरसायो गुर अर्जन कर गुर रामदास अनपौ ठहरायो। जनक राज बरताया सतयुग आलीना गुर सबदे मन मान्या अपतीज पतीना। गुर नानक सच नीम साज सतगुर संग लीना गुर अर्जन कर गुर रामदास अपरंपर बीना। खेल गूड़ो कियो हर राय संतोख समाचरियो बिमल बुद्ध सतगुर समाणो। आजोनी संभव आओ सो जस कल कवि अण बखाने आओ। गुर नानक अंगद वर आओ गुर अंगद अमर निधान गुर रामदास अर्जन वर आओ पारस परस प्रमाण। सद जीवन अर्जन अमोल आजोनी संभव पै पंजन पर दुख निवार आपारिया नम पौ। अगै गहन परम्पांत दहन शीतल सुखदाताओ असंपव उदव्यो पुरख पूर्ण विधाताओ। नानक आद अंगद अमर सतगुर शब्द समायो तन तन गुर रामदास तन तन गुर रामदास गुर जिन पारस परस में लायो। जय जय कार जास जग अंदर मंदर भाग जुगत शिव रहता गुरपूरा पायो वड भागी लिव लागी मेदन पर सहिता। पै पंजन पर पीर निवारण कल सहार तोहे जस भगता कुल सोडी गुर रामदास तन धर्म तुजा अर्जन हर भगता। त्रम तीर गुरमत गंभीर पर दुख बिसारण शब्द सार हर सम उदार अहमेव निवारण। महादान सतगुर ज्ञान मन चाओ ना हुटै सतवंत हर नाम मंत्र नव निद नानक हुटै। गुर रामदास

एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक महला नावा गुण गोविंद गायो नहीं जन्म अकार्थ कीना कहो नानक हर भज मना जेह बिद जल कौ मीना बिख्यान स्यों काहे रचियो निमख ना होहे उदास कहो नानक भज हर।

सदा बस्त तुम साथ, तन तन जेह तो कौ दियो ता स्यो नेहो ना कीन, कहो नानक नर बावरे अब क्यों डोलत दीन। तन तन संपै सुख दियो अर जेह नीके ताम, कहो नानक सुन रे मना सिमरत काहे नाराम। सब सुख दाता राम है दूसर नाहिन कोए, कहो नानक सुन रे मना तह सिमरत गत होए। जह सिमरत गत पाई है तेह पजरे तै मीत, कहो नानक सुन रे मना औद कटत है नीत। पांच तत् को तन रचियो जानो।

कट कट मैं हरजू बसै संतन कहो पुकार कहो नानक ते भज मना पौने दे उतर है पार। सुख दुख जेह पर सह नहीं लोभ मोह अभमान कहो नानक सुन रे मना सो मूर्त भगवान। उस्तत निंदया नाहे जेह कंचन लोहो समान कहो नानक सुन रे मना मुक्त ताहे तै जान। हरख सोग जा कै नहीं बैरी मीत समान कहो नानक सुन रे मना मुक्त ताहे

कहो नानक सुन रे मना, ज्ञानी ताहे बखान। जे बिखिया सगली तजी, लियो पेख बैराग, कहो नानक सुन।

कहो नानक हर भजन बिन परत ताहे जम फंद। सुख मैं बहु संगी पै दुख मैं संग ना कोए, कहो नानक हर भज मना अंत सहाई होए। जन्म जन्म परमत फिरयो मिट्यो न जम को त्रास, कहो नानक हर भज मना निरपै पावै बास। जतन बहुत मैं कर रहे हो मिट्यो न मन को मान, दुर्मत स्यो नानक फदयो राख लेहो भगवान। बाल जवानी अर बिरद फुन तीन अवस्था जान, कहो नानक हर भजन बिन बिरथा सब ही मान। करणो हो तो सोना कियो परयो लोभ कै फंद, नानक समयो रम गयो अब क्यों रोवत अंध। मन माया मैं रम रहे हो निकसत नाहिन मीत, नानक मूर्त चित्र ज्यों छाड़त नाहन पीत। नर चाहत कश और की और पई, चितवत रहो उठ गौर नानक फासी गल परी। जतन बहुत सुख के किए दुख को कियो ना कोए, कहो नानक सुन रे मना हर पावै सो होए। जगत पिखारी फिरत है सबको दाता राम, कहो नानक मन सिमरत है पूर्ण होवे काम। झूठे मान कहां करे जग सुपने ज्यों जान, इनमें कछ तेरो नहीं नानक कहो बखान। गर्भ करत है देह को बिन सैशन में मीत, जह प्राणी हर जस कहो नानक तेह जग जीत। जेह कट सिमरन राम को सो नर मुक्ता जान, तेह नर हर अंतर नहीं नानक साची मान। एक भगत भगवान जह प्राणी कह नाहे मन, जैसे सुकर स्वान नानक मानो ताहे तन। स्वामी को गृह ज्यों सदा स्वान तजित नहीं नित, नानक एह बिद हर पयो एक मन होए एक चित। तीर्थ बरत अरदान कर मन में तरै गुमान, नानक निफल जात तह ज्यो कुंचर इशनान। सिर कंपियो पग डग मगे नैन ज्योत ते हीन, कहो नानक यह बिद पई तऊ नहर रसलीन। निज कर देखियो जगत में को काहू को नाहे, नानक थिर हर भगत है तह राखो मन माहे। जग रचना सब झूठ है
जान ले हो रे मीत कह नानक थिर नारा।

जो अनहोनी होए एहो मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोए। जो उपजियो सो बिरस है परों आज कह काल नानक हर गुण गाए ले छाड़ सगल जंजाल। दोहरा बल छुटक्यो बंधन परे कशु न होत उपाय नानक सब किश तुमरे हाथ में तुम ही होत सहाय। संग सखा सब तज गए को न निभयो साथ कहो नानक ए बिपत मैं टेक एक रघुनाथ। नाम रहयो

राम नाम उर मैं गयो जाके सम नहीं कोए, जेह सिमरत संकट मिटे दर्श तुहारो होए। मुंदावणी महला पंजवा, थाल विच तिन वस्तु पईयो सत संतोख विचारो। अमृत नाम ठाकर का पयो जिसका सबस आधारो। जे को खावे जे को पुंचे तिसका होए उधारो। एहे वस्त तजी नह जाई नित नित रख उतारो। तम संसार चरण लगतरी है सब नानक ब्रह्म।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग माला, राग एक संग पंच बरंगन, संग अलाप आठो नंदन। प्रथम राग पैरो वै करही, पंच राग नी संग उचरही। प्रथम पैर भी बेलावली, पुनिया की गावे बंगली, पुन असलेखी की पई बारी, ए पैरों की पंचो नारी। पंचम हरख दिसाख सुनावे, बंगालम मदमाद वगावे। ललत बिलावल गावही, अपनी अपनी पांत। अष्टपुत्र भैरव के गावह गायन पात्र। द्वितीया माल कौसकिया लाप, संग रागनी पांचौ थाप। गोंड करी अर देव गंधारी, गंधारी सी हुती उचारी। तनासरी ए पांचौ गाई, माल राग कौशक संग लाई। मारू मस्त अंग मेवारा, परबल चंड कौशक ओ भारा। खौ खटियौ पौरा नद गाए, अष्टमाल कौशक संग लाए। पुन आयो हिंडोल, पंचनार संग अष्ट सुत। उठह तान कलोल, गायन तार मिला वही। तेलंगी देव करी आई, बसंती संदूर सुहाई। सरस अहीरी लै पार जा, संग लाई पांचो वार जा। सुरमानंद पास कर आए, चंद्रबिंब मंगलन सोहाए। सरस बान औ आहे बिनोदा, गावे सरस बसंत कमोदा। अष्टपुत्र मैं कहे सवारी, पुन आई दीपक की बारी।

संग दीपक के थाप कालंका कुंतल और अम्मा कमल कुसुम चंपक के नामा गौरा औ कानरा कल्याणा अष्टपुत्र दीपक के जाना सब मिल श्री राघव गावै पांचो संग बरंगन लावै बैरारी करनाटी तरी गवरी गावै आसावरी तेह पाछ सिंधवी आलापी श्री राग स्यो पांचो थापी सालू सारग सागरा और गोंड गंभीर अष्टपुत्र श्री राग के गुंड कुंभ हमीर खष्ट मेघ राग वै गावै पांचो संग बरंगन लावै सोरठ गोंड मलारी तुनी पुन गावै आसा गुनगुनी ऊचे सुरसू हो पुन कीनी मेघ राग स्यो पांचो चीनी बैरा तार गज तार के दारा जबली तार नट औ जल तारा पुन गावै शंकर औ श्यामा मेघ राग पुत्रन के नामा खष्ट राग उन गाए संग राग नीतीस सब पुत्र रागन के अठारह दस बीस खष्ट राग उन गाए संग राग नीतीस सब पुत्र रागन के अठारह दस बीस वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु

अरदास को ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती समर कै गुरु नानक लई ते आए फिरंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नौ सिमराओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरे कर रावण दे आवै ताए सब थाई हुई सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज पंथ दे वाली सब थाई हुई सहाय दसा पातशाहियां के स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान तरके खालसा साहिब बोलो श्री वाहेगुरु वाहेगुरु गुरु साहिब जी दे पंज प्यारे चार साहबजादे चाली मुक्ते हठियां जपियां तपियां जिन्हां ने तेरा नाम जपिया वंड के छकिया देग चलाही तेग वाही देख के अंडिठ कीता तिना प्यारिया सचियारिया की कमाई का ध्यान तरके खालसा साहिब बोलो श्री वाहेगुरु वाहेगुरु पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारा ध्यान तरके खालसा साहिब बोलो श्री वाहेगुरु वाहेगुरु जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेसी दिते बंद बंद कटवाए चरखड़ियां ते चढ़े आरिया नाल चिराए गए गुरुद्वारा की सेवा लई कुर्बानियां कीतियां तिना प्यारिया सचियारिया की कमाई का ध्यान तरके खालसा साहिब बोलो श्री वाहेगुरु वाहेगुरु आप जी दे गुरसिखा नू गुरसिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिरदान नामदान श्री अमृतसर साहब जी के दर्शन स्नान आप जी दे गुरसिखा दा मन नीवा मत उची मत पतकारा खाप अकाल पुरख वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु नाम चितावै चितावन का सदका सर्व सुख होवै बिरद की पैज रहे पंथ की जीत श्री साहब जी सहाय सत श्री अकाल पुरख जी का ध्यान तरके खालसा साहब बोलो श्री वाहिगुरु वाहिगुरु हे महाराज श्री निरंकार ज्योति स्वरूप धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी दसा पातशाहियां के स्वरूप धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जी दे हजूर ऐस वक्त अरदास बेनती है आप जी ने महान बख्शिश कीती है पातशाह जीओ आप जी दा ओट आसरा लैंदिया होया सेवक परिवार ने सहज पाठ आरंभ करवाया सी सहज पाठ दी सीडी दी सेवा कीती है सीडी बनाने दी सेवा करदिया अनेका भुलां होईयां होणगियां गुरु अते गुरु की संगत बख्शण योग है पाठ दा फल सेवक परिवार नूं बख्शण दी कृपालता करनी जी पाठी सिंह पासों पाठ करदिया अनेका भुलां होईयां होणगियां गुरु अते गुरु की संगत बख्शण योग है बख्शण दी कृपालता करनी साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी आप जी ने महान बख्शिश कीती है सहज पाठ दी निर्विघ्नता सहित समाप्ति होई है सेवक परिवार वालों आप जी नूं सोहणे रुमाले पछाके हाजिर होए हन आप जी ने अंगीकार करने सेवकां दे पर्दे कजने सेवक परिवार नूं गुरसिखी ते नामदान दी दात बख्शिश करनी पातशाह चढ़दियां कला बख्शिश करनियां पातशाह कारोबार च बरकतां पाउणियां अंग संग सहाई होना छे पौड़ियां आनंद साहब दा पाठ होया बाणी पढ़ी सुनी सचखंड विखे प्रवान करनी बाणी दा भाव सेवक परिवार दे हिरदियां विखे वसाउणा सेवक परिवार वालों पवित्र कड़ाह प्रसाद दी देग ते लंगर हाजिर है आप जी दर ते प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरते जो छके आप जी दा पवित्र नाम जपे सुख होवे नाम चित आवे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह दोहरा

मान्यो प्रगट गुरा की देह, जो प्रभु को मिलबो चह खोज शब्द में ले, राज करेगा खालसा आकी रहे न कोए ख्वार।

0: बोले सोनिहाल सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ, सो कहो टल गुर सेवी अहनस सहज सुभाए, दर्शन परसे ऐ गुरु कै जन्म मरण दुख जाए। टोडी महला पंजवां, माई मेरे मन को सुख, कोट आनंद राज सुख भुगवे, हर सिमरत बिनसै सब दुख। माई मेरे मन को सुख, कोट आनंद राज सुख भुगवे, हर सिमरत बिनसै सब दुख। रहाओ कोट जन्म के किल बिख नासै, सिमरत पावन तन मन सुख। देख स्वरूप पूर्ण भई आसा, दर्शन भेटत उत्तरी भुख। चार पदार्थ अष्ट महासिद्ध, काम तेन पार जात हर हर रुख। नानक शरण गही सुख सागर, जन्म मरण फिर गर्भ ना दुख। चार पदार्थ अष्ट महासिद्ध, काम तेन पार जात हर हर रुख। नानक शरण गही सुख सागर, जन्म मरण फिर गर्भ ना दुख। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: You are listening to SeekNet Radio.

अहंकार, असंख जप, असंख पाव, असंख पूजा, असंख तपताव, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रह उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती, असंख दातार, असंख सूर मुह पख सार, असंख मोन लिवलाय तार, कुदरत कवन कहा विचार, वारिया न जावा एक बार, जो तुद पहावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख मूर्ख अंध कोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गलवड हत्या कमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कूड़े आर कूड़े फिराहे, असंख मलेश मल पख खाहे,

अमूल गुण अमूल व्यापार अमूल व्यापार ये अमूल भंडार अमूल आवहे अमूल ले जाहे अमूल पाए अमूला समाहे अमूल धर्म अमूल दीवान अमूल तुल अमूल प्रवाण अमूल बख्शीस अमूल निशान अमूल कर्म अमूल फुरमान अमूलो

गावह चित गुप्त लिख जान है, लिख लिख धर्म विचारे, गावह ईश्वर ब्रह्मा देवी, सोहन सदा सुवारे, गावह इंद इंदासन बैठे, देवत्यां दरनाले, गावह सिद्ध समाधि अंदर, गावन साध विचारे, गावन जति सती संतोखी, गावह वीर करारे, गावन पंडित पढ़ नरखी सरे,

सिद्ध समाधि अंदर गावन तुदनो साध बिचारे गावन तुदनो जति सती संतोखी गावन तुदनो वीर करारे गावन तुदनो पंडित पढ़न रखी सर जोग जोग वेदा नाले गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुर्ग माछ पयाले गावन

तेरी अनक करह हर पूजा जी, तब ताप है जप है बेअंता, तेरे अनेक पढ़ है बहु सिमृत शास्त्र जी, कर किरे

लिए पत होए। ऊतम से दर ऊतम कहिए नीच कर्म बहरोए रहा। रस सोयना रस रूपा कामन रस।

जिन कौ सतगुरु थापिया तिन मेट न सकै कोई। ऊना अंदर नाम निदान है नामो प्रगट होए। नाओ पूजिए नाओ मनिए अखंड सदा सच सोए।

वसहिं, ज्यों पावै त्यों निर्जास। जी अरे राम जपत मन मान, अंतर लागी जल बुझी, पाया गुरमुख ज्ञान रहाओ। अंतर की गत जानिए, गुर मिलिए शंख उतार, मुया जित कर जाइए, तित जीम दिया मर मार। अनहद शब्द सुहावणे।

भेटियो सो पाओ जल पचाय पचाय यो मानक जियो निर्मोल है यो कौडी बदलै जाय जिन्ना सतगुर रस मिले से पूरे पुरख सुजान गुर मिल पौजल लंघी।

दया नाम निदान अंतर हर रस रव रहया चूका मन अभिमान हृदय कमल प्रगासया लागा सहज ध्यान मन निर्मल हर रव रहया पाया दरगह मान सतगुर सेवने अपना ते विरले संसार हों मैं ममता मार कै हर राख्या उरतार हों तिन कै बलिहारण जिन्ना नामे लगा प्यार सही सुखी।

गया पछताए, जिस नदर करे सो उबरे, हर से पील बलाए, देखा देखी सब करे, मन मुख बूझ ना पाए, जिन गुरमुख हृदय शुद्ध है।

गुण को नहीं बहन न मिले हदूर मन मुख शब्द न जाने अवगुण सो प्रभ दूर जिन्नी सच पछाणिया सच रते भरपूर गुर शब्द।

आप होवा मेहरबान, सच महल घर पाया गुर का शब्द पछान। भगत जना को राखदा अपनी कृपा तहार, हलत पलत मुख उजले साचे के गुणसार। आठ पहर गुण सार दे रते रंग अपार, पार ब्रह्म सुख सागरो नानक सद बलिहार।

जपिया अमृत नाम जन्म मरण दुख काटिया लागे सहज ध्यान मेरे मन प्रभ शरणाई पाए हर दिन दूजा को नहीं एको नाम त्याए रहाओ कीमत कहन न जाइए सागर गुणी अथाह वडभागी मिल संगति सच्चा शब्द विसाह कर सेवा सुख सागर सिर शाह पातशाह।

अपार सखा सहाई अत वड्डा ऊंचा वड्डा अपार बालक बिरद ना जानिए निहचल तिस दरबार जो मंगिए सोई पाइए निधारा आधार जिस पेखत किल विख हिरहै मन तन हो वह शांत एक मन एक त्याई है मन की लाहे प्रांत गुण निदान नव तन सदा पूर्ण जाकी दात सदा सदा आराध्य दिन विसरहो नहीं रात जिनका पूर्व लिखिया तिनका सखा गोविंद तान मान तहन अर्पी सबो सगल वारिय ए जिंद देख सुने हदूर साध कट कट ब्रह्म रविंद अकिरत कणा नु पालदा प्रभ नानक सद बख्शिंद श्री राग महला पंजवां।

पूर, भक्ति नाम विहूणिया आवह वन्यह पूर। राख लेहु प्रभ करण हार, जी जंत कर दया, बिन प्रभ कोए ना रखण हार, महा बिकट जम पया। नानक नाम ना विसरो कर अपनी हर मया। श्री राग महला पंजवा मेरा।

नाम अमृत नगर निहाल। मन मेरे सदगुर सेवा सार, करे दया प्रभ अपनी, एक निमख न मन हो विसार। रहा

नदर निहाल मन तन निर्मल होया लागी साच प्रीत चरण भजे पार ब्रह्म के सब जप तप तिन्ही कीत।

साची पूंजी सच संजमो आठ पहर गुण गाओ कर कृपा प्रभ पेटिया मरन नावन जाओ मेरे मन हर भज सदा एक रंग घट घट अंतर रव रहया सदा सहाई संग रहाओ सुखां की मित क्या गणी जान सिमरी गोविंद जिन चाख

रहाव, सगल पदार्थ तिस मिले, सगल पदार्थ तिस मिले, जिन गुर डिठा जाए, गुर चरणी जिन मन लगा, सेवड पागी माए, गुरदाता समरथ गुर, गुर सब मह रहया समाए, गुर परमेश्वर पार ब्रह्म, गुर डुबदा लय तराए, कित मुख गुर साला ही है, करण कारण समरथ, से मथे ने चल रहे, जिन गुर तारिया हाथ, गुर अमृत नाम पिया लिया, जन्म मरण का पथ, गुर परमेश्वर सेविया, पै भंजन दुख लथ, सतगुर गहर गंभीर है, सुख सागर अगखंड, जिन गुर सेविया अपना, जमदूत न लागे डंड, गुर नाल तुल न लगई, खोज डिठा ब्रह्मांड, नाम निधान सतगुर दिया, सुख नानक मन महमंड, श्री राग महला पंजवां।

रहाउ जिचर वस्या कंत कर जियो जियो सब कहात जा उठी चलसी कंतड़ा ता कोई न पुछे तेरी बात पे यड़े शहो सेव तू साहुरड़े सुख वस गुर मिल चज आचार सिख तुद कदे न लग गए दुख।

तिसह त्याव मन मेरे सर्ब को आधार। गुर के चरण मन माहे त्याय, गुर के चरण मन मह त्याय, छोड़ सगल सियान पा साज शब्द लिबलाए रहाओ। दुख क्लेश ना पो व्यापै गुर मंत्र हृदय होए, कोट जतना कर रहे गुर बिन तरयो ना कोए। देख दर्शन मन साधारे पाप सगले जाहे, हौं तिन कै बलिहारने जे गुर की पैरी पाहे। साध संगत मन बसै साच हर का नाओ, सेवड भागी नानका जिन्ना मन इहो पाओ। श्री राग महला पंजवां संच हर तन पूज सतगुर, छोड़ सगल विकार जिन तू साज सवारिया, हर सिमर होए उधार।

अनुसार आप छोड़ सब होए रेणा जिस देव प्रभ निरंकार जो दिसै सो सगल तू है पसरे आपासार कहो नानक गुर परम काटिया सगल ब्रह्म विचार श्री राग महला पंजवां।

वड पुरख सुजाना रहाओ। मान अभिमान मंधे सो सेवक नाही, तत समदर्शी संत हो कोई कोट मंदाही। कहन कहावन इहो कीरत करला, कथन कह

पाए करते हथ वडियाइयां पूर्व लिखिया पाए सच करता सच करण हार सच साहिब सच टेक सचो सच बखाणिए सचो बुद्ध विवेक सर्ब निरंतर रव रहया जप नानक जीवै एक श्री राग महला पंजवा।

रहाओ। गुर समरथ अपार गुर बड़ भागी दर्शन होए, गुर अगोचर निर्मला गुर जे बड़ अवर ना कोए। गुर कर

दास सत गुर शरणी आया बाहुड़ नहीं बिनास हर नानक कदे न विसरो इहो जियो पिंड तेरा सास श्री राग महला पंजवा संत

आए नानक गुर शरणागति मरै नहावै जाए। एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री राग महला पहला घर पहला अष्टपदियां आख आख मन भावना ज्यों ज्यों जापै वाए जिसनो वाए सुनाई है सो केवड़ कित थाए आखण वाले जेतड़े सब आख रहे लिवला।

जाए, नित रवै सुहागणी साची नदर रजाए। साच धड़ी मन धन मांडी है, साच धड़ी धन मांडी है, कापड़ प्रेम सिंगार चंदन चीत बसाया, मंदिर दसवां द्वार दीपक शब्द विगासया, राम नाम उरहार। नारी अंदर सोहनी मस्तक मणि प्यार, शोभा सुरत सुहावनी साचे प्रेम अपार। बिन पिर पुरख ना जाने साचे गुर कै हेत प्यार, निस अंधियारी सुतिए क्यों पिर बिन रहन विहाए। अंक जलाओ तन जालियो मन तन तन बल जाए, अंक

शब्द लंघावन हार निडरिया डर जानिए बाज गुरु गुबार आस्थिर करता देखिए होर केती आवै जाए आपे निर्मल एक तू होर बंदी तंदै पाए गोरड़ा खे से उबरे साचे स्यों लिवलाए।

जान, बिन गुर कर्म न छुट सी, कह सुन आख बखान। सब गुणवंती आखी है, मैं गुण नाही कोय, हर वर नार सुहावनी, मैं पहावै प्रभ सोय। नानक शब्द मिला बड़ा, ना वे छोड़ा होए। श्री राग महला पहला।

पार हाट पटनगढ़ कोठड़ी सच सौदा व्यापार ज्ञान अंजन पै पंजना देख निरंजन पाए गुप्त प्रगट सब जानिए जे मन राखे ठाए ऐसा

राम जप हो सुख हो बिन गुर प्रेम न पाई शब्द मिले रंग होए रहाओ गुर सेवा सुख पाइए हर वर सहज सिंगार सच माने तिर से जड़ी गूड़ा हेत प्यार गुरमुख जान सियाणिए गुर मेली गुण चार साच मिलो वर काम।

महला पहला रे मन ऐसी हर स्यो प्रीत कर जैसी जल कमले लहरी नाल पछाड़ी है पी विकसै असने जल मह जी उपाय कै बिन जल मरन तने मन रे क्यों छूट है बिन प्यार गुरमुख अंतर रव रहे।

अब पीर रे मन ऐसी हर्ष्यों प्रीत कर जैसी चात्रक में सार पार थल हरियावले एक बूंद न पवै खे सार पार थल हरियावले।

तिड़ मल बिन गुर प्रीत न उपजै होमे मैल न जाए सोहं आप पछाणिए शब्द भेद पतियाए गुरमुख आप पछाणिए।

नानक दर कर एक है अवर न दूजी जाए। श्री राग महला पहला मन मुख भुले भुलाई है फूली ठौर न काए। गुरबिन को ना दिखावई अंधी आवे जाए ज्ञान पदार्थ खोए।

कवन पता आर अखर पढ़ पढ़ फुलिए देखी बहुत अभिमान तीर्थ नाता क्या करे मन मह मैल गुमान गुरबिन किन समझाइए मन राजा सुल्तान प्रेम पदार्थ पाइए।

मस्तक सच निशान। बहुता जीवन मंगिया मुआ न लोड़ै को, सुख जीवन तिस आखिया जिस गुरमुख वसिया सोए। नाम विहूणे क्या गणी जिस हर गुर दर्शना होए। ज्यों सुपने निस भुलिया जब लग निंद्रा होए, इउं सरपन कै बस जियड़ा अंतर हो मैं दोए। गुरमत होए विचारिया सुपना इहो जग लोए, अगन मरे जल पाइए ज्यों बारक दूध है माए। बिन जल कमल सो ना थी, बिन जल मीन मराए। नानक गुरमुख हर

पंखी बिरख सुहावड़े ऊट है चौ दिस जाए जेता ऊट है दुख घने नित दाज है तै दिल लाहे बिन गुर महल ना जापई ना अमृत फल पाहे गुरमुख ब्रह्म हरियावला साच सहज सुभाए शाखा तीन निवारिया एक शब्द लिवलाए अमृत फल हर एक है आपे देखवाए मनमुख उबे सुख गए ना फल तिन्ना छाओ तिन्ना पास न बैसिय ओना कर ना गिराओ कटिय है तै नित जालिय है ओना शब्द ना नाओ।

सत समाए, हर निर्मल अत उजला बिन गुर पाया ना जाए, पाठ पढ़े ना बुझई भेखी परम भुलाए, गुरमति हर सदा पाया रसना हर

आपदा सतगुर बाज ना पायो सब मोही माया जाल जियो सतगुर कौ बल जाइय जित मिलिय परम गत पाइय।

जियो हो सतगुर विट हो कुमाया जिन भ्रम भुला मार्ग पाया नदर करे जे अपनी आपे लैर लाए जियो तू सबना माहे समाया तिन करतै आप लुकाया नानक गुरमुख प्रगट होया जां कौ जोत धरी करतार जियो आपे खसम निवाजया जियो पिंड दे साजया अपने सेवक की पैज रखिया दोए कर मस्तक धार जियो।

गोए उठा लिया हुक्मी पांडे साजया तू आपे पन सवार जियो जिन सतगुर स्यों चित लाया तिन दूजा भाव चुकाया जिन

ज्यों जसदा कर कान हथो हथ नचाइए प्राणी मात कहे सुत मेरा चेत अचेत मूड मन मेरे अंत नहीं कछ तेरा।

जा जम पकड़ चलाया वणजारिया मित्रा किसै न मिलया भेत भेत चेत हर किसै न मिलियो जा जम पकड़ चलाया।

तीर्थ वर्त सुच संजम नाही, कर्म धर्म नहीं पूजा, नानक पाए भगत निस्तारा, दुविधा व्यापै दूजा। तीजै पहर रैण कै वणजारिया मित्रा, सरहंस उलथड़े आए, जोबन घटै जरुआ जणै, वणजारिया मित्रा आम घटै दिन जाए, अंत काल पछतासी, अंधले जां जम पकड़ चलाया।

मोहलत कर्म कमाहे, मोहलत कर दीनी कर्म कमाणे, जैसा लिखत तुर पाया। मात पिता भाई सुत बनता, तिन भीतर प्रभु संजोया। कर्म

दरगहास दास सुहेले। कर्म धरती शरीर जुग अंतर जो बोवै सो खात, कहो नानक भगत सोह है दरबारे मन मुख सदा पवात। श्री राग महला चौथा घर दूजा शांत, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मुंद इयाणी पे अड़ै क्यों कर हर दर्शन पिखै,

ते अलाथ अपेवे निहचल आसन पाया तह जन्म न मरण न आवन जाना संसार दुख मिटाया चित्र गुप्त का कागद फारिया जम दूता कछु न चली नानक सिख दे मन प्रीतम हर लदे खेप सवली।

सतगुर तुठे, लड़ली ने लाए नौ निद पाए, नाउ सर्ब सठापुर दीना, नानक सिख संत समझाई, हर प्रेम भगत मन लीना, श्री राग के

अधहरे गुण साध संग मिल गावे। नानक के स्वामी तार अनुग्रहो मन तन अंक समावे। दखना सो हंदड़ो हब ठाए कोय न दिसे डूजड़ो खुलड़े कपाट नानक सतगुर भेट ते।

हर रंग रत हर त्याव हो हर प्रभ सत गुरबचनी हर प्रभ जानिया सब हर प्रभ ते उत्पत रहाओ जिनको पूर्व लिखिया से आए मिले गुर पास सेवक पाए बन जा रिया मित्रा गुर हर हर नाम प्रगास तन तन बन

सदा हर सच मन वसै निश्चल मत अपार रतन अमोलक पाया गुर का शब्द विचार जिहवा सच्ची मन सच्चा सच्चा शरीर अकार नानक सच्चै सतगुर से।

बुझे अंधा क्या करे, नानक जिन अखी लीतियां सोई सच्चा दे पौड़ी। हर इको करता एक इको दी बाण हर, हर एक सैदा है अमर इको हर चित धर।

तुद आपे धरती साजिए चंद सूरज दोए दीवे दस चार हट तुद साजिया वापार करीवे एक नानो हर लाभ दे जो गुरमुख थीवे तिन जम काल न व्यापई जिन सच अमृत पीवे।

आओ नानक पूर्व लिखिया कमावण अवर न करना जाए महला तीजा होर कूड़ पढ़ना कूड़ बोलना माया नाल प्यार नानक बिनना मैं को थिर नहीं पढ़ पढ़ होए खुआर पौड़ी हर की वड्याई वड्डी है हर कीर्तन हर का हर

हमका भाहा गलहु न कटिए फिर आवे जाए मन मुख किशु न सूजे अंधले पूर्व लिखिया कमाए पूरे भाग सत

कमाए कूड़ कुसात कमाए गुर प्रसादी मन जने हर से पीले बलाए। नानक गुरमुख सच कमावे मन मुख आवे जाए पौड़ी। हर के संत सुनहु जन पाई हर सतगुर की एक साखी। जिस तुर भाग होवे मुख मस्तक तिन जन लै हृदय राखी। हर अमृत कथा श्रेष्ठ ऊतम

पूजिए बिन सतगुर बूझ ना पाए। जब तब संजम पाणा सतगुरु का करमी पल्ले पाए। नानक सेवा सुरत कमावणी, नानक सेवा सुरत कमावणी, जो हर पावे सो थाए पाए पौड़ी। हर हर नाम जपहु मन मेरे, जित सदा सुख होवे दिन राती। हर हर नाम जपहु मन मेरे, जित सिमरत सब किल विख पाप लहाती। हर हर नाम जपहु मन मेरे, जित दालद दुख भुख सब लह जाती।

एक स्वान कह कर गावण जननी जानत सुत बड़ा होत है इतना को ना जाने जे दिन दिन अवध कटत है मोर मोर कर अधिक लाड कर देखत ही।

कनक कलश एक पाया तिसमह तार चुवै अत निर्मल रसमह रसन चुआया। एक जो बात अनूप बनी है पवन प्याला साजिया तीन पवन मह एको जोगी कहो कवन है राजा।

तौ आन सकत गल बांधिया। तरुण तेज पर त्रै मुख जो है सार अवसर ना पछाणिया। उन्मत काम महा बिख भूलै पाप पुन ना पछाणिया। सुत संपत देख इहो मन गर्बिया राम हृदय ते खोया। अवर मर्त माया मन तोले तौ भग मुख जन्म बगोया। पुंडर केस कुसम ते तौ

जन नानक गुर मिल रहस्य जियो। माज महला चौथा, हर गुण पढ़िए हर गुण गुणिए, हर हर नाम कथा नित सुनिए। मिल सतसंगत हर गुण गाए, जग भौजल गुत्तर तरिए जियो। आओ सखी हर

अमृत रस सच अमृत बोली गुरपूरै अमृत लीचै जियो। हर सत संगत सत पुरख मिलाइय मिल सत संगत हर नाम त्याइय। नानक हर कथा सुनी मुख बोली गुरमत हर नाम।

तू आपे गुरमुख मुक्त कराए हैं, तू आपे मन मुख जन्म पवाए हैं। नानक दास तेरा बलिहारे, सब तेरा खेल दसहरा जियो। माज महला पंजवा, अनहद वाजै सहज सुहेला। शब्द आनंद करे सद केला, सहज गुफा महताड़ी लाई। आसन ऊच सवारया जियो, फिर घिर अपने ग्रह में आया। जो लोड़ींदा सोई पाया, तृप्त अगाए रहया है संत हो। गुर अनपौ पुरख दिखारया जियो, आपे राजन आपे लोगा। आप निर्वाणी आपे भोगा, आपे तख्त बह सच न्याई। सब चूकी कूक पुकारया जियो, जेहा डिठा मैं ते हो कहया। तिस रस आया जिन भेद लहया,

दयाल रंगीले गहर गंभीर बेअंत गोविंदे ऊच अथा बेअंत स्वामी सिमर सिमर हौ जीवा जियो। दुख पंजन निदान अमोले निरपहौ निर्वैर अथा अतोले अकाल मूर्त अजूनी संपहौ मन सिमरत ठंडा थीवा जियो। सदा संगी हर रंग गोपाला ऊच नीच करे प्रतपाला नाम रसायन मन तृप्तायन गुरमुख अमृत पीवा जियो। दुख सुख प्यारे तुद त्याई ए सुमत गुरु ते पाई नानक की धर तू है ठाकुर हर रंग पार परिवां जियो। माज महला पंजवा तन सो वेला जित मैं सतगुर मिलया सफल दर्शन नेत्र पेखत तरिया तन मूर्त चसे पल घड़िया तन सो ओए संजोगा जियो। उद्दम करत मन निर्मल होवा हर मार्ग चलत भ्रम सगला खोया।

संग गोपाला अपने संत तुद खरे प्यारे तू संतन के प्राणा जियो उन संतन कै मेरा मन कुर्बाने जिन तू जाता जो तुद मन पाने तिन कै संग सदा सुख पाया हर रस नानक तृप्त अगाना जियो माज

खीर अगावै, ज्यों निर धन धन देख सुख पावै, त्रिखावंत जल पीवत ठंडा, त्यों हर संग इहो मन पीना जियो, ज्यों अंधियारै दीपक परगासा, भरता चितवत पूरन आसा, मिल प्रीतम ज्यों होत आनंदा, त्यों हर रंग मन रंगीना जियो, संतन मोको हर मार्ग पाया, साध कृपाल हर संग गिजाया, हर हमरा हम हर के दासे, हर हमरा हम हर के दासे, नानक शब्द गुरु सच दीना जियो, माज महला पंजवा, अमृत नाम सदा निर्मलिया, सुखदाई दुख बिडारन हरिया, अवर साध चख सगले देखे।

आई जियो गहर गंभीर अमृत नाम तेरा मुक्त भया जिस हृदय बसेरा गुर बंधन तिनके सगले काटे जन नानक सहज समाई जियो माज महला पंजवा प्रभु कृपा ते हर हर त्यावो प्रभु दया ते मंगल गावो उठत बैठत सोवत जागत हर त्याये सगल अवरदा जियो नाम औखद मोकौ साधु दिया किल बिख काटे निर्मल थिया आनंद भया निकसी सब पीरा सगल बिनासे दरदा जियो

साहिब भावै सेवक अंतर बाहर माहर जियो। तू दाना ठाकुर सब बिद जान है, ठाकुर के सेवक हर रंग मान है। जो

माज महला पंजवा जी प्राण प्रभ मन है अधारा भगत जीव है गुण गाए अपारा गुण निदान अमृत हर नामा हर त्याए त्याए सुख पाया जियो मनसा धार जो करते आवे साध संग जन्म मरण मिटावे आस मनोरथ पूर्ण होवे पेटत गुरदर साया जियो अगम अगोचर किश्मित नहीं जानी साधक सिद्ध त्याव है ज्ञानी

सो सच स्वामी रिजक सब सकौ दिए जियो। नाम जपत सर्व सुख पाई है, सब पौ बिन सह हर हर त्याई है।

साथे अंतर बाहर हर प्रभ साथे पै पौ परम खोया गुरपुरे देखा सबनी जाई जियो प्रभ समरथ वड ऊच अपारा नौनिद नाम भरे पंडारा आद अंत मध प्रभ।

सबल एहा है कारी जियो, दृष्ट धार अपना दास सवारिया, घट घट अंतर पार ब्रह्म नमस्कारिया, एक सविण होर दूजा नाही, बाबा नानक ए मत सारी जियो, माज महला पंजवां।

जाप अलख अपेवा काम क्रोध किलबिख गुर काटे पूर्ण होई आसा जियो पूर्ण भाग पय जिस प्राणी साध संग मिले सारंग पानी नानक नाम वस्या।

पछाण है। हों बलिहारी संतन तेरे, जिन काम क्रोध लोभ पीठा जियो। तू निर्वैर संत तेरे निर्मल, जिन देखे सब उतर है कलमल। नानक

सो गुर मिल निहचल कहना प्रेम भगत जिस कै मन लागी गुण गावे अन दिन नित जागी बहां पकड़ तिस स्वामी मिले जिस कै मस्तक लहना चरण कमल भगता मन उठे बिन परमेश्वर सगले मुठे संत जना की धूड़ नित बांछ है नाम सच्चे का गहना उठत बैठत हर हर गाइय।

कै शब्द आधारा नानक नाम मिले वडियाई दुख सुख सम कर जानणिया माज महला तीजा तेरियां खाणी तेरियां बाणी बिन नावै

सच विहज है सच कमाव है, सचो सच कमावणिया बिन राशि को वथ क्यों पाए। मनमुख भूले लोक सभाए,

अमृत शब्द अमृत हर बाणी, सतगुर सेवै हृदय समाणी। नानक अमृत नाम सदा सुखदाता, पी अमृत सब भुख लह जा बणिया। माज महला तीजा, अमृत वरसै।

पै अमृत मन तन बाणी रत्ता अमृत सहज सुना बनया मन मुख भूला दूजै पाए खुआए नाम न लेवै मरै बिख खाए।

माया मोह शब्द जलाया। सचो सच्चा वेख सालाहे गुर शब्दी सच पावणिया। जो सच राते तिन सच्ची लिव लागी, हर नाम ना संभाल है से वड भागी। सच्चे शब्द आप हर नाम संभाल है से वड भागी। जो सच राते तिन सच्ची लिव लागी, हर नाम संभाल है से वड भागी। सच्चे शब्द आप मिलाए सतसंगत सच गुण गा बनिया। लेखा पढ़िए जे लेखे विच होवे ओ अगम।

काई बिख बिहाज है बिख मोह प्यासे कूड बोल बिख खावणिया गुर प्रसादी को जाना दूजा मार मन सच समाना।

गुरमती आप बुझावणिया रहाउ सब एका जोत जाने जे कोई सतगुर सेव्या प्रगट होई गुप्त प्रगट वरतै सब थाई ज्योति जोत मिलावणिया।

निर्मल वाजै अनहद धुन बाणी दर सच्चै सोभा पावणिया। निर्मल ते सब निर्मल होवै निर्मल मनुआ हर शब्द परोवै निर्मल नाम लगे बड़ भागी निर्मल नाम सुहावणिया। सो निर्मल

गुरमुख महल चुका बनिया, गुरमुख महल चुका बनिया, माज महला तीजा। गोविंद उजल उजल हंसा, मन बाणी निर्मल मेरी मनसा। मन उजल सदा मुख सोह है, अत उजल ना

शब्द पछाण गुरमुख मरे ना काल ना खाए गुरमुख सच समावणे गुरमुख हर दर शोभा पाए गुरमुख विच हो आप गवाए आप तरह कुल सगले तारे गुरमुख जन्म सवारणे गुरमुख दुख कदे ना लगे शरीर गुरमुख हो मैं चूके पीर गुरमुख मन निर्मल फिर मैल ना लागे गुरमुख सहज समावने गुरमुख नाम मिले वडियाई गुरमुख गुण गावे शोभा पाई सदा आनंद रहे दिन राती गुरमुख शब्द करावने गुरमुख

वेद पढ़ै हर रस नहीं आया, वाद बखान है मोहे माया, अज्ञान मती सदा अंधियारा, गुरमुख बूझ हर गावणिया, अकथो कथिया शब्द सुहावै, गुरमती मन सच्चो पावै, सच्चो सच रवै दिन राती।

कौन कर्म कौन निष्कर्मा, कौन सो कहे कहाए जियो, कौन सो सुखिया कौन सो दुखिया, कौन सो सनमुख कौन वे मुखिया, किन बिद मिलिया किन बिद बिछड़ा, यह बिद कौन।

सगल मनोरथ तुम देवनहारा, भगति पाए परे पंडारा, दया तार राखे तुझसे पूरे कर्म समावणिया, अंध कूप ते कंढे चाड़े, कर कृपा दास नदर निहाले, गुण गावह।

मैं रखवाला, मात गर्भ में तुम ही पाला, माया अगन न पूहै तिन कौ रंग रत्ते गुण गावणिया, क्या गुण तेरे आख संभाली, मन तन अंतर तुद नदर निहाली।

जो हर कंत मिलाइया से विछड़कत है ना जाए। प्रभु बिन दूजा को नहीं, प्रभु बिन दूजा को नहीं ना।

नानक गुर संतोख रुख, नानक गुर संतोख रुख, धर्म फुल फल ज्ञान रस रसिया हरे।

आप बुझाए सोई बुझे, जिस आप सुझाए तिस सब किछ सूझे। कह कह कथना माया लूझे, हुक्मी सगल करे आकार। आपे जाने सर्व विचार, अखर नानक अखियो आप। लह प्रांत होवे जिस दात, पौड़ी

मैं बनजारण राम की तेरा नाम वखरवा पार जी रहाओ कोकिल होवा अंब बसां।

भगत करह मूर्ख आप जनाव है, नच नच टप है बहुत दुख पाव है। नचया टपया भगत ना होए, शब्द मरै भगत पाए जन सोए। भगत वश

गुरमुख नाम निधान लय दरगाह लय छाए रहाव। लख चौरासी परम दे मन हठ आवै जाए, गुर का शब्द न चीन्यो फिर जो नहीं पाए। गुरमुख आप पछाणिया हर नाम वस्या मन आए, आन दिन भगती रत्या हर नामे सुख समाए। मन शब्द मरै प्रतीत होए होमै तजे विकार, जन नानक करमी पाइन हर नामा भगत भंडार। गौड़ी बैरागण महला तीजा, पेई अड़े दिन चार है हर हर लिख पाया। सोभावंती नार है गुरमुख गुण गाया, पेव कड़े गुण समलै सहरै वास पाया। गुरमुख सहज समाणिया हर हर मन पाया, ससुरै पेय फिर वसै कहो कित विद पाइय। आप निरंजन